मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और इस सुनहरी सुबह में लेकर आई हूं आपके लिए एक नई उमंग, नई ऊर्जा और ढेर सारी सकारात्मकता का संदेश। तो आइए आज की इस शुरुआत को बनाते हैं खास, क्योंकि जिंदगी का हर पल है कुछ नया, हर अंदाज है कुछ अलग और यही है हमारे साथ का एहसास। तो चलिए इस सुहानी सुबह की पहली किरण के साथ बढ़ते हैं नमस्कार लखनऊ के आज के सफर में आगे। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है देश और दुनिया की हलचल से रूबरू होने का। प्रातः के 6 बजने को है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य

0: में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी दे रहे हैं मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नमूना कैसे लें, इस विषय पर आइए सुने।
3: शुभ प्रभात। मिट्टी के प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए फसल का समान व्यवहार, एक समान उर्वरक प्रयोग और समतल जमीन होने पर पूरे खेत से ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि खेत में अलग अलग फसल ली गई हो, भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग उर्वरक की मात्रा डाली गई हो, फसल की बढ़वार कहीं कम कहीं ज्यादा रही हो, जमीन समतल न होकर ढालू हो, इन परिस्थितियों में खेत को समान गुणों वाली संभव इकाइयों में बांटकर हर इकाई से अलग अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिए। नमूना सामान्य तथा फसल बोने के एक माह पहले लेकर जांच के लिए भेजना चाहिए, ताकि समय पर मृदा जांच का जो परिणाम है वह हमें प्राप्त हो सके और जो उसकी संस्तुति है उसके अनुसार उर्वरक उपयोग करने में हम लग सकें। नमूना इकट्ठा करने के लिए खुरपी, फावड़ा, ट्यूब वर्मा, स्क्रू वर्मा, बाल्टी या ट्रे, कपड़े एवं प्लास्टिक की थैलियां, पेन, धागा, सूचना पत्रक, कार्ड, ये सब कुछ जो जरूरी चीजें हैं

0: उसे पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, तब फिर शुरुआत करनी चाहिए। अन्यथा ये नहीं कि हम उसे लें और फिर रख दें दो चार दिन तो फिर स्थिति बदलती है। इसलिए पहले से इतनी तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ जो इसके लिए निर्धारित तो मानक हैं उस मानक का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अनाज सब्जी फूलों की खेती के लिए नमूना 15 सेंटीमीटर की गहराई, गहरी जड़ वाली फसल जैसे कि गन्ना के लिए 30 सेंटीमीटर तथा चारागाह घास के मैदान के लिए नमूना 10 सेंटीमीटर की गहराई तक लेना चाहिए। जिस खेत का नमूना लेना हो उसमें 8 से 10 स्थान पर कहीं भी एक रैंडमली जिसे कहते हैं जिगजैग, यानी जहां मन हो वहां से भी आप पूरे खेत को देखते हुए जगह जगह से इस प्रकार घूमकर निशान लगा लें जिससे खेत के सभी हिस्से में शामिल नमूना लिया जा सके। प्रत्येक निशान लगाए गए स्थान के ऊपरी सतह से घास फूस कंकड़ पत्थर आदि को साफ कर लें। निर्धारित स्थान पर फावड़े और खुरपी की सहायता से वी आकार, अंग्रेजी का जो होता है, जो इशारा करते हैं अपनी दो अंगुलियों के माध्यम से जो अंग्रेजी का वी बनता है, उस आकार का 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोदना ही चाहिए। गड्ढे से फालतू मिट्टी निकालकर खुरपी की सहायता से गड्ढे की दीवार की ओर से मिट्टी की 2 से 3 सेंटीमीटर पतली 15 सेंटीमीटर गहराई तक खुरपी से निकाल लें। इस मिट्टी को साफ सुथरे ट्रे या तसले या फिर बोरी पर इकट्ठा कर लें। इस प्रकार खेत से निकाली गई मिट्टी के नमूनों को एक में अच्छी तरह मिलाकर एक बड़ा नमूना बना लिया जाता है। यदि मिट्टी नम हो तो इसे छाया में सुखा लेना चाहिए और मिट्टी में मिले कंकड़ पत्थर जो भी अवांछित चीजें अन्य हैं उन सबको बाहर निकाल लें। साफ मिट्टी को तसले या फिर बोरी पर मोटी तह में फैला दें और फैलाई गई मिट्टी को 4 बराबर भागों में बांटकर आमने सामने के 2 भागों की मिट्टी लेकर शेष 2 भाग हटा दें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक 0.5 किलोग्राम मिट्टी का नमूना शेष न रह जाए। जहां उसरीली जमीन है वहां पर कुछ अलग तरह से लेने की आवश्यकता होगी। क्षार या लवण की मात्रा मौसम के अनुसार भूमि की सतह पर घटने बढ़ने के कारण मिट्टी का नमूना 15 सेंटीमीटर के अंतर पर 1 मीटर की गहराई तक लिया जाता है यदि बागों की स्थिति होती है तो, अन्यथा जो 10 से 15 सेंटीमीटर की बात है फसलोत्पादन के लिए उसे उतने तक सीमित रखें। नमूना लेने के लिए भूमि की सतह पर जमी जो लवण है यानी नमक है या क्षार जिसे हम कह लेते हैं उसकी पपड़ी को खुरच कर अलग कर दें, हटा दें, फिर उसके बाद वी आकार का गड्ढा बनाएं। लगभग 500 ग्राम का 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर गहराई से अलग अलग 4 नमूना लें जिससे कि संपूर्ण जांच एक बार में हो जाए। नमूनों के परीक्षण के लिए भेजते समय सूचना पत्रक के साथ उस स्थान का भूजल स्तर, सिंचाई जल का स्रोत और जो भी जानकारी संबंधित है उसे भरना चाहिए। तैयार किए गए मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके साफ प्लास्टिक या कपड़े की थैली में भर लें। नमूने के साथ खेत की संख्या यानी खसरा नंबर, कृषक का नाम साथ ही साथ पता और अन्य जानकारी सूचना पत्रक पर लिखकर प्लास्टिक की थैली के अंदर तथा एक कपड़े की थैली के बाहर बांधकर मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजते हैं। इसका पत्रक भी होता है जहाँ आप नमूना देने जाते हैं, छपा छपाया एक पत्रक मिलता है, वहीं पर आप इसको भर देंगे तो फिर उसके अनुसार इसकी जांच रिपोर्ट आपको प्राप्त हो जाएगी।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जानकारी, मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नमूना कैसे लें। इस जानकारी के साथ ही अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, लखनऊ का सफर चल रहा है और आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। श्रोताओं, समय है आज के सुविचार का। आज का विषय है संस्कार, आइए सुने।
2: प्रातः का मनोरम जागरण भास्कर अपनी चैतन्य अरुणिमा बिखेर पाए थे कि अचानक रुक से गए। मेरे साथ वो भी ये दृश्य देखने लगे। पैरों की गति बंद हो गई और आंखों का हिलना भी। एक पुत्र वृद्ध पिता को पीट रहा था खूब। मानव की ये अनिति देखकर सूर्य

रहा था डूब। मैं सोचने लगा, सूर्य तो अभी उग ही रहा है लेकिन युवा पीढ़ी डूब रही है। तभी एक पड़ोसी ने मेरा कंधा झकझोरा, अपने दरवाजे पर ही तो मार रहा है, वो भी अपने माँ बाप को, ये तो रोज का काम है, प्रातः उठकर शराब का कोल्ला करता है, आप जाइए इस चक्कर में मत पड़िए, और स्वयं अपने काम में लग गया। ये संसार है, वो बड़बड़ा रहा था। मैं भी एक अपराधी की भांति चल पड़ा, मेरे पैर घर की ओर लेकिन मन वहीं कुरुक्षेत्र पर, जहां अन्याय के हाथों न्याय पिट रहा था। मानवता सिसक रही थी, स्वार्थ खिलखिलाकर हंस रहा था। मुझे मजबूरी बश चिंतन में डूबना पड़ा। हे माँ, ये है तुम्हारी युवा संतान, भविष्य के भारत का नींव का पत्थर, राम कृष्ण की संस्कृति की ध्वजा, युवा अर्थात उमंग उत्साह साहस की मूर्ति, आकाश के तारे तोड़ने में समर्थ, हिमालय और आल्पस को झुकाने की शक्ति, हवा की दिशा मोड़ने में समर्थ, असंभव को संभव कर दिखाने की सामर्थ्य, रंगों में खौलता गर्म खून, अन्याय को मिटाने में सक्षम, मस्तिष्क ठंडा, सेवा शिष्टाचार नम्रता, निर्बलों का सहारा कर्तव्य भावना जिसके रंग रंग में समाई हो, नए इतिहास रचने की क्षमता, यह है भारत की युवा पीढ़ी। कर्तव्य की बात ने चिंतन को एक नया मोड़ दिया, मन विस्मरण की परतों को चीर कर ले आया अपने अनुकूल साक्ष्य प्रमाण। लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है, मेरे मित्र के पिता स्विट्जरलैंड यात्रा से लौटे थे। विदेश की चमक न जाने किसने मेरी आंखों में भर दी थी। मैं भी मिलने पहुंच गया, एक प्रश्न पूछ लिया, कृपया वहां का कोई प्रसंग सुनाइए जो आप भूल ना पा रहे हो। मेरे इस प्रश्न ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया और बोले, मैं जिस लड़की का मेहमान था वो मुझे एक दिन अपनी गाड़ी से घुमाने ले गई। हम फूलों के बीच वाली सड़कों से गुजर रहे थे, तभी उसने मुझे खाने को टॉफी दी। मैंने टॉफी का रैपर गाड़ी से बाहर फेंक दिया और टॉफी खाने लगा। उस लड़की ने मुझे छिलका फेंकते हुए जैसे ही देखा, उसने गाड़ी पीछे करके छिलका

0: सारा वातावरण आनंद से भर जाएगा। आज दीवारों से दीवारें मिली हैं, फिर दिल से दिल मिल जाएंगे। संतानें कर्तव्य निभाएंगी और हम आनंदमग्न हो जाएंगे।
1: संस्कार। अभी आप सुन रहे थे आज का ये सुविचार। वाचन स्वर था राकेश खरे का। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ और मंगलमय प्रभात के साथ आराधना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के स्मरण के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की वंदना करते हैं इस भजन के साथ और आरंभ करते हैं आज की आराधना।

श्रोताओं, जब जीवन की उलझनों से मन बोझिल हो जाए, तब हरि का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। प्रभु के वंदन से हृदय में शांति और विश्वास का संचार होता है। आइए हम भी नारायण वंदन के इस मधुर भजन में स्वयं को समर्पित करें।

भजबन नारायण, नारायण सबका कल्याण करे। श्रोताओं, संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करने वाले माने जाते हैं। उनकी भक्ति शक्ति, साहस और समर्पण की प्रेरणा देती है। तो आइए हम भी पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित ये भक्तिमय प्रस्तुति सुनें।

प्रभु और भक्त का अद्भुत रिश्ता है हनुमान जी और श्री राम जी में। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं कि मर्यादा, प्रेम, सत्य और आदर्श जीवन की प्रेरणा देते हैं प्रभु श्री राम हम सबको। राम नाम का स्मरण मन को नई ऊर्जा और आत्मिक शांति प्रदान करता है, और हनुमान जी का नाम हो और प्रभु श्री राम को याद ना किया जाए ये अच्छा नहीं, और ये तो हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए हम भी चलते हैं प्रभु श्री राम की शरण में, क्योंकि कहते हैं ना, राम जी के नाम से तो पाथर भी तारे जाते हैं।

भगवान श्री कृष्ण का नाम मन को शांति और जीवन को मधुरता से भर देता है। श्री राम के चरणों में नमन करने के बाद आइए बढ़ चलें भगवान श्री कृष्ण की ओर। उनकी भक्ति में प्रेम है, करुणा है और जीवन का सुंदर संदेश भी है। तो आइए श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए सुने ये पावन भजन।

की ओर। उनकी भक्ति में प्रेम है, करुणा है और जीवन का सुंदर संदेश भी है। तो आइए श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए सुने ये पावन भजन।

आइए प्रभु आइए, हम सबके कष्टों का समाधान कीजिए। हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातःकाल की इस भक्तिमय पावन बेला में आइए अब नमस्कार लखनऊ के आज के सफर में आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 185। आज का प्रसंग है राजा दशरथ के स्वर्गवास से दुखी भरत का माता कैकेयी की भर्त्सना करने का प्रसंग।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर और वाणी जयराम एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौरयोजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस

0: कलर् इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननमिदं प्राप्तुं देशस्य पञ्चदशं राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य तृतीयं राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ़ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्माननं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एडुटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीये सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्धप्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,2000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तरप्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट् क्रीडायां, IPL क्रिकेट् स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में। श्रोताओं, समय है कि स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात की जाए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज की चर्चा में नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं सेहत के लिए तरबूज के विषय में। आइए सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, गर्मियों के आते ही शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले फलों की तलाश शुरू हो जाती है। तेज धूप, पसीना और गर्म हवाओं से राहत देने के लिए कुछ ऐसे फल होते हैं जो न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट करते हैं बल्कि उसमें आवश्यक पोषक तत्व भी भरते हैं। ऐसा ही एक फल है तरबूज। हरा बाहर से और लाल अंदर से। ये फल जितना सुंदर दिखता है उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में इसकी मिठास और ठंडक दोनों शरीर के लिए वरदान साबित होती है। तरबूज लगभग 92% पानी से भरपूर होता है जिससे ये शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करता है। जब बाहर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर से ज्यादा मात्रा में पसीना निकलने लगता है तब पानी की कमी महसूस होती है। ऐसे में तरबूज का सेवन शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग जिन्हें

0: गर्मी ज्यादा सताती है उनके लिए ये फल बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन तरबूज सिर्फ पानी देने वाला फल नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे सेहत के लिहाज से और भी खास बना देते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं और कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, खासकर विटामिन सी, जो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इससे शरीर को संक्रमण और मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर दिल की सेहत की बात करें तो तरबूज इसमें भी बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसमें एक ऐसा अमीनो एसिड पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ये रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए ये एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय हो सकता है। तरबूज में मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व इसे और भी खास बनाता है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है और त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। जो लोग झुर्रियों और समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षणों से बचना चाहते हैं, उनके लिए तरबूज किसी सौंदर्य टॉनिक से कम नहीं है। गर्मियों में इसे खाने से त्वचा न सिर्फ हाइड्रेट रहती है बल्कि ये अंदर से ग्लो भी करने लगती है। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फाइबर आंतों की सफाई करता है और पाचन को सुचारू बनाए रखता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, उनके लिए तरबूज एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है। इसके साथ ही ये शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है, जिससे लीवर और किडनी स्वस्थ रहते हैं। जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी तरबूज एक आदर्श फल हो सकता है। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है, लेकिन ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। जब भी भूख लगे, तले भुने खाद्य पदार्थों की बजाय तरबूज के कुछ टुकड़े खा लेना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर तेजी से कैलोरी बर्न कर पाता है। गर्मियों में कई बार शरीर में पानी की कमी के कारण गर्मी से होने वाली थकान, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। ऐसे में तरबूज एक प्राकृतिक उपाय बन सकता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को ठंडक देते हैं और शरीर का तापमान संतुलित रखते हैं। इसलिए जो लोग धूप में ज्यादा समय बिताते हैं, उनके लिए ये फल बहुत लाभदायक हो सकता है। तरबूज को खाने के कई तरीके हैं। इसे ऐसे ही काटकर खाया जा सकता है, जूस के रूप में लिया जा सकता है, या फिर इसे सलाद में मिलाकर स्वादिष्ट तरीके से इसका आनंद लिया जा सकता है। तरबूज का जूस गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और पेट को हल्का रखता है। साथ ही इसमें नींबू और पुदीना डालकर इसका स्वाद और सेहतमंद बनाया जा सकता है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तरबूज को खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ सकता है और एसिडिटी या अपच की समस्या हो सकती है। इसे दोपहर के भोजन के बाद खाने का सबसे अच्छा समय माना जा सकता है। कल फिर मिलेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सेहत के लिए तरबूज। आज की स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुनी नीना सोनकर से ये जानकारी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, और लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा ईद उल अजहा पर मबनी। प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा पंडित राम नारायण के सारंगी वादन का। लोक रंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे राम सूरत तिवारी के गाए अवधी लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे

प्रातः 9:50 से, और लोक माधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 पर। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 से। 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा सफलता की कहानी, कृषि विविधीकरण। इस विषय पर अनिल कुमार सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग 5:10 से। शाम 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, विषय होगा गांव में वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ते स्रोत। वार्ताकार होंगे प्रखर कुमार श्रीवास्तव। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा खेल जगत। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे और संभावनाएं, इस विषय पर विशेषज्ञ प्रदीप शुक्ला से सुभाष खन्ना की भेंट वार्ता आज आप सुन सकेंगे। आज रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित की वार्ता सुनिएगा। विषय होगा प्रेमचंद और लखनऊ। वाचन संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे महुआ राज त्रिपाठी की गाई गजलें। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। और रात्रि 10:30 से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में आज उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन आप सुन सकेंगे। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम का आनंद भी ले सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। आज का विषय है भारत के वीर सपूत वीडी सावरकर।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। दोस्तों, आज अपने सफर में हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका जीवन साहस, संघर्ष, देशभक्ति और अद्भुत आत्मबल का प्रतीक था। एक ऐसा नाम जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों और अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। हम बात कर रहे हैं भारत माता के वीर सपूत विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें देश श्रद्धा से वीर सावरकर के नाम से जानता है। श्रोताओं, इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि उन लोगों की अमर गाथा भी होता है जिन्होंने अपने समय से आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र के लिए कुछ असाधारण किया। वीर सावरकर उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे

कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में देश प्रेम और आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। May 18, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही बहुत तेजस्वी और जिज्ञासु थे। उनके भीतर बचपन से ही मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। उन दिनों भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश के लोगों के मन में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी। युवा सावरकर ने भी यही संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रभावशाली लेखक, कवि और वक्ता भी थे। उनके शब्दों में ऐसी ऊर्जा थी कि सुनने वालों के भीतर देशभक्ति की भावना स्वतः ही जाग उठती थी। जब वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड पहुंचे, तब भी उनके मन में केवल एक ही ध्येय था, भारत की स्वतंत्रता। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को संगठित किया और देशभक्ति की अलख जताई।

उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर ने लोगों के भीतर नई चेतना जगाई। उस समय अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति को केवल एक विद्रोह बताती थी, लेकिन सावरकर ने उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। ये विचार उस समय अत्यंत साहसिक माना गया। उनकी लेखनी में केवल शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की ज्वाला धधकती थी। लेकिन श्रोताओं, देशभक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। वीर सावरकर को भी बहुत सारी कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच स्थित जेल, चारों ओर सन्नाटा, कठोर श्रम और अमानवीय यातनाएं। लेकिन इन सब के बीच भी सावरकर का मन नहीं टूटा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर आशा की लौ जलाए रखी। वीर सावरकर ने इन यातनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। कहते हैं वे जेल की दीवारों पर कविताएं लिखते, उन्हें याद करते और साथी कैदियों को सुनाते थे। ये केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था बल्कि उस आत्मबल की कहानी थी जो किसी भी परिस्थिति में हार मानना नहीं जानता। दोस्तों, वीर सावरकर समाज सुधार के पक्षधर भी थे। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत बनेगा जब उसमें समानता और एकता होगी। उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता थी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता। वीर सावरकर केवल संघर्ष का नाम नहीं बल्कि साहस का दूसरा रूप थे। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आई, उन्होंने अपने विचारों और अपने उद्देश्यों को कभी नहीं छोड़ा। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित ही रहा। वे जानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है। आज जब हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस लेते हैं, तब हमें उन महान सेनानियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग कर देश के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि केवल राष्ट्रप्रेम शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई देना चाहिए। दोस्तों,

0: समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास में सदैव अमर रहते हैं। वीर दामोदर सावरकर उन्हीं अमर नामों में से एक हैं। उनका साहस, उनका संघर्ष और उनका आत्मबल आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। आज आवश्यकता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, अपने देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को जीवित रखें। इसी संदेश के साथ अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को आज के कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। एक बार फिर भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन, नमस्कार।
1: ती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा
0: रंग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा SIR आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी

0: दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वो भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कल से लू से राहत की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। श्री योगी ने आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश

0: राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एफआईआर कराने का अधिकार है।
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एफआईआर कराने का, उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रदेश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बांदा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने के लिए सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा एसआईआर आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी

0: की जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आपका नमस्कार लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पंडित राम नारायण का सारंगी वादन। राग है भटियार।

अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग था भटियार। इसी के साथ अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अब नमस्कार लखनऊ से मुझे यानी अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन वेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहाँ नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6

0: ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग।

0: वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi, reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port.

0: Championships 2026 in Bengaluru yesterday, producing a throw of 72.82 metres. Representing Haryana, Antil delivered a sensational gold medal winning performance to surpass his previous world record of 73.29 metres, which he had set at the 2022 Asian Paragames in Hangzhou. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the world number one Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament. In contrast, world champion D. Gukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Ali Reza Firozshah in the final game following a hard-fought classical draw. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. The Supreme Court of India upholding the validity of the special intensive revision conducted by the Election Commission of India is the top news in many dailies today. SIR valid, falls within ECI's powers, says SC, is the headline in Hindustan Times. The observation of Madras High Court defending free speech in a judgment on Tamil film Karuppu, that judges need not be treated as holy cows and that corruption within judiciary cannot be denied, finds front page mention in the Times of India. And finally, the Statesman mentions that a joint study by Banaras Hindu University, University of Colombo and others has revealed a 57,000-year-old human journey hidden in Sri Lankan DNA. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi, reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometres of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul-Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैनुल अक्वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीक़ैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफटॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहाँ हर तरह

0: ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निज़ाम के साथ मजबूत किया जा सके। वज़ीरे आज़म ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायज़ा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकाम को यह हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को यह इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वह जराइम और मनुष्यात की स्मगलिंग के जराए तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा ना हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज़ करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदाम के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेटवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा तीन लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और सोला और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर, माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इत्तला नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वज़ी इंतजामात किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार मुल्क के शहरियों को खास तौर पर माली तौर पर कमज़ोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने आवाम से माशरे में मोहब्बत व इत्तेफाक़ को फ़रोग़ देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशुसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: लोग नजदीकी

0: मस्जिद में ईद उल अजहा की खसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। फरीजा कुर्बानी नमाज के बाद अदा किया जाएगा। रियासती सरकार ने किसी भी नई रिवायत के शुरू ना होने और ममनू जानवरों की कुर्बानी ना होने देने को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सभी जिला पुलिस सरबराहान को एडवाइजरी जारी की हुई है। DGP राजीव कृष्ण की हिदायत के बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हसास शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ़ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज़ है।

0: आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ़ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज़ है। एसएसपी सतह के अफसर की क़यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम सांची स्तूपा के मुकद्दस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोदगलियाना से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात आवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़राअत मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दो रोज़ा प्रोग्राम में ज़राअत और मुतालिक शोबों से मुतालिक मौजूआती तबादला ख्याल, रियासतवार शराकत, ग्रुप गौर वखोस जैसे अहम मामलात शामिल होंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार ज़राअत, पैदावार में इजाफा, आबोहवा में लचक है, बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और किसानों की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज करते हुए आने वाले खरीफ सीजन से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर वखोस किया जाएगा। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी हुकूमत, रियासती सरकारों, ICAR, ज़रई इदारों और दीगर मुतालिका फरीकों को खरीफ सीज़न के लिए मरबूत कार्रवाई और कलीदी तरजीहात पर तबादला ख्याल के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि मरकज़ी और शमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज़ के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आज शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज तेज से बहुत तेज़ बारिश की भी पेशगोई की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भारत बांग्लादेश सरहद पर चौकियां बनाने और खारदार बाड़ लगाने के बुनियादी ढांचे के क्याम के लिए 142.79 एकड़ आराजी BSF के हवाले कर दी है। यह हवालगी BJP हुकूमत के इस फैसले का हिस्सा है जो 11 मई को काबीना की पहली मीटिंग में किया गया था, जिसमें सरहद पर बाड़ लगाने और मुतालिका बुनियादी ढांचे के मनसूबों के लिए 45 दिन के अंदर अंदर 600 एकड़ जमीन की मुंतकली की गई थी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कोएम्ट एडुटेक को इम्तहानात की कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतालिक इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने कहा कि इल्ज़ामात गलत, गुमराहकुन और हकायक पर मबनी नहीं हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर्स और दो गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कैर्सलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डी गोकेश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रगनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजशाह से पीछे हैं जो 7.5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफ्रीका और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नितिका।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के SIR अमल को दुरुस्त और आईनी करार दिया। मुल्क में शदीद गर्मी के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से मुहतात रहने की अपील से मुतालिक खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, शदीद गर्मी और हीट वेव के दरमियान वजीर आजम की शहरियों

आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन, राग है शुद्ध सारंग। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।

श्रोताओं नमस्कार, आदाब और ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आपके मेल आपके गीत। ये एक ऐसा सफर है जहां जुड़ते हैं आपके दिल के एहसास, आपकी फरमाइशें और मीठे गीतों की सौगात के साथ। दोस्तों, दिन की भागदौड़ और त्योहारों के खुशनुमा माहौल के बीच अगर

पल आपकी पसंदीदा नगमों और अपनों के संदेशों के साथ मिल जाएं, तो पूरा दिन और भी खुशनुमा हो जाता है ना? तो चलिए तैयार हो जाइए सुरों और शब्दों की इस खूबसूरत महफिल के सफर पर चलने के लिए, और पढ़ते हैं आज का पहला मेल, जो बहुत खूबसूरत सा रंग बिरंगा सा मेल है, और इसे हमें भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। एक मेल हमारे पास आया है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्या रामसागर साहू रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति। और हमारे पास एक मेल आई है मॉडल टाउन करनाल से, इसे भेजा है सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा जी ने। श्रोताओं बहुत सारी मेल हमारे पास और भी हैं, एक इसी में मेल है दत्रेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की। तो आप में से श्रोता की फरमाइश है एक खूबसूरत सा नगमा फिल्म राजपूत से सुनवाने की, तो लीजिए आपकी ये फरमाइश करते हैं पूरी। और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म राजपूत का खूबसूरत सा ट्रैक पहुंच रहा है आपके पास आपके रेडियो सेट पर, इंजॉय कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, कुछ शब्द मुस्कान बन जाते हैं, कुछ यादें पहचान बन जाती हैं, और जो दिल से भेजे जाएं वो संदेश खास बन जाते हैं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे से खूब सारे संदेश आपके द्वारा भेजे गए हम तक पहुंच रहे हैं। एक मेल हमारे पास आई है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। श्रोताओं, हमारे पास एक मेल दाऊद सराय सहारनपुर से भी आ चुकी है। भेजने वाले हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी साहब, अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे मेल कर रहे हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। वहीं पाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी भी हम तक अपनी फरमाइश पहुंचा चुके हैं। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर का संदेश हम तक पहुंच चुका है। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मेल आ गई है मुसर्रत जहां नाज की। तलत जहां नाज, फरत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, या इन्होंने बोला है कि हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें। तो लीजिए, सारी बहनों को प्रोग्राम में शामिल किया। भाई आप हैं तो हम हैं, और आपके साथ ही आपकी फरमाइश को पूरा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए बिना देर किए आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म हीरा पन्ना से एक गीत। इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की। तो खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए, और आप में से ही एक श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की है।

खूबसूरत नगमों का ये सफ़र जारी रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों के साथ, लेकिन वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी वापस आते हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। और श्रोताओं, हमें लगातार मिल रहे हैं आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत से संदेश। वाकई सुरों का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। हर गीत में कोई अपना सा नजारा होता है, कभी हंसी कभी यादें दे जाता है। संगीत तो हर दिल का सहारा होता है ना। ऐसी ही एक खूबसूरत सी फरमाइश हमारे पास आ चुकी है अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से, और इसे भेजा है रोशनी चौरसिया, रजनीश चौरसिया ने।

एक मेल हमारे पास आई है अकरम हुसैन प्रिंस की, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन भी इस मेल में शामिल हैं, और दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा भी मेल कर रहे हैं। श्रोताओं, एक मेल हमारे पास मोताला महाराष्ट्र से भी आई है, इसे भेजा है विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम ने। तो आप सभी को एक खूबसूरत सा नगमा आप में से ही एक श्रोता की फरमाइश का सुनवा रहे हैं। जाना पहचानी सी बहुत खूबसूरत सी फिल्म है साजन, अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को गाया है, नदीम श्रवण ने संगीत से सजाया है और बोल लिखे हैं समीर ने। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से ट्रैक को।

जी हाँ दोस्तों, सफ़र आगे बढ़ रहा है और आपके मेल इस महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा मेल हमारे पास आया है गाड़ के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षता लोखंडे का। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, कंचन, कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी भी मेल कर रहे हैं। वहीं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश

मंसूरी का मेल हमारे पास आ चुका है। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक मेल कर रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का भी मेल आया है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी मेल कर रहे हैं। आपकी फरमाइश है, एक खूबसूरत सा गाना सुनवा दीजिए फूल और कांटे फिल्म से। तो लीजिए, आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये नगमा कुमार सानू अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

श्रोताओं, हरदोई उत्तर प्रदेश से मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल, अनवी राजपूत, सुनीता, शोभा, दीपा, रामफेर, कपिल, प्रांजल, रमा और श्याम सुंदर राजपूत का मेल हम तक पहुंच चुका है। एक मेल अनिल जैन जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का आया है, मलियाना सरधना मेरठ से। इसके साथ ही हमारे पास और भी कई मेल आए हैं, जिनमें एक मेल संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का भी आया है, बागपत उत्तर प्रदेश से। तो आप सभी को एक सुपरहिट गीत सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी से, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वरों में। से एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों अब इजाज़त लेने का समय है, क्योंकि संगीत का ये सिलसिला अब अपने खूबसूरत पड़ाव की ओर बढ़ गया है, लेकिन आपके संदेशों की गर्माहट यूं ही बनी रहती है। यूं ही अपने संदेश हम तक पहुंचाए रखिए और एक बार फिर आप सभी को आज के त्यौहार की दिली मुबारकबाद। जो दिल से सुनो तो हर धुन कहानी लगती है और हर कहानी में ज़िंदगी सुहानी लगती है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाए रखिए, हमारे साथ बने रखिए। दीजिए अनुमति रिंकी शर्मा को नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
2: प्रदेश सरकार द्वारा गांव के सरकारी स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा के बाद बागपत में भी उत्साह का माहौल है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रत्येक विकास खंड से चयनित एक एक अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए कहा कि गांव के बच्चों को नई दिशा देने में अनुदेशकों की बड़ी भूमिका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर अवसर और आधुनिक शिक्षा वातावरण मिले, इसके लिए अब मानदेय बढ़ने से अनुदेशकों का मनोबल और मजबूत होगा, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के वातावरण पर दिखाई देगा। छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षक और अनुदेशक दोनों अहम कड़ी हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संबंध में सीडीओ अनिल कुमार ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीडीओ ने कहा कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की पहचान कर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का उद्देश्य जिले में उपलब्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं ज्ञानवर्धक पांडुलिपियों का संरक्षण, सूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण करना है। फेम इंडिया द्वारा जारी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2026 सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची में देश के 100 उत्कृष्ट जिलाधिकारियों को स्थान दिया गया है। बागपत जनपद के जिलाधिकारी अस्मिता लाल का नाम भी इस सूची में शामिल हुआ है। यह सम्मान उन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है जिन्होंने जमीनी स्तर पर विकास, सुशासन, नवाचार एवं जनहित कार्यों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में जनपद में विभिन्न विकासात्मक, नवाचार एवं जन कल्याणकारी पहले प्रभारी रूप से संचालित की जा रही हैं। बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की चुनौती को देखते हुए विद्यालयों में कूल रूफिंग पहल लागू किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को गर्मी से राहत प्रदान कराना, सुरक्षित एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संस्थागत क्षमता विकसित करना है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यालय परिसरों में तापीय आराम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति एवं शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस पहल के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों की कंक्रीट छतों पर सफेद

0: प्रवर्तक कोटिंग विद्यालय परिसरों में ग्रीन शेड एवं बांस आधारित संरचनाएं, कक्षाओं के आसपास वृक्षारोपण तथा रूफ टॉप सोलर के साथ कूल रूफ तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना में विशेष प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाएगी, जिससे छोटे बच्चों को भीषण गर्मी तथा हीट वेव के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा मिल सके। जनपद में लोक निर्माण विभाग ने छोटी बड़ी सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लगभग 677 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है, जिसे स्वीकृति के लिए जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा। विधायकों, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़कों तथा पुलों के निर्माण की यह कार्य योजना तैयार की गई है। इन सड़कों के बनने से लाखों लोगों को गड्ढों से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सड़कों के निर्माण, मरम्मत तथा पुलों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की है। छोटी बड़ी 253 सड़कों का 564 किलोमीटर निर्माण एवं मरम्मत कार्य होगा। इनमें 138 सड़कों का नव निर्माण होगा तथा बाकी की मरम्मत होगी। इनके अलावा 12 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। बागपत सहकारी चीनी मिल का 66 साल बाद विस्तारीकरण होने जा रहा है। इसके लिए निविदा मांगी गई है। 3,72,49,00,000 रुपये के बजट का प्रस्ताव सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है। विस्तारीकरण के बाद चीनी मिल की पेराई क्षमता 25 से बढ़कर 50,000 कुंतल प्रतिदिन हो जाएगी। इससे 40,000 किसानों को फायदा मिलेगा।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का।
2: फतेहपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सराहनीय पहल शुरू की है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने खुद मैदान में उतर के बीते दिनों अभियान की शुरुआत की। एराया ब्लॉक के सिमोरी गांव में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने फावड़ा चलाकर तालाब खुदाई का शुभारंभ किया और लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और जनपद के कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद फतेहपुर में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसको मिशन 300 नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीब 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराया जाएगा और तालाब का एक नया स्वरूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकांक्षा रहती है कि ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त हो और उसको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल हो। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें जल संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। पौराणिक काल में तालाब जल संचयन का काम करते थे, उसमें यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेवलपमेंट और रेवेन्यू विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि बारिश के पहले प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए सीमांकन कर खुदाई करवाएंगे।
3: आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसमें हमारे जो तालाब हैं, जो पौराणिक काल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाटर को संचित करते हैं, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाएंगे।
2: फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा एक महीने में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 15 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि पुलिस इन अपराधियों पर निगरानी रखे। इसके साथ ही 6 अभियोग गैंगस्टर के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें 24 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था।
4: पिछले एक माह में अपराध में रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में काफी कुछ कार्रवाई किए हैं, जिसमें से हमने करीब 15 ऐसे अभ्यस्त अपराधी थे जिनकी हमने हिस्ट्री शीट खोली है। इसके साथ साथ अन्य बड़े बड़े वर्कआउट भी हुए हैं इस समय, और विशेषकर जो महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग किया करते थे या बाकी अन्य चोरियों के जो हमारे नकबजन काफी समय से नकबजनी कर रहे थे शहर के अन्य क्षेत्रों में या तहसीलों में, तो उन पर भी हमने कार्रवाई करी और इसी तरह से फतेहपुर पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रही।
2: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था। फतेहपुर जनपद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य स्व निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित

0: कन्या विवाह सहायता योजना के तहत खागा स्थित रानी चंद प्रभा महाविद्यालय के प्रांगण में बीते दिनों सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रयागराज मंडल के 4 जनपदों में से 184 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लाभार्थियों के विवाह उनके परंपराओं एवं रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 85,000 की सहायता राशि पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। फतेहपुर जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात तहसील कार्यालय खाया का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील के बड़े बकायेदारों की फाइलों का निस्तारण एवं रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी से कहा कि समय समय पर नियमित तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण करें। तहसीलदार कोर्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वादों की फाइलों को देखा और कहा कि धारा 67 के जो भी पुराने वाद हैं उन्हें तत्काल निस्तारण कराएं एवं अन्य वादों का निस्तारण भी साथ समय कराएं। तहसील कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों के रखरखाव एवं साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।

0: ये कहीं भी सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: घरांगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार। घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
6: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।

आजमाइशों से गुजरना पड़ा जिनमें वो कामयाब हुए। तौहीद की आवाज बुलंद करने की सजा में नमरूद नामी बादशाह ने आपको आग में दलवा दिया। नतीजा ये हुआ कि आग गुले गुलजार बन गई। इस वाकये के बाद जब लोगों ने खुदा के पैगाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो वो अपनी बीवी हजरत सारा और अपने भांजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा शाम आकर आबाद हो गए। वहाँ हजरत सारा ने औलाद से मायूस होकर अपनी बांधी हजरत हाजरा से आपकी शादी करा दी। चुनांचे हजरत हाजरा के बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई। बहुत अच्छे से पले बढ़े और फिर कुछ बड़े हो गए तो बाप के साथ हाथ बटाने लगे, माँ बाप का काम करने और सहारा बनने लगे, क्योंकि तकरीबन 87-88 साल की उम्र में बड़ी दुआओं और तमन्नाओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेटा अता फरमाया था, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 13 बरस ही की थी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं के ऊपर यानी गैब से ये हुक्म मिल रहा है कि अपनी अजीज तरीन शे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे खूब गौर खोज करने के बाद जो मालूम हुआ तो वो ये कि दुनियावी सामान में अजीज तरीन शे उन्हें अपने एक लोते बेटे की जात नजर आई। इशारे खफी को हुक्म इलाही के दर्जे पर लाकर फौरन फैसला कर बैठे कि छुरी अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ही चलाना है। फिर ख्याल आया कि इस इरादे को खुद इस मासूम से भी पूछ लें। बेटा खुद एक नबी, नबी का बेटा और खातमुन नबीयीन मोहम्मद अरबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा होने वाले थे, लिहाजा फौरन जवाब दिया। फिर इसमें तामुल और पूछताछ कैसी, जिसका हुक्म मिला है उसकी तामील और तकमील फरमाइए, इंशाल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। कुरान मजीद ने सूरह साफात की आयत नंबर 2-106 में इस वाकये की वजाहत फरमाई है। قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين। مزید بیٹے نے اپنے بابا کو مشورہ دیا کہ بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، مبادا میری صورت دیکھ کر کہیں آپ کے قدم نہ لڑکھڑا جائیں اور امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अब वो लम्हा आता है जिसको देखकर फरिश्ते भी मुस्तरिब हैं और जिन्नो बशर भी हैरान और परेशान हैं। बाप अपने लखते जिगर नूने नजर को जमीन पर लिटाता है और दिल पर न जाने पत्थर की कौन सी सिल रख कर इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाता है। इस मंजर को देख कर जमीन कांप जाती है और आसमान थर्रा जाता है। हफीज जारंदरी ने इसको क्या खूब अंदाज में पेश किया है कि पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, फिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताब जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद तुझको जब करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ, सआदत मंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, जमीनों आसमां हैरान थे इस ताद गुजारी पर। इस नजराने मोहब्बत के सामने मोहब्बत की सारी दास्तान बोनी और छोटी मालूम होती है, लेकिन मशीयत इलाही कुछ और ही थी। इम्तिहान लेना मकसूद था, इसलिए बेटे की जगह जन्नत से उतारे गए मैने ने ली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम व फदीनाहु बिज़िबिन अज़ीम के मिसदाक बन गए। और खुदा ने भी ऐलान कर दिया कि इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब पूरा और सच कर दिखाया और मोहसिनों को हम इसी तरह बदला देते हैं। कुरान ने इसको कसद्दक्तर रुया इन्ना कदालिक नजज़िल मुहसिनीन से ताबीर किया है। फिर खुदा को बाप और बेटे का ये अमल इस कदर पसंद आया कि रहती दुनिया तक तमाम मुसलमान साहिब इस्तेताद पर कुर्बानी करना वाजिब करार दिया, इसलिए कि मिल्लत इब्राहिमी की असल बुनियाद कुर्बानी है। यही कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैगंबराना और रूहानी जिंदगी के असल खसूसियत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह कुर्बानी क्या थी, ये महज खून और गोश की कुर्बानी न थी बल्कि रूह और दिल की कुर्बानी थी। ये अपनी अजीज तरीन शे को खुदा के सामने पेश कर देने की नज़र थी। ये खुदा की इताअत और उबूदियत और कामिल बंदगी का बेमिसाल नमूना था। ये तस्लीम और रजा और सब्र और शुक्र का वो

0: आपकी।
1: सामीन, अभी आप जनाब मोहम्मद इरफान लखनवी से उनका उम्दा कलाम समात फरमा रहे थे, और अब अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से ही नशर किया जा रहा था। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राम सूरत तिवारी के गाए भोजपुरी लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं राम सूरत तिवारी के गाए लोकगीत। अभी आपने सुना इनके स्वर में ये देशभक्ति गीत, और लीजिए अब सुनिए ये बारहमासा।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम सूरत तिवारी के गाए भोजपुरी लोकगीत। आपके साथ संगतकर्ता थे ढोलक बजाई अनिल कुमार मिश्र ने, हारमोनियम पर संगत दे रहे थे सतीश चंद्र गुप्ता, बांसुरी बजाई अलका सिंह ने, साइड रिदम दिया शोभनाथ चौरसिया ने। और श्रोताओं, राम सूरत तिवारी के गाए इसी बारहमासा के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म प्रेम कहानी के एक गीत से। इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
2: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे

खूबसूरत नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमले किए। अफ्रीका रोग नियंत्रण और बचाव संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजने पर भारत का आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 695 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। ईद उल अजहा आज पूरी दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराया। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास शहर में ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमले किए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसके बलों ने 4 ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। अमरीका ने कहा कि ये ड्रोन जलडमरू मध्य के आसपास खतरा पैदा कर रहे थे। ईरान की मीडिया ने शहर के पूर्व में विस्फोटों की खबर दी। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हमलों से कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से में निवासियों के लिए निकासी आदेश जारी किए हैं और हिजबुल्ला के खिलाफ नए हमलों से पहले इन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसराइली रक्षा बलों ने निवासियों से जहरानी नदी के उत्तर में सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया है। इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। ये 17 अप्रैल को युद्ध विराम लागू होने के बाद से सबसे बड़ा निकासी आदेश है। इसराइल ने कल दक्षिणी शहर टायर पर हमले किए। हिजबुल्ला ने इसराइल पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये हमले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल में नागरिकों पर हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों के बाद अपने जमीनी अभियान के विस्तार की घोषणा के बाद हुए हैं। इसराइल की सेना ने पिछले 24 घंटों में 9 बार लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी है, जिससे इसराइल लेबनान सीमा पर विस्थापन की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला ने देश में आपदा नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता का अनुरोध किया है। क्यूबा को अमरीका द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल समर्थन का आग्रह किया। अमरीका द्वारा क्यूबा पर कई प्रतिबंध लगाने के बाद तथा ऊर्जा और ईंधन की कमी को लेकर देश में तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने परिषद में कहा कि उनका देश मानवीय आपदा का सामना कर रहा है, इसलिए ये समय एकजुटता दिखाने का है। अमरीकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। देश में भोजन, दवा और बिजली की कमी हो गई है। देश 22 घंटे या उससे अधिक समय तक बिजली कटौती से जूझ रहा है और स्थिति बेहद गंभीर है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। रोग नियंत्रण केंद्र ने पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है।

0: 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुंडीबुगियो वायरस से होने वाले इबोला स्ट्रेन के लिए कोई भी स्वीकृत दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका को विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम के तहत 695 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी बाहरी भुगतानों और आयात नियंत्रणों से जुड़ी दो मुख्य शर्तों का उल्लंघन होने के बावजूद दी गई है। इस कार्यक्रम की पांचवी और छठी समीक्षा पूरी होने के बाद जारी बयान में IMF ने कहा कि श्रीलंका कोई नया बाहरी भुगतान बकाया न रखने और आयात प्रतिबंधों को लगाने या उन्हें और सख्त करने से के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन से संबंधित हैं। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। ये अवशेष मंगोलिया की राजधानी उलानबतार में 31 मई से सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे जाएंगे। वहां 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पहल भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे सांची जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के प्रति विदेशी पर्यटकों की रुचि भी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
0: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: ईद उल अजहा आज दुनिया भर में धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। ईद उल अजहा पैगम्बर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुकरा के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। भारतीय दूतावास ने बताया कि रहीम को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में सऊदी कानून के तहत 20 साल की जेल की सजा काटने के बाद क्षमादान देकर रिहा कर दिया गया। रहीम को एक 15 वर्षीय लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। आर प्रज्ञानानंद ने कल नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में नॉर्वे के विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। डी गुकेश को फाइनल में अलीरेजा फिरोजा से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानानंद के 4.5 अंक हो गए हैं और वे नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रज्ञानानंद अब अलीरेजा फिरोजा से पीछे हैं, जो 7.5 अंकों के साथ प्रतियोगिता में शीर्ष पर हैं। वहीं गुकेश 3.5 अंकों पर बने हुए हैं। बेंगलुरु में 8वीं भारतीय ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 2 बार के

0: ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमले किए। अफ्रीका रोग नियंत्रण और बचाव संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजने पर भारत का आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 695 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। ईद उल अजहा आज दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट से में। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्मी तराने। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ईद उल अजहा की रौनक और मोहब्बत भरी सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म दिल परदेसी हो गया। इस फिल्म के एक गीत से, इस गीत में आवाज दी है सुनिधि चौहान ने।

अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म में आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और अलीशा चिनाई की आवाज़ों में ये खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी 2 से। गीत में आवाज अरिजीत सिंह की है, संगीत मिथुन का।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म दिलवाले से। इस गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।

तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह का गीत। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोता आनंद ले रहे हैं चित्रपट

ये लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जहां गीत और संगीत आपके दिल को छू जाता है। यह है आपका अपना फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गाने। आज के इस कार्यक्रम के सफर में आपका हम सफर हूँ मैं, आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला।

तो तैयार हो जाइए इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। वैसे तो आप सभी को हमारा फोन नंबर याद ही है, लेकिन जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार हमसे जुड़े हैं उन्हें बता दूं, आपको डायल करना है हमारा फोन नंबर 0522-223-8825। जल्दी से उठाइए फोन और मिलाइए हमारा नंबर 0522-223-8825 और बताइए वो कौन सा गाना है जो आपके दिल को छू गया और आज इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं।

0: और अब समय है हमारे आज के पहले कॉलर से बात करने का, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग अनूप कुमार
1: पंकज
0: जी।
1: शुक्ला जी, है ना?
0: जी अनूप कुमार जी, मैं भी
1: हाँ
0: आपकी
1: जी
0: आवाज़ को
1: पंकज
0: पहचान
1: जी।
0: गया।
1: अरे ऐसे में मतलब ऐसा होता है, पंकज उदास जी और अनुप जलोटा जी तो एक गजले के लिए सुविख्यात है और
0: जी
1: दूसरे वो तो भजन के लिए सुविख्यात है, लेकिन
0: जी
1: हमारे पंकज शुक्ला जी तो अनाउंसिंग के बारे में तो बहुत फेमस है, लेकिन
0: जी
1: आपका दोस्त जो श्रोता है अनुप कुमार भट्टाचार्य इतना अच्छे नहीं है, क्योंकि
0: अरे नहीं अनूप जी, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है
1: क्या
0: और मैं तो आपको आपकी आवाज़ से ही पहचान जाता हूँ।
1: बात,
0: और क्या, जैसे ही
1: जी
0: आपने हेलो बोला मैं समझ गया कि अनूप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हमारे
1: जी
0: सुनने वालों को आप अपना परिचय अगर अपनी ही आवाज़ में देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
1: आकाशवाणी लखनऊ तो गजले के शहर है, शास्त्रीय शहर है, तो
0: जी
1: इस शहर में फोन करना एकदम मतलब ऐसा होता है, दिल के गिटार के तार झनझनाते रहते हैं जब फोन लगते हैं।
0: जी
1: तो आकाशवाणी लखनऊ के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना
0: जी राधे राधे। चलिए
1: जी
0: अनूप
1: पंकज जी?
0: जी।
1: एक एक बात कहूँ, सांस
0: जी
1: और विश्वास, सांस
0: जी
1: और विश्वास दोनों अलग अलग नाम है पर
0: जी
1: काम एक ही करता है, सांस जाए तो शरीर खत्म और विश्वास
0: जाए
1: जाए तो
0: तो
1: रिश्ता खत्म, है ना
0: बिल्कुल सही बात है कि
1: जी?
0: रिश्ते को अगर बचाना है तो विश्वास की डोर को पकड़ के रखना है।
1: जी।
0: चलिए
1: और आपने मेरा फोन उठा लिया तो इसीलिए एकदम क्या कहो, मतलब
0: अरे अनूप जी,
1: आखिर
0: आपने
1: तक
0: इतनी
1: आपने
0: दूर से
1: फोन,
0: हमें कॉल किया है तो हम आपका फोन कैसे ना शामिल करते कार्यक्रम
1: जी
0: में।
1: जी पंकज जी बहुत आभारी हूँ आपसे।
0: अरे नहीं,
1: तो
0: आभारी तो
1: आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: जी, जल्दी से
1: फिल्म
0: बताइए।
1: का नाम है यादों की कसम और
0: जी
1: गाने का बोल ऐसे है, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया, ऐसे करके
0: चलिए
1: गाने हैं। और पंकज जी कुछ कुछ श्रोतागण को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।

0: जी जल्दी से।
1: है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे पंकज शुक्ला जी के लिए, और
0: शुक्रिया।
1: सेकेंडली बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, अमर सिंह साहू जी, कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, प्रेम जी चक्रवर्ती जी है, और है अनवर बिहारी भाई जी है, और
0: जी
1: है विजय सिंह लखेरा जी है, और
0: जी
1: है हमारे ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं इस मन भावन प्रोग्राम सबके लिए, और
0: चलिए
1: बातचीत को यहीं पे
0: विराम देते
1: मैं
0: हैं,
1: खत्म
0: और
1: करता
0: आपने
1: हूं।
0: हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, जिसकी फरमाइश आपने हम तक पहुंचाई है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और इस कार्यक्रम में अब समय हमारे आज के अगले कॉलर से बात करने का। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना परिचय बताएं।
1: बिल्कुल सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यानी यमुना बेल्ट के किनारे से आपका दोस्त मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
0: बेटा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर, बहुत धन्यवाद।
0: और बेटा सिंह जी, बताएं कि आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कौन सा गाना प्ले करें।
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा बाजीगर और गीत की बोल रहेगा तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और आपकी आवाज में भी हमें आकाशवाणी लखनऊ के लिए प्यार नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, हमेशा आपको याद करते रहते हैं और
0: जी
1: फोन भी करते रहे, लगातार जो भी है कुछ अंतराल के बाद कॉल करते ही रहते हैं हम।
0: नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है बेटा सिंह जी कि आप जो है एक अंतराल के बाद करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी जो है मौका मिल सके इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। और
1: जी।
0: इसी क्रम में आज आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और ये गाना आप किसी को सुनवाना चाह रहे हैं?
1: जी बिल्कुल सर,
0: जी
1: बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने पूछ लिया और मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: जी,
1: कि हमारे मानीराम पाल हो गए जो कि हमीरपुर से,
0: जी,
1: और मांगीलाल चंदेल साहब हो गए, और
0: जी,
1: फूलचंद मनकारी से हो गए, दिनकर चित्रकूट धाम से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए, और हमारे जितने अन्य श्रोता सुन रहे हैं सभी लोग के लिए रहेगा गीत।
0: चलिए ठीक है बेटा सिंह जी, आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बाजीगर फिल्म से ये गाना है, और आपको बता दूं, आपके साथ साथ सभी श्रोताओं को बता दूं कि ये गाना आप सुनेंगे कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की आवाज़ में।

0: अभी आप बेटा सिंह जी की पसंद का ये गीत सुन रहे थे बाजीगर फिल्म से। अगर आज के कार्यक्रम में आप भी अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुनना चाह रहे हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-2238-825। जल्दी से मिलाइए इस नंबर को और सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी नगमा आज के कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम में। और अब समय है हमारे आज के अगले कॉलर से बात करने का। हेलो
1: हेलो शुक्ला जी, राधे राधे।
0: राधे राधे, अपना परिचय बताएं हमें और हमारे सभी सुनने वालों को।
1: जी शुक्ला जी, मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार आपसे बातचीत होती रहती है।

0: जी, बिल्कुल शुक्ला जी, आपका प्रेम है जो आप हम लोगों को, हम श्रोताओं को खींच लेता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए वो कौन सा गाना प्ले करें जो आप सुनना चाह रहे हैं?
0: बिल्कुल शुक्ला जी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि
1: जी
0: एक छोटा सा बिल्कुल बुंदेली गीत है, आप थोड़ा सा, आपकी आगे हो तो मैं गुनगुना दूं।
1: हल्का सा गुनगुना दीजिए।
0: हाय बाल माँ, हाय बाल माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ। बहुत गर्मी है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, बहुत जो है
1: बिल्कुल
0: खजुराहो का टेम्परेचर, मनकारी, बहुत तेज गर्मी है छतरपुर
1: फूलचंद
0: जिले में।
1: जी, आपके यहाँ ही नहीं हर जगह उतनी ही गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से जो है पूरा उत्तर प्रदेश और जो है पूरा उत्तर भारत जो है तप रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो है इससे हमें मुक्ति मिलेगी। और अब जल्दी से बता दीजिए कि आज इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गाना सुनवाएं?
0: बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, बिल्कुल। फिल्म का नाम है आग का गोला
1: जी
0: और गीत की बोल है कि तौबा ये तौबा, रब्बा ये रब्बा, ये कैसा गजब हुआ, जिसे बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। और हमारे कुछ मित्र हैं, आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले तो शुक्ला जी आपको डेडिकेट रहेगा।
1: जी शुक्रिया।
0: और हमारे बेटा सिंह यादव जी हैं, और प्रेमदास बाबा जी हैं, मणिराम पाल जी हैं, जितेंद्र पाल जी हैं,
1: जी
0: और जो है मांगीलाल चंदेल जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं, विजय
1: जी
0: कुमार पांडे जी, अमित तिवारी जी हैं, ओमकार भैया हैं,
1: जी
0: और कानपुर से पूनम दीदी जी हैं, और राहुल कुमार जी हैं। जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी माताएं बहनों को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
1: चलिए, आपकी पसंद का गाना आ रहा है वो आपके रेडियो सेट पर, और आप सुनिए और एंजॉय करिए अपनी पसंद का ये ट्रैक।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम में अब समय हमारे आज के अगले कॉलर से बात करने का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो आइए देखते हैं अब हमारे कौन श्रोता हमसे जुड़े हैं इस लाइन पर और कहां से उन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना परिचय बताएं।
1: जी, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और आप महाकाल की नगरी से हमें कॉल कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में आपका स्वागत है
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेम सिंह
1: जी। मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनते हैं और अपने घर परिवार वालों को भी सुनाते हैं।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रमों को जो है मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं और जो है आकाशवाणी लखनऊ के साथ जुड़े हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं प्रेम सिंह जी?
1: जी सर, फिल्म का नाम है मिस्टर बेचारा और गाने के बोले साथी मेरे, सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म।
0: चलिए, आपकी बात हमने भी सुनी है और आपको भी सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी सर, एक बात और बताना चाहूँगा मैं।
0: जी
1: जी, आकाशवाणी लखनऊ हमारे दिल के करीब रहता है, इतना करीब रहता है कि हमारे दिल के धड़कन में आकाशवाणी लखनऊ बसता है। हमारा कॉल आकाशवाणी लखनऊ पे लगता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जितने भी श्रोता कॉल लगा के बातें करते हैं, बड़ी बातें अच्छी अच्छी होती है, और सभी मतलब श्रोता एक दूसरे से जुड़ के बातें करते हैं, बड़ा
0: जी,
1: अच्छा लगता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात है प्रेम सिंह जी। और जब आप लोगों का कॉल लगता है तो जितनी खुशी आपको होती है आपसे बात करके, उससे ज़्यादा खुशी हम लोगों को भी होती है कि हमारे इतने श्रोता जो कहाँ कहाँ से हमें कॉल करते हैं और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ते हैं, और आपके कॉल करने से ही इस प्रोग्राम की शान बढ़ती है।
1: जी,
0: तो
1: कहा जाता है ना, श्रोता है तभी आकाशवाणी है, और आकाशवाणी का परिवार है तो श्रोता का
0: जी
1: परिवार है, और सभी श्रोता खुश हैं।
0: बिल्कुल सही बात है प्रेम सिंह जी। और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत जिसकी फरमाइश आपने हम तक भेजी है, और आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एंजॉय करिए आपकी पसंद का ये गीत।
2: सुन तो जरा।
3: हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जो श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि इस कार्यक्रम में हमसे बातें करने और अपनी पसंद का फिल्मी गाना सुनने के लिए आपको मिलाना है हमारा फोन नंबर 0522-2238-825। तो जल्दी से मिलाइए हमें इस फोन नंबर पर, हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है। और हमारे आज के अगले कॉलर हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तो उनसे बातें करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय बताएं।
1: जी सर, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश तुली।
0: अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और आपने त्रिपुरा से हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी सर, आकाशवाणी लखनऊ पे कॉल लगता है तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज देखिए मेरा जो कॉल लगा है तो मैंने आज कॉल एक ही बात के लिए लगा है कि अब 2026 की ये आकाशवाणी लखनऊ बल्कि सभी आकाशवाणी केंद्र के लिए ये 2026 के लिए मेरा आखिरी कॉल है, उसके बाद अब मुझे सिर्फ कार्यक्रम सुनना है और 2027 में फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
0: नहीं।

0: मैं तो आपसे गुजारिश यही करूंगा अविनाश जी कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, और आप जब कॉल करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है आपसे बातें करना। तो हम उम्मीद
1: नहीं,
0: करते
1: वो तो
0: हैं,
1: बात नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन की मतलब कि सुन कैसे, तो मैं जुड़ा रहूंगा, वैसे तो सुनता
0: नहीं
1: रहूंगा, अच्छा लगता है सुनने में भी।
0: वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप एक अंतराल के बाद वो करिए, लेकिन जो है अभी 2027 आने में बहुत टाइम है।
1: जी, वो अभी तो देर है, अभी
0: हाँ
1: लगभग
0: अभी
1: 7 महीने बाकी हैं।
0: हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, एक अंतराल के बाद आप जो है 15-20 दिन के बाद आप दूसरे लोगों को भी मौका देना चाह रहे हैं, ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन जो है 15-20 दिन के बाद आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, इस कार्यक्रम में हमें कॉल करते रहें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आज अविनाश जी कौन सा गाना है इस कार्यक्रम में आप सुनना चाह रहे हैं?
1: जी, आज मुझे सुना दीजिएगा किशोर जी की आवाज में गीत है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
0: जी
1: कभी
0: बिल्कुल
1: अलविदा ना कहना, एक गीत मुझे सुना दीजिए सर।
0: बिल्कुल अविनाश जी, और देखिए आपने खुद ही कह दिया कि कभी अलविदा ना कहना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, जो है चलते चलते फिल्म से। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

अभी आप अवनाश जी की पसंद का ये गीत सुन रहे थे चलते चलते फिल्म से। अगर आज के इस कार्यक्रम में आप भी अपनी पसंद के फिल्मी गाने को सुनना चाह रहे हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है

0: अभी आप अवनाश जी की पसंद का ये गीत सुन रहे थे चलते चलते फिल्म से। अगर आज के इस कार्यक्रम में आप भी अपनी पसंद के फिल्मी गाने को सुनना चाह रहे हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-2238-825। और देखते हैं अब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे कौन श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो,
1: भूल कर भी हम उन्हें भूल सकते नहीं, वो अक्सर हमें याद आते हैं। भूल कर भी हम उन्हें भूल सकते नहीं, वो अक्सर हमें याद आते हैं। जिन रास्तों पर हम चले वहाँ सिर्फ काटे ही काटे हैं। उस खुदा से शिकवा और शिकायत क्या करना, उस खुदा से शिकवा और शिकायत क्या करना, तकदीर ने हमें बस गम ही गम बांटे हैं। सर, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आपने तो जो है शायरी से, इतनी खूबसूरत शायरी से इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए।
1: जी बिल्कुल सर, और शेरो शायरी जब तक प्रोग्राम में नहीं होती है तब तक
0: मजा नहीं आता है,
1: अधूरा सा लगता है, लेकिन शेरो शायरी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए।
0: चलिए, और आप जैसे श्रोता इस कमी को पूरा कर देते हैं इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ के अपनी खूबसूरत शायरी से इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।
1: कहते हैं कि तड़का तो लगा हुआ है लेकिन थोड़ा सा और मसाला डाल दो तो पूरा टेस्ट ही हो जाता है, मतलब टेस्ट बदल जाता है।
0: मतलब आपने आज इस कार्यक्रम में टेस्ट बदल दिया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: चलिए, बढ़िया है। लेकिन अब
1: पूनम बोल रही हूँ। जी सर।
0: हाँ, एक बार जरा परिचय अपना फिर से बता दें।
1: जी सर, मैं सभी श्रोताओं को बताना चाह रही हूँ, मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से सर।
0: चलिए पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और आप हमारे नियमित श्रोता हैं और लगातार आप कार्यक्रम में हमसे जुड़ते रहते हैं और कॉल करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है कि आप जैसे नियमित श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जब आपसे बात होती है तो हमारा भी मन खुश हो जाता है।
1: बिल्कुल सर, मन हमारा भी खुश हो जाता है आप जैसे उद्घोषक से बात करके, क्योंकि आप इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आते हैं और जब आप आते हैं ना तो सभी के चेहरे पर खुशी ही खुशी होती है और साथ साथ हर चेहरा मुस्कुराने लगता है आपकी आवाज सुनकर।
0: चलिए, आपकी मुस्कुराहट ऐसे ही चेहरे पे बनी रहे। और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाह रही हैं?
1: सर, मुझे गीत तो सुना दीजिएगा, फिल्म का नाम है तेरी आरजू तेरा इंतजार, और मुझे तो आपके आने का इंतजार रहता है जब आप आकाशवाणी में आते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी कुछ दोस्त हैं उनको डेडिकेट करूंगी। पहले हाँ, तो आप हैं,
0: शुक्रिया।
1: रिंकी पिंकी जी हैं, गुंजन तिवारी जी हैं, समा परवीन जी हैं, अन्नू पांडे जी हैं, और साथ साथ भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी हैं, और राम बाबू शर्मा जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं, और साथ साथ रमेश प्रजापति जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, जयपाल जी हैं, और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं लाइव सभी को गीत डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपने हमें कॉल किया है, और आपकी पसंद का गाना आपको और आपके सभी जानने वालों को सुनवाते हैं और जो आ रहा है बाप के रेडियो सेट पर।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम में अब समय है हमारे आज के अगले कॉलर से बात करने का। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, अपना नाम और कहां से बोल रहे हैं परिचय बताएं। हेलो।
1: ग्राम परजिया। हेलो सर।
0: हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक।
1: मैं पंजाब जिला जलंधर ग्राम परजिया कला से तहसील शाहकोट गुरमुख।
0: गुरमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और आपने जालंधर पंजाब से हमें कॉल किया है, इसके लिए शुक्रिया। क्या करते हैं गुरमुख जी?
1: आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है।
0: अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है
1: जी अब आ रही थोड़ी।
0: जी। क्या करते हैं गुरमुख जी?
1: सर जी, मैं दृष्टिहीन हूँ, छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूँ।
0: अच्छा, मतलब आप किराने की दुकान पर बैठ के हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं।

0: आकाश में लखनऊ और वॉशिंगटन से।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरुमुख जी आपसे बात करके। और आज इस कार्यक्रम में
0: हाँ
1: आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
0: जी सर जी, अब आकाशवाणी लखनऊ का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं
1: जी
0: कई चैनलों पर नंबर भी वो भी लगाता हूँ, गाना मन चाहे नहीं मिलता, लेकिन आकाशवाणी लखनऊ पे मन चाहे गाना मिल जाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए, शुक्रिया आप हमें कॉल करने के लिए। अब आप जल्दी से बताइए कि कौन सा गाना इस कार्यक्रम में आप सुनना चाह रहे हैं?
0: मम्मी का नाम तो मालूम नहीं हो सके, तो आप बता दीजिए। एक
1: जी
0: पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी।
1: चलिए, दिल का हीरा फिल्म का ये गीत आप सुनना चाह रहे हैं। तो आपने
0: हीरा
1: हमें,
0: मम्मी है सर
1: हाँ, दिल का हीरा फिल्म का ये गाना है जो आप सुनना चाह रहे हैं। चलिए, हम आपको
0: जी।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार,
1: नमस्कार, अपना परिचय बताएं।
0: हम दिनेश कुमार बोल रहे हैं, ग्राम पिपरा खुर्द से, जिला सीतापुर से।
1: दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या करते हैं दिनेश जी?
0: और है मजदूरी वजूरी करे जीते हैं।
1: चलिए, मतलब आप जो है समय निकाल के हमारे कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े रहते हैं और अपने घर का खर्च चलाने के लिए जो है काम भी करते हैं।
0: जाग बात और खास है, सुन
1: जी
0: लो।
1: हाँ, जल्दी बताएं।
0: या वो दिन जनगणना वाले आए रहे मास्टर लिखे,
1: चलिए, वो उस कार्यक्रम के
0: कहने
1: लिए,
0: रहे कि
1: ये हमारा
0: रेस्टोर
1: कार्यक्रम
0: रेस्टोर
1: नहीं
0: रेस्टो
1: है।
0: रेस्टो
1: आज
0: रेस्टो
1: इस कार्यक्रम में अगर आप कोई गीत सुनना चाह रहे हैं तो बस उसके बारे में केवल हमें बताएं।
0: तो रेडियो
1: आज इस
0: देखे जो
1: कार्यक्रम में
0: रोज
1: कौन सा गाना
0: सुनता
1: सुनना
0: मास्टर
1: चाह रहे हैं?
0: सनम बेफा में का।
1: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो आप सुनना चाह रहे हैं। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में बस इतना ही। आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें कॉल किया, अपनी फरमाइश और विचार हमारे साथ साझा किए। अगर आज आपका कॉल नहीं लग पाया है तो चिंता मत कीजिए, कल इसी कार्यक्रम में फिर से कॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के कार्यक्रम से मैं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला आपसे अनुमति चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।

लखनऊ है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
3: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर, जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
3: जी,
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा

0: आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े

0: भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
2: बहन जी, डाकिया।
1: अच्छा, खोलते हैं भैया।
3: जी कहिए।
2: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
3: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
2: तो कोई बड़ा है घर में?
3: हाँ, घर पर माता जी है ना।
2: जी बुलाइए।
4: माँ।
1: हाँ।
4: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
1: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
2: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
4: माँ, माँ।
5: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
5: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
1: हाँ।
5: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
3: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
4: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
5: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का? तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: हाँ माँ।
3: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
3: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
6: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
6: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
6: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह

0: वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आरएस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम।
8: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप

0: यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी लखनऊ से अब आनंद लीजिए सदाबहार नगमों का। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सदाबहार नगमे, जहां वक्त ठहर जाता है और यादें फिर से मुस्कुरा उठती हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला, और अगले आधे घंटे तक हम साथ मिलकर सफ़र करेंगे उन सुनहरे दौर का, जहां हर गीत में एहसास था, हर धुन में कहानी। तो तैयार हो जाइए दिल को छू लेने वाले उन गीतों के लिए, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने कल थे। श्रोताओं, कभी कभी दिल में बहुत कुछ होता है, पर हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। प्यार, इंतज़ार, यादें, सब दिल की बातें हैं जो बस दिल ही जानता है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म में। गीत लिखा है असद भोपाली ने और इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, जब प्यार अपनी गहराई में उतर आता है तो दुनिया की हर आवाज़ जैसे थम सी जाती है, नज़रें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढती है और हर खामोशी में बस उसी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे सारे नज़ारे छुप गए हों और बस दो दिलों की धड़कनें ही बाकी रह गई हों। तो आइए उसी एहसास को महसूस करते हैं इस मधुर गीत के साथ।

इस समय आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में दो रास्ते फिल्म का ये सदाबहार गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कभी कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है दिल के सारे एहसास जगाने के लिए। जब आँखों के झरोखों से कोई दिल में उतर जाता है तो हर सपना जैसे हकीकत बनने लगता है। हर पल में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद नज़र आने लगती है। वो पहली नज़र का जादू जो दिल को चुपके से अपना बना लेता है। तो आइए उसी प्यारे एहसास को महसूस करते हैं आप और हम इस मधुर गीत के साथ।

अखियों के झरोखों से इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना हेमलता की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, कभी कभी दिल को सुकून सिर्फ किसी एक खास शख्स से मिलता है। उसकी एक मुस्कान, एक बात और सब कुछ ठीक सा लगने लगता है। जब वो पास हो तो हर गम हल्का हो जाता है और जब दूर हो तो दिल बस उसी को पुकारता है। वो जो हमारे दिल का चैन बन जाता है, जिसके बिना सब अधूरा सा लगता है। तो आइए उसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं हमारे अगले गीत में।

मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, जिसकी तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल रुकना चाहता है, लेकिन हालात आगे बढ़ने को मजबूर कर देते हैं। मिलना जितना खूबसूरत होता है, बिछड़ना उतना ही दर्द भरा। और उन अलविदा के लम्हों में छुपी होती है ढेर सारी यादें, ढेर सारी बातें। तो चलिए महसूस करते हैं उसी जुदाई के एहसास को इस गीत में।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सदाबहार नगमे का सफ़र यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, जिसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। उम्मीद है इन प्यारे गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और कुछ मीठी यादों को फिर से जगा दिया होगा। मैं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला आपसे अनुमति चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए, संगीत कभी खत्म नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। मनशाराम पुत्र रवि राम निवासी बरगदही थाना हरदत्त नगर गिरंट श्रावस्ती से हमें सूचित करते हैं कि पूजा, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा और इकहरा मजबूत जिस्म है। पूजा 2 मई 2026 रात 12 बजे से कहीं लापता है। पूजा के बाल लंबे और आँखों और बालों का रंग काला है। जिस समय लापता हुई इन्होंने हरे रंग की साड़ी, ब्लाउज, नाक में नथिया, कान में कुचिया, पैरों में पायल पहनी थी। ये अपने साथ टच स्क्रीन का मोबाइल भी ले गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस नंबर पर दे

सकते हैं। 7266969885 मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 7266969885। सहाबुद्दीन पुत्र शहजाद निवासी जमुनही दक्षिण मरुमूर्तिया थाना हरदत्त नगर गिरंट श्रावस्ती से हमें सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी रुखसाना 5 मई 2026 से कहीं लापता हैं। रुखसाना की उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है। जिस समय लापता हुई इन्होंने सलवार समीज और नकाब ओढ़े था। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 9235391664। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 9235391664। केशवराम पुत्र स्वर्गीय कामता प्रसाद निवासी ग्राम खपरिया थाना सोनवा श्रावस्ती से हमें सूचित करते हैं कि राम सनेही जिनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला और नाक कान कद काठी औसत है, ये 7 मई 2026 11 बजे से कहीं लापता है। ये अधिक शराब पीने के आदी हैं और इनके बालों का रंग काला है। जिस समय ये लापता हुए इन्होंने पैंट शर्ट पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 9696806687। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 9696806687। प्राप्त सूचना के अनुसार मोनू यादव पुत्र ओम प्रकाश निवासी फरसरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, ये 29 अप्रैल 2025 अपने मामा अशोक यादव के घर ग्राम चक हबसापुर थाना भीमपुरा बलिया से कहीं लापता है। मोनू की उम्र 14 वर्ष, कद 4 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनकी दाहिनी आंख तिरछी है। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस पते पर दे सकते हैं, थाना प्रभारी थाना भीमपुरा जनपद बलिया। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं, 9454402992। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 9454402992। एक और प्राप्त सूचना के अनुसार उमा पत्नी संजय कुमार निवासी ग्राम शंकर नगर भगता थाना ललिया बलरामपुर, ये 2 मई 2026 से कहीं लापता है। उमा की उम्र 20 वर्ष, रंग गोरा और चेहरा गोल है। इनकी आंख नाक कान औसत है। जिस समय लापता हुई इन्होंने पीले कलर का सूट और सफ़ेद चप्पल पहनी हुई थी। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 9987220972। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 9987220972। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुईं।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे मरहले को मोसर तरीके से नाफिस करने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मुहिम सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर तक महदूद न रहे बल्कि मामूल के मुताबिक निगरानी, आवामी शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकों के कोऑर्डिनेशन से ठोस नतायज यकीनी किए जाएं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं पेशरफत मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से कचरा प्रोसेसिंग और गोबरधन प्लांटों समेत ठोस वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम दिए। मीटिंग में रेलवे, बिजली और सड़क हलकों के तकरीबन 3

0: हजार करोड़ रुपए लागत वाले 7 खसूसी प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: काबीना की इक्तिसादी मामलों की कमेटी ने अवामी तकसीम निज़ाम के तहत राशन, नकलो हमल और मैनेजमेंट इमदादी स्कीम सार्थक पीडीएस को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 25,530 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत में वजीर बराए इत्तला तो नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह स्कीम अवामी तकसीम निज़ाम को जदीद बनाने में तावुन करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमद रफ्त के लिए पहले मरहले में 110 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी यकीनी करने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी मीटिंग में सदारत करते हुए वजीर आला ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गीडा हल्के में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से मुजव्वजा परवाज से कबल अवामी नकलो हमल निज़ाम को पूरी तरह मुस्तहकम किया जाए। मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से तौसी पर भी जोर दिया। ईद उल अज़हा का त्यौहार आज पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के जरिए अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे की याद में मनाया जाता है। सुबह से ही इस मौके पर मसाजिदों में खसूसी नमाज का एहतमाम किया गया, जिसके बाद कुर्बानी के फ़राइज अदा किए जा रहे हैं। दारुलहुकूमत लखनऊ समेत गोरखपुर, आगरा, कौशाम्बी, कानपुर शहर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, इटावा, शामली, वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और सहारनपुर में हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नमाज अदा की गई। वाज रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले ही सभी सीनियर पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करके ये यकीनी करने को कहा है कि कोई नई रवायत शुरू न हो और न ही पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी दी जाए। दरियसना गवर्नर आनंदी पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का सिलसिला कल भी जारी रहा। कई अजला में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से लू से राहत का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के कई हिस्सों में कल से आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का कयास जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, जालाबारी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। दरियस्ता मशरकी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। कुछ मकामात पर जालाबारी के भी इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन एयर

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सब बहनन का वंदना के नमस्कार और ईद उल अजहा के बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने ई त्योहार परोपकार और आपसी सौहार्द के संदेश देत है, मने हम सब आपस में हिल मिल के रहा जाए और एक दूसरे से मधुर संबंध बनाए के रखा जाए, साथ में जरूरतमंदन के मदद के खातिर सदैव तत्पर रहा जाए। और श्रोता बहनी, जब हम बात मधुर संबंधन के कीन है तो प्रकृति से भी तो हमार सबके संबंध मधुर होए का चाहिए। धरती पर विराजित पेड़ पौधा, जंगल, पहाड़, नदिये, इन सबन से भी हम मधुर रिश्ता बनाए के राखी। काहे से जब ई हरे भरे स्वस्थ रहिए तब हमार सबके स्वास्थ्य भी नीके बना रही, और यदि वातावरण दूषित होएगा तो वही के सीधा असर हम सबके स्वास्थ्य पर भी पड़त है। बोला आजकल बहुत तेजी से हमार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण ना केवल मनई के अस्तित्व के खातिर हानिकारक है, बल्कि यह के कारण सगरी दुनिया के तापमान में वृद्धि, पिए के खातिर जल के कमी, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु चीर चुरंगरन के बहुत सी प्रजाति भी समाप्ति की ओरिया हैं। ऐसन स्थिति में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रित करे में हम मेहरुवन के योगदान बहुत मायने राखत है। श्रोता बहनी, हम सभी बात का मानित है कि प्रकृति और स्त्री मां समानता है, कहे से कि दोनों ही पोषण करत हैं। हम औरतें सदैव से ही बिरवन केर, नदियन केर, जल श्रोतन और इंदारा कुयन केर पूजा मेर मेर रूपन मां करित है, जो उनकी प्रकृति के प्रति प्रेम और आस्था व समर्पण केर परिचय देत है। बिरवन मां पीपल, वट वृक्ष, केला, आंवला और तुलसी केर पूजा व सिंचाई करत भय मेहरुए पर्यावरण संरक्षण मां अपन योगदान दे रही हैं। जीमा से पीपल केर बिरवा ज्यादा मात्रा में जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन छोड़त है, और वैसे दुगनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायु का अवशोषित करके पर्यावरण के शुद्धि मां योगदान दे रहा है। और नीम के बिरवा के तो का ही कहने, यही के पत्तियन से लई के यही के फल और छाल सब ही कौनो न कौनो काम में आवत हैं। नीम से अनेक प्रकार के औषधि भी बनाई जात है, और नीम के बिरवा के नीचे हम सब देवी मैया के स्थान मानित है और हुआ पूजा करित है। यह मेर से तुलसी भी पर्यावरण संरक्षण में बहुत लाभकारी है, जी के पूजा हम सब करित है। यही के पौधा से भी मेर मेर के दवाई बनत हैं, और सर्दी खांसी हो जाए तो तुलसी केर काढ़ा के सेवन से तुरंत आराम मिले लागत है। यह नहीं, तुलसी के पौधा लगावे से आसपास के वातावरण भी शुद्ध बना रहत है। यह मेर से आंवला के पेड़ के भी पूजा कीन जात है, और आंवला भी कतना फायदेमंद होत है। और अब बात करी थे नदियन केर, तो गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियन का माता केर स्थान दीन गवाह है, और हम मेहरुए उनके भी पूजा अर्चना करके उनमें स्नान करे का पवित्र मानत भय समाज में उनके संरक्षण के संदेश दे रही हैं। तो हम तो यह कहब श्रोता बहनी कि नदियन में कूड़ा करकट डारे से बचो, और दूसरे मने इनका भी ई बारे में समझाओ कि नदियन में स्नान तो करें, मुला कपड़ा धोए के व साबुन के उपयोग करके जल श्रोतन का प्रदूषित करे से बचें। यही मेर हरे भरे बिरवन के कटाई ना होए देव। यदि ईंधन के खातिर लकड़ी के जरूरत है तो सूखे बिरवन का उपयोग में लाओ, और अपने आस पड़ोस में हरे भरे पौधा जरूर लगाओ। साथ में नलका, इंदारा, कुयन के साफ सफाई भी समय समय पर करत रहो, ताकि हमार आस पास के वातावरण शुद्ध बना रहे। यही मेर से हम सब घर के सफाई, बर्तन में स्नान में जल के अपव्यय व दुरुपयोग कर रोके के जल के बचत कर सकित है। बायोमास व उन्नत चूल्हन के उपयोग करके सौर ऊर्जा का वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अधिकाधिक उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन के मात्रा में कटौती करके पर्यावरण प्रदूषण में कमी ला सकित है। तो रही पर्यावरण संरक्षण में हम मेहरवन के योगदान के बात, और श्रोता बनी बात जब पर्यावरण बचावे के चल रही है तो हम मेहरुए गीत गौनई के माध्यम से भी यही का बचावे रखे के बात करित है, और ई संदेश जन जन तक गीतन के माध्यम से भी पहुंचावे के प्रयास करित है। तो यह बात पर चलो सुना जाए पर्यावरण गीत।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोता बहनी, हम समय मेहरुअन का उम्र बढ़े के साथ अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्यावन के सामना करेगा परत है। जीमा से हड्डियन के कमजोर हो भी एक समस्या है, तो यह बात पर आज हम लेके आए हैं भेंटवार्ता। महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर पड़ना, जरूरी जांच और इलाज, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रेखा वाजपेयी बहनी और उनसे बातचीत करी हैं ज्योति चंद्रा बहनी। तो चलो सुना जाए।
3: घर आंगन सुनने वाली सभी श्रोताओं को ज्योति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमने अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाया है प्रोफेसर और डॉक्टर रेखा वाजपेयी मैम को। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
3: श्रोताओं, मैम अभी राजकीय आयुर्वेद संस्थान में मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। आज हमारा चर्चा का विषय है महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के कमजोर होने के कारण, लक्षण और उनका उपचार। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर

0: क्यों होने लगती है?
1: बढ़ती उम्र के साथ सभी में कुछ परिवर्तन होते हैं, ये एक सामान्य सी नेचुरल प्रक्रिया है। शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं में विशेष रूप से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ अधिक कमजोर हो जाती हैं। जब रजोनिवृत्ति हो जाती है या महावारी बंद हो जाती है तो एक हार्मोन होता है शरीर में जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जिसका काम होता है हड्डियों को मजबूती देना। तो 40 वर्ष की उम्र के बाद जब रजोनिवृत्ति की तरफ महिलाएं जाती हैं तो ये हार्मोन कम हो जाता है, और उसकी वजह से महिलाओं में विशेष रूप से जो है हड्डियों में कमजोरी हो जाती है और उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
0: जी, हड्डियों के कमजोर होने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि अब हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं?
1: जी बिल्कुल, इस समय शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि महिलाएं अपने काम के साथ शुरुआत में इन चीज़ों को जब नहीं ध्यान देती हैं तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो शुरू शुरू में होता यह है कि या तो आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आप सुबह उठते हैं तो काम करने के पहले आपको शरीर में बहुत अधिक जकड़न होती है और कमजोरी महसूस होती है, जल्दी आप थक जाते हैं, या जरा सी चोट लगने से आपको फ्रैक्चर होने का डर रहता है। इस तरह की अगर कोई परेशानियां लगें, चलने में दिक्कत हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ध्यान देना चाहिए कि आपकी हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं।
0: जी, किन महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा रहता है मैम?
1: जैसा मैंने कहा ना, 40 वर्ष की उम्र के बाद ये खतरा अधिक होता है। तो 40 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र में मीनोपॉज हो जाता है या रजोनिवृत्ति हो जाती है, तो उस समय जो इस एज की महिलाएं होती हैं उनमें खतरा होता है, या जो खान पान का अपना ध्यान नहीं रखती हैं उनमें भी खतरा होता है, या ऐसी महिलाएं जो बार बार गर्भ धारण करती हैं और अपने पोषण का ध्यान नहीं रखती हैं उनमें होता है, या जो धूप का सेवन नहीं करती, अपना दिनचर्या नियमित नहीं रखती, उनमें भी इस तरह का खतरा ज़्यादा होता है।
0: जी, आजकल जैसे इस तरह की मैम किसी को दिक्कत होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं विटामिन डी का टेस्ट कहते हैं, तो मैम विटामिन डी की कमी का हड्डियों पर कैसे क्या प्रभाव पड़ता है?
1: जी, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम उसका हड्डियों का एक मेन कंटेंट होता है, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो जैसे पहले लोग धूप उप का सेवन करते थे, आजकल लोग उतना धूप का भी सेवन नहीं करते, तो विटामिन डी हमको धूप से मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो अगर हम कैल्शियम ले भी रहे हैं तो हमारे शरीर में वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता और इसलिए हड्डियाँ मजबूत नहीं होती। तो विटामिन डी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, क्या कम उम्र के महिलाओं को भी हड्डियों की समस्या हो सकती है, मतलब
1: जी
0: विटामिन
1: बिल्कुल
0: कैल्शियम की
1: बिल्कुल
0: कमी?
1: बिल्कुल होती है। आजकल की जो दिनचर्या है, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का ठीक से ध्यान नहीं रखता है, जंक फूड लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, या एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, समय पे सोते नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा आजकल जो देखा जाता है यंग लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम, वो अपना वेट कम करने के लिए खाली डाइट को ही कम करते रहते हैं। तो उनकी डाइट में जो चीज़ें प्रॉपर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग ओपीडी में देखते हैं यंग बच्चे आते हैं जिनकी हड्डियाँ कमजोर, जोड़ों में दर्द, गर्दन में या सर्वाइकल की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये हड्डियों की मजबूती के लिए क्या कोई टेस्ट होता है? ऐसी कौन सी जांचें हैं जो कराना 40 के बाद ज़रूरी हो जाता है?
1: वैसे तो 40 वर्ष की उम्र के बाद जो सामान्य जांचें हैं वो समय समय पर, नहीं तो आप एक साल में जांचें कराते रहना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग हड्डियों की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी, सीरम कैल्शियम की जांच होती है, विटामिन डी की जांच होती है, वो कराना चाहिए, ये तो ब्लड में हो जाता है। इसके अलावा एक BMD टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, जिससे स्पेशली हम जान सकते हैं कि हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं या कमजोर हैं, तो BMD की जाँच भी करानी चाहिए।
0: जी, बोन डेंसिटी टेस्ट जिसे कहते हैं,
1: बोन मिनरल डेंसिटी,
0: और डेक्सा स्कैन मैम किसको
1: जो
0: कहते हैं?
1: डेक्सा स्कैन जो होता है एक मशीन होती है जिससे ये BMD का टेस्ट होता है। ये बिना पेन के ऐसे ही कुछ मिनट में आप बॉडी में, कमर पे या पैर पे, ये मशीन लगा के स्कैन किया जाता है। जो मशीन होती है वो डेक्सा होती है, जो स्कैन करते हैं उसको डेक्सा स्कैन कहते हैं, वो BMD की जाँच के लिए ही होता है।
0: क्या सामान्य ब्लड टेस्ट भी हड्डियों की कमजोरी का पता उससे चल पाता है?
1: कैल्शियम और विटामिन डी ये जो हम जांचें कराते हैं तो सामान्य ब्लड टेस्ट में ही आ जाता है।
0: मैम, ग्रामीण महिलाओं में हड्डियों की जो समस्याएं होती हैं, हड्डियों की कमजोरी का और घुटनों का दर्द, ये सब ग्रामीण महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है,
1: हाँ,
0: ऐसा क्यों होता है?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार में के काम काज में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो उसकी वजह से वो ना अपने खान पान का उतना ध्यान रख पाती हैं, ना अपनी दिनचर्या का ध्यान रखती हैं, ना समय पर सोती हैं। तो जो भी महिलाएं, चाहे ग्रामीण हों चाहे शहरी हों, जो अपने काम में इतना व्यस्त रहती हैं और अपने आहार विहार का ध्यान नहीं रखती हैं, उनको इसकी तकलीफ ज्यादा होती है। और दूसरा, ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें तो समय पर थोड़ा उतना जागरूक नहीं होती हैं कि उनको लगता है तो रोजमर्रा का काम है कि हमारी कमर

0: दर्द हो रहा, कोई बात नहीं
1: जी।
0: तो अगर ऐसा करती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होती हैं तो उनको ये तकलीफ ज्यादा दिखी जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में हड्डियों की कमजोरी को किस रूप में देखा जाता है? क्या आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद की दवाइयों से इसको कम किया जा सकता है?
0: जी, आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसमें आयुर्वेद में एज के हिसाब से बताया गया है, हमारे यहाँ वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं कि किस उम्र में कौन सा दोष बढ़ रहा है। तो जब ज्यादा उम्र की हम बात करते हैं, वृद्धावस्था या जो यंग एज के बाद प्रौढ़ अवस्था होती है, उस समय वात बढ़ जाती है शरीर में
1: जी।
0: तो वात बढ़ने से अस्थि क्षय, अस्थि माने हड्डियां क्षय होने लगता है, शरीर का क्षय होने लगता है, तो हड्डियों में खासकर क्षय होता है। तो जब बड़ी एज हो जाती है, उम्र बढ़ने लगती है, तो वात बढ़ जाती है और वो अस्थियों को कमजोर करना शुरू कर देती है। तो आयुर्वेद में इसको अस्थि क्षय कहा जाता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और अस्थि क्षय हो रहा है
1: जी। क्या आयुर्वेदिक दवाएं पंचकर्म जो अभी आपने बताया हड्डियों के लिए लाभकारी होती है?
0: तो जैसे मैंने कहा ना, वात दोष बढ़ जाता है, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आपकी बढ़ती उम्र हो तो आप ऐसी चीजों का सेवन ना करें जिससे वात बढ़े, क्योंकि वात बढ़ेगा तो आपकी हड्डियों को कमजोर करेगा। तो जैसे बहुत ठंडा खाना खाना, रूखा खाना खाना, बहुत ज्यादा भूखे रहना या उपवास करना, इन चीजों को मना किया गया है, तो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आयुर्वेद में कहा गया है कि आप अपनी दिनचर्या में अभ्यंग या तेल मालिश को शामिल करिए।
1: अच्छा।
0: रोज कम से कम आप एक बार अपने जोड़ों पे, हड्डियों पे नियमित जो है वो तेल की मालिश करें। और पंचकर्म जो है वो तो आयुर्वेद की एकदम वरदान चिकित्सा है, इसमें तो जड़ से रोगों को एक तरह से आप समझ लीजिए हटाया जाता है। तो पंचकर्म में भी स्नेहन आता है, तेल मालिश वगैरह, पंचकर्म चिकित्सा से हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो रेगुलर में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए
1: जी। महिलाओं के लिए कौन कौन से ऐसे आयुर्वेदिक कुछ आप लोग जो जनरली सजेस्ट करते होंगे, ऐसे कौन से आहार हैं जो लेना चाहिए?
0: आहार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दूध
1: जी,
0: दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही में महिलाएं बच्चों को तो सब देती हैं लेकिन अपने लिए नहीं ध्यान रखती हैं। दूध है, पनीर है, और तिल जो होते हैं वो बहुत अच्छा हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए अच्छी चीज होती है। और घी, बॉडी में रुक्षता आती रहती, सूखते रहते हैं, तो आपको घी का भी नियमित सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो सहजन है, सहजन का प्रयोग करना चाहिए। और दवाइयों की अगर हम, दवाइयाँ क्या, किचन में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आयुर्वेद में जो कही गई हैं जिनका हम नियमित प्रयोग करें। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ रसायन औषधियाँ कही गई हैं, जैसे कि ताकत के लिए बल्ले होती हैं, तो उसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, इनका प्रयोग नियमित करना चाहिए। आप गुड़, तिल के लड्डू बना सकते हैं जिनको आप दूध के साथ लें, हल्दी वाला दूध लें, इन चीज़ों का नियमित अगर सेवन करते रहें तो हड्डियाँ मजबूत रहती हैं।
1: अभी डॉक्टर साहब आपने कहा कि महिलाएं धूप नहीं लेती, तो धूप का हड्डियों से क्या संबंध है?
0: धूप विटामिन डी जो होता है, जो सुबह की धूप होती है, उससे विटामिन डी मिलता है। और पहले भी मैंने जैसे कहा कि कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। आजकल लोग दवाइयों में तो ले लेते हैं लेकिन धूप का सेवन नहीं करते, तो जब आप धूप का सेवन करते हैं तो जो भी आप आहार ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम है वो बॉडी में आप खा तो रहे पर वो एब्जॉर्व तो हो आपकी बॉडी में लगे, तो उसके लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है और वो सुबह की धूप में मिलता है। तो आपको 10 से 15 मिनट जरूर सुबह की धूप का सेवन करना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कोई व्यायाम भी हो सकता है जो रोजाना, जैसे योग या कोई ऐसा आसन हो जो करें महिलाएं जिससे फायदा हो?
0: जी, दिनचर्या में आपको अपने लिए आधा घंटा, 15 मिनट जो भी निकाल सकते हैं वो शामिल करना चाहिए, व्यायाम और योग करना चाहिए। योग में कुछ योग हड्डियों के लिए और हड्डियों के साथ साथ आपके हाथ पैर शरीर की मसल्स को मजबूत करने के लिए भी जरूरी होते हैं। तो जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, जिसमें कि आप अपने शरीर को संतुलित भी करते हैं और आपकी मसल्स भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कमर में दर्द है या नहीं भी है तो भुजंगासन एक बताया जाता है, जिससे कि आपको रेगुलर इसका प्रयोग करते रहने से आपकी हड्डियों के आसपास जो मसल्स होती हैं वो मजबूत होती हैं, तो हड्डियों पे जोर नहीं पड़ता और हड्डियां अगर थोड़ी कमजोर भी हैं तो आप उसको मजबूत रख सकते हैं
1: जी। हड्डियों को स्वस्थ रहने के लिए और महिलाओं को अपनी दिनचर्या में डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ बदलाव करके हम इस रोग से बच सकते हैं, हड्डियों के रोग से। डॉक्टर साहब, हड्डियों की बीमारियों के बारे में तो हमने गठिया के बारे में बहुत सुना है, लेकिन सामान्य रूप से और कौन सी बीमारियां होती हैं जो हड्डियों की वजह से बढ़ जाती हैं?
0: जी, हड्डियां कमजोर होने से सबसे पहले महिलाओं में तो कमर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, और इसके अलावा जैसे आपने कहा गठिया, और यंग एज की भी आपने बात की, तो जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जिसको हम कहते हैं ग्रीवा स्तंभ कहते हैं, ये भी रहती है। सबसे ज्यादा जो 40 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है वो गठिया बहुत ज़्यादा महिलाओं में मिलता है। उसका कारण होता है, एक तो जैसे कि हड्डियाँ कमजोर होना एक कारण हो गया, दूसरा कारण मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी का वजन ज़्यादा है और उसकी हड्डियाँ थोड़ी भी कमजोर होती हैं तो उसको हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से उसकी बीमारी बढ़ती है। तो आपको

0: हड्डियों का इलाज करना है, हड्डियों का ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने वजन को भी नियंत्रित करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन न करें जिससे आपका वजन बढ़े। इसके अलावा जैसे आप गठिया की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये ज़रूर पता होना चाहिए।
1: जी
0: ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है किसी भी हड्डी के दर्द में या किसी भी दर्द में। आप आइसक्रीम, ठंडी हवा, इन सब का सेवन नहीं करें।
1: मैम एसी का इस्तेमाल कम से कम
0: करें। एसी में डायरेक्ट नहीं बैठें
1: जी।
0: आप मतलब कमरा इतना चिल्ड नहीं करें। अगर आप करेंगे तो निश्चित है जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी हड्डियों में जकड़न हो जाएगी
1: जी।
0: इसके अलावा सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, कमोड का इस्तेमाल करें, इंडियन वाले टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें, ज़मीन पर ना बैठें। अगर आपको बीमारी हो भी गई है तो भी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, नहीं तो इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर आपका इलाज कराने के बाद भी उसमें आपको राहत नहीं मिलती
1: जी। मैम चलते चलते डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि हमारी ग्रामीण महिलाएं कैसे अपने हड्डियों को स्वस्थ रखें और कैसे अपनी दिनचर्या को बदल के अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकती हैं। तो डॉक्टर साहब क्या हमारी महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं अपनी बहनों को ये संदेश देना चाहूंगी कि चूंकि आप ही परिवार की धुरी होती हैं, आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और हड्डियों की बात कर रहे हैं तो हड्डी से ही हमारे शरीर का ढांचा बनता है। अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, कुछ अपने पोषण का ध्यान रखें, अपनी नींद का ध्यान रखें, अपने खाने पीने की चीज़ों को रेगुलर करते रहें, तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और अगर मजबूत रहेंगी तो फिर आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सकेंगी। इसलिए जो भी खाने पीने में बताया गया, सामान्य सी चीज़ों को लेकर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। इसलिए आज से अभी से जागरूक होइए और अपने प्रति सावधान रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: जी डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, निश्चित रूप से हमारे श्रोता उससे जरूर लाभ प्राप्त करेंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो श्रोता मैंने अब हम सब सुनाई भेंट वार्ता, महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर पड़ना, जरूरी जांच और इलाज, जी के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दिन रहा है डॉक्टर रेखा वाजपेयी बहनी और उनसे बातचीत करिन रहा है ज्योति चंद्रा बहनी। तो अतनी नीक और उपयोगी जानकारी दे खातिर हम हूँ डॉक्टर रेखा वाजपेयी बहनी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह के साथ श्रोता बहनी बढ़ चला जाए एक छोट से अंतराल की ओरिया।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोता बहनी हम सभी अपने अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखित है और यही के प्रति सजग भी रहित है, साथ में स्वच्छता भी बनाए रखे के खातिर सदैव प्रयासरत रहित है। और बात जब हम मेहरवन के माहवारी से संबंधित होए तो हिमा स्वच्छता के ध्यान रखब जरूरी हो जात है। श्रोता बनी बताओ चली कि आज के दिन यानी 28 मई का हर साल विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनावा जाता है। ई दिन के मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के महत्व पर जोर देब, स्वास्थ्य का बढ़ावा देब और माहवारी से जुड़े भ्रामक बातन का समाप्त करब है। बताओ चली कि 28 मई ई तारीख ई खातिर चुनी गई कहे से कि मेहरवन का मासिक चक्र औसतन 28 दिनन के होत है और मासिक धर्म के अवधि आमतौर पर 5 दिन तक होत है। तो श्रोता बनी यदि आपके घर में किशोर व बिटिए हैं तो आप उनका मासिक धर्म के बारे में जरूर बताओ, समझाओ और वैसे जुड़ी स्वच्छता के बारे में भी खुल के बात करें। यह मां सकुचाए वाली कोनो बात नहीं है। और हाँ, ई बात के ध्यान रखें कि गंदा कपड़ा नहीं बल्कि सैनिटरी पैड के इस्तेमाल करें और अपने खान पान में भी पौष्टिक तत्वों के उपयोग करें। तो ई तो रही मासिक धर्म और स्वच्छता के बात, और अब बात गीत गौ नई मनोरंजन के। तो बहनी जौन नकटा अब हम आपका सुनवाए जा रहे हैं ना, वही माँ मनसेधु के बारे में कौन बात कही जा रही है यह हो जाना जाए। स्वर है डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा बहनी के।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अश्वता बहनी, अब बात अपनी बिटियन के भविष्य बनवे के। तो हम सब अपनी बिटियन के पढ़ाई लिखाई पालन पोषण के खातिर प्रयासरत रही थे ताकि बिटवन की तना उनके भी भविष्य संवर सके। यह कड़ी में यूपी सरकार भी अनेक मेर की योजना चलाई के बिटियन के भविष्य सवार रही है। इन्हीं योजनावन में से एक है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसके लक्ष्य बिटियन के खातिर बेहतर अवसर प्रदान करब है। ई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बिटियन के पालन पोषण और शिक्षित करे के खातिर परिवारन का आर्थिक सहायता प्रदान करत है और उनके जीवन के तस्वीर बदल देते हैं। श्रोता बहनी, बात यदि ई योजना का लाभ उठावे खातिर पात्रता के होए तो बता चली कि काहे से ई योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। तो जन्मतु व बालिका शिशु के माता पिता का जो उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होए का चाहिए, और हाँ, जो उन मनई गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, मने बीपीएल परिवारन खातिर ई योजना है। और एक बात की शिक्षा के खातिर सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिवावे पर बिटियन की शिक्षा खातिर भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दीन जाई। और साथ में हर माता पिता का यह बात के ध्यान रखे का है कि उनके बिटिया कौनो मेर के बाल श्रम से ना जुड़ी हुए, ना ही तो उई पात्रता खोए सकत हैं। यह मेर से बिटिया के विवाह 21 वर्ष के हो जाए पर ही करें। वैसे पहले यदि बिटिया के विवाह होत है तो उई ई मेर के परिवार का कौनो आर्थिक सहायता ना ही दीन जाई। और अब श्रोता बहनी बताओ चली कि भाग्य लक्ष्मी योजना के खातिर आवेदन कैसे कर सकत हो। तो सब इच्छुक और पात्र आवेदन का ई योजना के लाभ उठावे खातिर ऑनलाइन पंजीकरण करवावे का परी, जो उनकी mahilakalyan.up.nic.in पर लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकत हैं। और नामांकन फॉर्म पर आवश्यक जानकारी टाइप करे का परी, वही के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाई। और एक बार श्रोता बहनी की बिटिया के जन्म पर आर्थिक सहायता उनकी माता का दीन जाई, ई योजना के लाभ अलग अलग किस्तन में प्रदान की जाई, मने कुल 2 लाख रुपया के आर्थिक सहायता यूपी सरकार द्वारा दीन जाई। तो ई तो रही उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के बात। और अब बात एक बार फिर से गीत गौनई के, तो यह बात पे चलो सुना जाए पनघट गीत। स्वर है बरखा श्रीवास्तव बहनी के।

और श्रोता बनी यह गीत के साथ अब कार्यक्रम के बिरिया समाप्त हो रही है। तो ई मनोकामना के साथ कि हमारी सब श्रोता बनी हो रही खुश रहें स्वस्थ रहें यह कामना के साथ वंदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप ग्रामीण महिलाओं का हमारा कार्यक्रम घर आंगन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। अब फौजी भाई सुने अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

सरहदों पर जो खड़े हैं वही हमारी शान है। सरहदों पर जो खड़े हैं वही हमारी शान है। उनकी हिम्मत से ही महफूज हमारे अरमान है। नमन है उन वीर जवानों को जिनके दम पर सुरक्षित अपना हिंदुस्तान है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। फौजी भाइयों, अब आप अपने इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने भी सुन सकते हैं, जिसकी फरमाइश आप हमें ईमेल आईडी आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर भेज सकते हैं। आप हमें अपनी फरमाइश खत के द्वारा भी भेज सकते हैं।

जिसका पता हम कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के ये खूबसूरत सफर को आपकी फरमाइश की गीतों के साथ। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की मिलीजुली आवाजों में शेखर अस्तित्व का लिखा गीत। संगीतकार हैं विक्रम मोन्ट्रोस, फिल्म का नाम है संजू। इस गाने के लिए हमें मेल भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के सभी सदस्यों ने। आपने ये फरमाइश हमें भेजी है ग्राम रजौनी महोबा उत्तर प्रदेश से। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत संजू फिल्म से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में जिगरी दोस्त फिल्म का गीत। इस गाने को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम, शिखा, ऋचा, गुड़िया, बबलू यादव, राजेश पांडे और विजय पांडे जी ने। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की सांडी हरदोई से। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत जिगरी दोस्त फिल्म से है।

0: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अरजीत सिंह, अरहान हुसैन, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गोरे, राशि शहबाना और अहाना गोयल की आवाज़ों में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म का गाना। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। इस गाने को सुनने चाहा है गौतम बुद्ध नगर से नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, कोमल, सुधाकर, सियाराम और राजेश भैया जी ने। पंकज गुप्ता जी ने बेनी माधवगंज रायबरेली से, लखन गांव रायबरेली से देवता दीन मास्टर जी, राजेश कुमार चौहान, बेनी जी और तुलसी राम ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म से।

जवानों के लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बी प्राक की आवाज में केसरी फिल्म का गीत। इस गाने को सुनना चाहा है ग्राम पहाड़ीपुर रायबरेली से रामराज, राजू, भानु, रामशंकर पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू रसूलपुर वाले। और इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप की। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत केसरी फिल्म से।

आज के कार्यक्रम की ये अंतिम फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलूम, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी ने ये मेल हमें भेजी है। और आज आप सुनना चाह रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म 83 का ये गीत। ये गीत आपको सुनवाऊं उससे पहले फौजी भाइयों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश का पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जवानों के लिए, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 226001। फौजी भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। और आप सुनिए अरिजीत सिंह को फिल्म 83 में।

चलते चलते बस इतना सा पैगाम देते हैं, चलते चलते बस इतना सा पैगाम देते हैं, आपकी हिफाजत को हम सलाम करते हैं, दूर रहकर भी जो दिल के करीब होते हैं, ऐसे फौजी भाइयों को हम दिल से दुआ देते हैं। आज के इस छोटे से सफ़र में इतना ही, फिर मिलेंगे नई उम्मीदों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हौसला बनाए रखिए, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। अब आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम सुन रहे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक

0: परीक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोक भवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने

0: सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में

0: अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिए कृषि विविधीकरण में अनिल कुमार सिंह से उनकी सफलता की कहानी। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के बक्सी का तालाब ब्लॉक के रायपुर राजा गांव के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार सिंह भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप कृषि विविधीकरण के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: किसान भाइयों को और बहनों को नमस्कार है। मेरी शिक्षा 1984 में हमने ग्रेजुएशन कर लिया था। हमारे परिवार वालों ने हमें सर्विस नहीं करने दिया, तभी से हम खेती की तरफ झुकाव मेरा हो गया।
2: यानी लगभग 40 साल?
3: हाँ, लगभग 40 साल से हमारा खेती की तरफ झुका हुआ है।
2: तो कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: जब तक हम जॉइंट फैमिली में रहे, हमारे पास थी 24 एकड़ जमीन।
2: यानी संयुक्त परिवार?
3: संयुक्त परिवार में। जब गार्जियनशिप खत्म हो गई तो हम

0: दो भाई हैं, अपने अपने जगह पे आ गए, कुछ हम लोगों ने खरीदी भी है, इसलिए अब हमारे पास जमीनें बढ़ गई हैं थोड़ा सा। अब लगभग 13-13.5 एकड़ जमीन एक भाई के पास है।
1: यानी आपके पास लगभग 13.5 एकड़ जमीन है।
0: 13.5 एकड़ जमीन
1: तो 13.5 एकड़ जमीन में पूरे साल का क्या फसल चक्र अपनाते हैं?
0: हमारा 3-4 एकड़ प्रतिवर्ष केला रहता है
1: जी।
0: केला हमारा खत्म होता है उसमें हम खीरा लगा देते हैं, तरोई लगा देते हैं, करेला लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, जो भी जैसा माहौल दिखता है मार्केट का उस हिसाब से हम वो काम करते हैं।
1: यानी लगभग 3-4 एकड़ केला हर साल आपका रहता ही रहता
0: है? हर साल रहता है।
1: इसके अलावा सब्जियां?
0: सब्जियां हमारे पास इस वक्त 2.5 एकड़ से अधिक टमाटर लगा हुआ है।
1: हाँ।
0: 2 एकड़ लगभग हमारे पास तरोई लगी हुई है इस वक्त
1: जी,
0: और 1 एकड़ प्लस में हमारे पास करेला लगा हुआ है।
1: तो ये जो तरोई और करेला है
0: जी,
1: ये क्या जमीन पर है या मचान पर?
0: नहीं, ये मचान पे, हमारा टोटल काम मचान पे है।
1: तो ये क्या खरीफ से शुरुआत करते हैं या जायद से?
0: ये हम दिसंबर मंथ में बोई स्विंग करते हैं इसकी।
1: अच्छा, तो लो टनल पॉली हाउस में
0: लो टनल पद्धति अपनाते हैं।
1: और रोपाई मुख्य खेत में कब करते हैं?
0: मुख्य खेत में ही हम लोटना लगाते हैं सीधे फसल पे।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: सीधे जमा लेते हैं?
0: हाँ, सीधे जमाते हैं
1: और फिर
0: ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं,
1: हटा देते हैं,
0: उसके बाद लोटना हटा देते हैं
1: 15 यानी फरवरी में।
0: हाँ, 10 फरवरी के बाद कभी भी हटा सकते हैं जैसा मौसम रहेगा।
1: तो पूरे खेत में आपको लो टनल बिछाना पड़ता होगा?
0: जी हाँ, पूरे खेत।
1: और उसके बाद मचान बनाते हो?
0: उसके बाद मचान बनाते हैं।
1: केला से शुरुआत करें तो केला G9 होगा?
0: G9।
1: ये कब से आप केला उत्पादन से जुड़े?
0: ये केला उत्पादन में हम जुड़े हैं 2006 से।
1: यानी लगभग 20 साल हो गए?
0: 20 साल से लगभग।
1: कैसा चल रहा है?
0: हमारा ठीक चल रहा है।
1: इस समय फसल कैसी है आपकी?
0: हमारी केले की फसल ठीक है।
1: कितनी ऊंचाई तक?
0: हमारी ऊंचाई इस वक्त पेड़ की लगभग 8 फीट आ रही है।
1: हाँ, यानी अच्छी बढ़वार है?
0: बिल्कुल अच्छी बढ़वार है।
1: केला की बात करें तो केला की रोपाई और रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के
0: जी
1: केले की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं कि आपको पैदावार अच्छी मिले और अच्छा बाजार भाव भी मिले?
0: रोपाई के समय में सबसे बेहतरीन समय कि जुलाई मंथ में ही केला लग जाना चाहिए, इसकी रोपाई जुलाई में ही हो जानी चाहिए।
1: और आप करते हैं?
0: और हम करते हैं। अगर हम जुलाई में नहीं कर पाए रोपाई तो हम केला नहीं लगाएंगे उस साल।
1: रोपाई के बाद?
0: उसके लिए सबसे अहम चीज होती है सीड की
1: जी,
0: कहाँ से हमको पौधा मिलना है, लेना है, और उसकी कितनी प्योरिटी और कितनी क्या होती है। पहली चीज, आपका पौधा का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, किस कंपनी से लेना है आपको।
1: तो आप थोक बजा करके पौध ले आते हो?
0: बिल्कुल, मतलब उसको हम जैसे कोई नई वैरायटी या नई कंपनी आई।
1: हाँ।
0: तो पहले उसका हम थोड़ा लगाते हैं, 100 पेड़ लगा दिए, 500 पेड़ लगा दिए, ट्रायल करते हैं, अगले साल उसको फुल पे जाते हैं।
1: फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कितना करते हैं और रोपाई का अंतरण क्या रखते हैं?
0: रोपाई का अंतरण हम दो तरीके से रखते हैं। हम कभी कभी, आपने जो विविधीकरण बताया
1: जी,
0: तो हम विविधीकरण भी करते हैं, जिसमें हमको अन्य फसल लेनी होती है तो हम केले की 4 फिट + 4 फिट पे दो लाइन बराबर लगाते हैं।
1: हाँ।
0: उसके बाद में 10 फिट जगह छोड़ देते हैं।
1: अच्छा,
0: इस 10 फिट की जगह में हम कभी करेला लगा देते हैं, उसमें कभी शिमला मिर्च लगा देते हैं।
1: यदि केले के साथ भी करेला और शिमला मिर्च की सहफसली खेती करते
0: हैं? जी, सहफसली खेती करते हैं।
1: तो 10 फिट में कई लाइनें शिमला मिर्च और करेला?
0: करेले की 1 लाइन लगाते हैं
1: जी,
0: और शिमला के 2 लाइन लगाते हैं।
1: तो वो भी करेला क्या मचान पे चढ़ाते हैं?
0: हाँ, वो स्केटिंग मचान होता है, उसको सीधा सीधा
1: सीधा खड़ा
0: सीधा खड़ा रखो, ऐसे चढ़ाया 6 फिट तक, उसके बाद फिर पलट दिया 6 फिट।
1: जो आपने बताया कि करेला और तुरई आपके खेत में है
0: जी,
1: तो उसमें
0: भी हमारी विविधीकरण चल रही है।
1: अच्छा,
0: तुरई की हमारी 10 फिट से लाइन लगती है, 1 लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 10 फिट।
1: अच्छा,
0: और एक तरफ नाली के तरोई का सीड लगेगा, दूसरी तरफ हम दलहनी फसल लगाते हैं लोबिया।
1: अच्छा, गर्मी वाली
0: जी,
1: जायद में
0: जब तक ये हमारा मचान पूरा फुल होता है तब तक हमको कुछ आमदनी लोबिये से मिल जाती है, लागत हमारी थोड़ी बहुत निकाल देता है।
1: यानी लोबिया सब्जी के रूप में
0: जी। और हर 10 फिट पे गेंदे का पौधा लगा, अगर रेट मिल गया तो इससे भी हमारी कुछ अर्निंग होती है, और नहीं तो मोजैक रोग के लिए गेंदा लगाना अति अनिवार्य है।
1: और निमेटोड के लिए भी?
0: निमेटोड के लिए तो दलहनी काम करती है बढ़िया,
1: और गेंदा भी बड़ी महत्वपूर्ण फसल।
0: गेंदा भी लगता है और गेंदा मोजैक रोग को भी रोकता है।
1: करेला का अंतरण क्या रखते हैं?
0: करेला लाइन से लाइन की दूरी 12 फिट, सीड से सीड की दूरी 1.5 फिट।
1: अच्छा
0: जी,
1: और उसमें बीच बीच में मचान

0: लगाते होंगे?
1: नहीं, उसमें टोटल मचान रहता है।
0: तो ये बताएं कि करेला और तरोई की निकासी कब से चालू हुई?
1: तरोई की निकासी हमारी 17 मार्च को पहली हमने हार्वेस्टिंग की है।
0: हाँ।
1: तब से अभी तक चल रही बराबर।
0: और करेला?
1: करेला 22 मार्च से चालू हुआ है।
0: टमाटर की भी बात कर ली जाए कि टमाटर की कोई खास वैरायटी लगाएं?
1: इस वक्त हमारे पास जो वैरायटी लगी है, एक रेडेक्स लगा हुआ है, करीब एक एकड़ हमारा टमाटर ये लगा है, एक आस्तोस लगा है, लगभग 1.5 बीघे ये लगा हुआ है हमारे पास, मतलब 1.25 एकड़, और एक है लता वैरायटी।
0: तो टमाटर की रोपाई आपने कब की?
1: टमाटर की नर्सरी हमने डाली थी, 15 जनवरी को ट्रांसप्लांट कर दिए थे।
0: और निकासी?
1: हमारी निकासी टमाटर की चल रही है अप्रैल के फर्स्ट वीक से।
0: तो कौन सा खास प्रयोग करते हैं आप गर्मी से बचाव के लिए?
1: सूरज की किरणों से जो हमको बचाना होता है, सूरज की गर्मी से, ये हम होम्योपैथ की नट्रम मोर प्रयोग करते हैं।
0: अच्छा, तो ये हुनर सीखा कहाँ से आपने?
1: ये हमने होम्योपैथ के डॉक्टरों से सीखा भाई। हम उनके पास अगर अपने इलाज के लिए गए गर्मी में, वो हमको नट्रम मोर देते हैं कि सूरज की किरणें आप पे असर नहीं करेंगी, तो वहां से हमने सीखा, हमने इसको प्रयोग किया इस पे फसल पे।
0: तो क्या दिखा आपको रिजल्ट?
1: हमने इसको सबसे पहले आज से लगभग 10 साल पहले इसको हमने शिमला मिर्च पे प्रयोग किया था। शिमला मिर्च का जो हिस्सा दक्षिण तरफ होता है, उस हिस्से पे स्पॉट आ जाता है धूप का सफेद
0: जी,
1: हमने इसको प्रयोग किया तो स्पॉट कम से कम 75% हमको इसमें वो मिला कि ठीक है, हमने इसको चालू रखा।
0: इसके अलावा भी क्या होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल आप अपनी फसलों को बचाने में करते हैं?
1: जी हाँ, जाड़े में हम रस्टाक्स का प्रयोग करते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: जो पैदा करते हैं बागवानी की फसलें सब्जियां
1: जी,
0: उसको बेचते कहाँ?
1: बेचते हैं हम अपने मंडी में।
0: कहाँ?
1: एक इटौंजा मंडी है हमारे घर से 3 किलोमीटर पे।
0: मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं?
1: नहीं, मार्केटिंग की वैसी कोई समस्या नहीं है।
0: पूरे साल में खेती से कितना बचा ले रहे?
1: अब आप ये मान के चलिए, खेती से सारी लागत निकालने के बाद लगभग 1 लाख रुपए पर एकड़ हमको बचना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य रहता है।
0: और आप बचा लेते हैं?
1: कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, तो ये आप मान के चलिए कि 10 लाख पर ईयर से प्लस में रहेंगे।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है बागवानी की फसलों का, सब्जी उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: उनको ये टिप्स है कि जो भी काम करें वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करें, किसी भी काम में कोई नुकसान नहीं है, उसको एज ए कॉमर्शियल करना चालू कर दें, अपने आप आमदनी किसान की बढ़ती जाएगी।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बताते हैं।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 9935241212, 9335242412, 9335241212।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
1: किसान भाइयों से यही हम कहना चाहेंगे कि किसान भाई हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में एक अपना एरिया निश्चित करें, वो जो काम कर रहे हैं, आज हमको जिस फसल में नुकसान हुआ है कल उसी से फायदा होगा, हमारा जहाँ पे जो खोया हुआ सामान है वो वहीं पे मिलेगा। हमको टमाटर में नुकसान हुआ तो हम केले पे भगेंगे, नुकसान में जाएंगे। टमाटर का घाटा हम जब तक टमाटर से पूरा नहीं करेंगे हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हारना नहीं कहीं पे, किसान को केवल भिड़े रहना है।
0: अनिल कुमार सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप स्नातक की पढ़ाई के बाद लगभग 40 साल पहले खेती से जुड़े, आज 13.5 एकड़ आपके पास खेती की जमीन है जिस पर आप केला, टमाटर, करेला और तरोई की खेती कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप कृषि विविधीकरण में अनिल कुमार सिंह से उनकी सफलता की कहानी सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। फूलमती पत्नी दिलीप निवासी ग्राम मनकापुर थाना कोतवाली गैसडी बलरामपुर से हमें सूचित करती हैं कि उनकी पुत्री सुमन, जिनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला है, ये 16 मार्च 2026 से कहीं लापता है। सुमन के बाईं आंख के ऊपर चोट का निशान है। जिस समय लापता हुई इन्होंने पीला फ्रॉक, पीली लेगी, नीली ओढ़नी और सफ़ेद व लाल रंग की शॉल ओढ़ी थी। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इन नंबरों पर दे सकते हैं

0: 2718-5209 और दूसरा मोबाइल नंबर है 7800134342। सुशीला पत्नी रंजीश निवासी ग्राम हलौरा बलरामपुर से हमें सूचित करती हैं कि रंजीश, जिनकी उम्र है 35 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा गोल और आँख नाक कान औसत हैं और इनका छरहरा बदन है। ये 8 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस समय लापता हुए इन्होंने काले रंग का पैंट शर्ट और काले रंग की सैंडल पहनी हुई थी। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इन नंबरों पर दे सकते हैं 8931922253 और 8009375844। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान।

0: 2253 और 800-9375844। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
3: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में सुनिए राम सूरत तिवारी के गाए भोजपुरी लोक गीत। पहले आपको सुनवाते हैं उनका गाया निर्गुण।

अभी आप निर्गुण सुन रहे थे। लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे हैं राम सूरत तिवारी के गाए भोजपुरी लोकगीतों का। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं राम सूरत तिवारी की ही आवाज में किसानी गीत।

अभी आप राम सूरत तिवारी की आवाज़ में खेमटा सुन रहे थे। संगत कलाकार थे ढोलक पर अनिल कुमार मिश्र, हारमोनियम पर सतीश चंद्र गुप्ता, बांसुरी पर अलका सिंह और साइड रिदम पर शोभनाथ चौरसिया। अब आज का लोकमाधुरी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय शिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी, शासन प्रतिक्रियाओं और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाना है। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामगिरा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में शामिल होगी। पुरुषों वर्ग में भारत पूल ए में है, जिसमें मेजबान जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान, 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच खेलेगा। पूल ए में शामिल भारतीय अंडर 18 बालिकाओं की टीम 30 मई को मलेशिया, 31 मई को कोरिया और 2 जून को सिंगापुर के खिलाफ मैच खेलेगी। 5 जून को सेमीफाइनल और 6 जून फाइनल खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: दोस्ती की खुशबू मोहब्बत के मुंह में।
1: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
0: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
1: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
0: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
1: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
0: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
0: 100.7 FM रेनबो।
3: 3:04 और 3:05 हो गए हैं और इस समय प्रोग्राम सतरंगी दुनिया शुरू हो चुका है। आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई है आपके साथ।

0: बातें खूबसूरत से गाने से करते हैं, और ये आगाज़ आपको एक खूबसूरत आज शतरंज की दुनिया में एक रंग दिखाने वाला है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे, वो मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है, हमारी सेहत से जुड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा सीरियस बातें लेकर के आती हूँ, लेकिन सीरियस बातों के साथ जो होता है वो कुछ म्यूजिकल बेहतरीन तड़का होता है ताकि आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाएं। खैर, आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में ट्यून इन करके रखिए, एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

खूबसूरत म्यूजिकल आगाज तो कर दिया है, लेकिन बात जो हम करने जा रहे हैं वो बात उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको सुनने में लग रही है कि हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो। पहले मेरे पहले ज़माने में या कुछ समय पहले तक ऐसा समय था कि लोग, पता है, बीमारियों से डरते तो थे, लेकिन किस तरीके की बीमारियों से डरते थे, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई वायरस ना आ जाए। लेकिन अब तो लोग खुद ही अपने साथ ऐसी बीमारियां लेकर के चल रहे हैं जो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं, समझ रहे हैं आप? और इनको ही लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां कहा जाता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि हर घर कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज से जूझता हुआ आपको मिल ही जाएगा। कोई डायबिटीज का मरीज है, किसी को हार्ट प्रेशर है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी की बीमारी जिसको कहते हैं, कोई ओबेसिटी से परेशान है, मोटापे से, कोई डिप्रेशन से परेशान है, और कोई हार्ट डिजीज से। दिल की बीमारियां भी बहुत कॉमन हो चुकी हैं। पहले मैं आपको इंट्रो में ही बताती हूँ कि हाँ, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज होती है, ये होती क्या है। लाइफस्टाइल डिजीज जो होती है ना, गलत खान पान, तनाव, नींद की कमी, शारीरिक जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसकी कमी, नशे और ये सब जो खराब आदतें होती हैं या इरेगुलर आपकी जो लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से पैदा होती है और जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उनका कोई तुरंत समाधान नहीं होता है। इसीलिए इनको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। ये बीमारियां जो होती हैं धीरे धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और लंबे समय तक इंसान दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाता है जीने के लिए। अच्छा, मैं अब इन चीज़ों को आपको क्यों बता रही हूँ, लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में क्यों बताया मैंने आपको, इसलिए बताया। और ये भी चीज़ मैंने आपको बताई जो चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि किसी भी घर चले जाइए या अपने घर में देखिए, कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो या तो डायबिटिक होगा, शुगर होगा उसको। शुगर तो इतना कॉमन हो चुका है कि आप कहीं भी चले जाइए, अरे भैया हमें शुगर है, बिना चीनी वाली चाय पियेंगे। शुगर होने तक की स्थिति पहुंची क्यों है, इतनी ऐसी स्थिति हो क्यों गई है? और अब समझ रहे हैं कि दुनिया में नंबर वन पे है भारत डायबिटिक पेशेंट्स में, और ये शुगर एकदम नॉर्मल हो गया। कोई बीपी का मरीज मिल जाएगा, कोई डिप्रेस आदमी मिल जाएगा आपको, कोई अकेलेपन से ग्रस्त मिलेगा आपको, कोई मैक्सिमम ज्यादातर लोग हम में से ओवरवेट हैं, मोटापे से परेशान हैं। इन्हीं सब के बारे में आज बात करने आई हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इंडिया अब नंबर वन तक पहुंच रहा है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, मैं आपको सोचने के लिए तो ज़रूर मजबूर करूँगी, लेकिन आपको बस ये है कि थोड़ा सा धीरज धरना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा इन बारे में। खूबसूरत सा गाना आपकी रेडियो सेट पर भेज रही हूँ, आप इसे सुनिए और तुरंत इंजॉय करते करते वापस आती हूँ, मैं भी इंजॉय करती हूँ आपके साथ।

करके 25 मिनट हो गए हैं और इतने खूबसूरत गाने के बाद मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ, जो बात आपसे करने वाली हूँ, वो उतनी खूबसूरत तो नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो कि अब इंडिया में ना कॉमन हो चुकी हैं, हर घर में आपको जनरली मिला करती हैं। नंबर वन पे तो है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। भारत को आज डायबिटीज़ कैपिटल तक कहा जाने लगा है, ये अच्छी बात है क्या? ये तो बहुत ही ख़राब है ना, मतलब किसी बीमारी की कैपिटल, किसी बीमारी की राजधानी बनेगा हमारा देश अब। भाई सोन चिरैया को इस तरीके से बर्बाद तो नहीं करना चाहिए हमें, हमें फिट रहने की ज़रूरत है। खैर, मैं खुद आपको बता रही हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, हर घर में लगभग एक शुगर का पेशेंट, और कलीग्स में मेरे, जहाँ मैं काम करती हूँ, जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, उनमें भाई मेरी उम्र के लोग तक शुगर के पेशेंट्स हैं। और ये क्या है बताए, कुछ नहीं, ये जो बीमारी है आपके खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी आदतों की वजह से लगती है आपको। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊं कि स्थिति ये है कि भारत में करोड़ों लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं। शहरी इलाकों में ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वहाँ कम से कम शारीरिक गतिविधि है। कम उम्र के लोगों में भी अब डायबिटीज़ दिखाई देने लगा है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीनी, जंक फूड,

चीज़ की कमी, पेट भर के खा लिया और सोए रहे, या बैठे बैठे वाला काम है जितनी ज़रूरत नहीं भी है उससे ज़्यादा खा लिया। कभी कभी मोटापा, टेंशन, देर रात तक जगना, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मीठा, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस फूड नुकसान कर रहे हैं, जानते भी हैं, फिर भी उसको धड़ाधड़ कंज्यूम कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, हाइपरटेंशन, इसके मरीज आपने सुने होंगे। ये बीमारी ना साइलेंट किलर कही जाती है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो लोगों को लगता है कि ठीक है, जनरल है, होता है कभी कभी। भारत में हर 3 से 4 जो वयस्क हैं उनमें से एक व्यक्ति हाई बीपी से प्रभावित माना जाता है, और तनाव का खतरा, लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक खाना, बहुत टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा चिंता करना लेकिन काम ना करना, सोना नहीं, जग जग करके टेंशन लेकर के वीडियोस देखना, एक्सरसाइज ना करना, धूम्रपान करना और शराब, ये सब मुख्य कारण हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग दवा तो खाते हैं लेकिन तनाव, गुस्सा, गलतफहमी कभी नहीं छोड़ते। हज़ारों रुपये की दवा खा लेंगे लेकिन एक 50 रुपये की, 500 रुपये की वो जो महंगी से महंगी ख़राब करने वाली चीज़ आती है वो नहीं छोड़ते। इसके आगे अगर बढ़ें, मोटापा, इसके बारे में तो थोड़ी देर में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी ऐसी नेगेटिव बातें करने का भी तो मेरा दिल नहीं है, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत भयानक नुकसान कर रही हैं और हमारे देश को, सोच रहे हैं आप, डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है हमारे देश को, और बोलते बोलते भी मैं थक रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं। लोगों को लगता है कि दवा खा के कंट्रोल में रहता है, पर ऐसा करना ही क्यों, फिट रहने की जरूरत है। यही आज हमारे प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का मेन मुद्दा है। ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और अपना स्ट्रेस दूर करते हैं, नहीं, और खूबसूरत सा डोपामिन भी तो लेने की जरूरत है। ट्यूनिंग करके रखिए 100.7 FM रेनबो चंद्रकला के साथ।

बज करके 39 मिनट हो गए हैं, और ये जो समय है ना, ये सतरंगी दुनिया का, इसमें देखिए कुछ खास बात हर दिन होती है, हर रोज़ कुछ न कुछ अतरंगी नया बेहतरीन होता है आपके लिए। लेकिन आज जो बात कर रही हूँ ना मैं, वो थोड़ी सीरियस सी बात है, और सीरियस बात है तो सीरियस होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, पर सोचना ज़रूरी है इस बारे में। आगे बढ़ें, अगर मोटापे के बारे में बात करें, मोटापा पहले सिर्फ वजन बढ़ना माना जाता था, लेकिन आज के समय में क्या है कि कई गंभीर सीरियस प्रॉब्लम्स की जड़ बन चुका है। इसके जो मेन कारण है, जो आपने अपने अंदर पाली हुई हैबिट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे ये मत बोलिएगा कि बार बार हमको बोल रही हैं, हमको बोल रही, खुद भी तो मोटी है। हालांकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और साथ साथ मैं भी खुद को बोल रही हूँ, और मैं इतना जान और बता रही हूँ कि मैक्सिमम लोग ओबेस हैं इस समय। तो ये जो मोटापा है, इसके कारण क्या है, इसको ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा पहले सोचते थे कि वजन बढ़ गया है, घटा लेगा कुछ ऐसा, लेकिन अब अगर वजन बढ़ गया तो समझ लीजिए कि अब वो घटने का नाम नहीं लेगा। फास्ट फूड, घंटों मोबाइल और स्क्रीन टाइम। अब आप कहेंगे स्क्रीन टाइम और मोबाइल कैसे वेट गेन करता है? करता है ना, बहुत ज़्यादा गेन करता है। बताती हूँ मैं आपको, मोबाइल और स्क्रीन टाइम आपको इंगेज रखता है। जैसी एक पोजीशन में आप होते हैं, वैसे ही उसी पोजीशन में कई देर तक आप स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, थकते हैं। जब आपको पता चलता है, देख के स्क्रीन टाइम ख़त्म होने के बाद जब आपको पता चलता है कि ये जो समय है ये बर्बाद हो गया, बहुत सारा मिला कुछ नहीं, गिल्ट आता है, और स्क्रीन टाइम का रिजल्ट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, फेक डोपामिन, और उसके बाद आपको मिलता है रिग्रेट, स्ट्रेस। और उसके बाद दूसरा जो कारण है, बैठ के काम करने की आपकी आदत, दिन भर बैठे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी चीज़ बैठे बैठे वहीं मिल जाए आपको। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम तो निकालती हूँ मैं। ख्वाहिश तो यही रहती है कि जहाँ बैठी रहूँ वहीं सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, तो ज़्यादा उठना ना पड़े। लेकिन एक्सरसाइज तो हो, 1 घंटा कम से कम, 45 मिनट, 50-60 मिनट कुछ तो अपने लिए हो। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कमी है, और ये जो मोटापा आप बढ़ा लेते हैं, बांध लेते हैं, समेट लेते हैं अपने आसपास, ये आगे चल के आपको वही जिसके बारे में बात कर रहे थे, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, PCOD, फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स देता है। और अगर हार्ट डिजीज की बात करें तो आपने सुना होगा, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रही हूँ। सुना क्या है, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि कोविड के बाद अब यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा ज़्यादा चलन देखने को मिल रहा है। पहले की जो दिल की बीमारी होती थी, हमने खुद अपने बचपन में जो दिल की बीमारी होती थी वो उम्र दराज लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो यूथ है उस

इसका जो मेन कारण क्या है? कम उम्र में जवान दिखना है। 17-18 की उम्र में आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करना है, धूम्रपान करना है, जिससे आप कूल और स्टड लग सकें, है ना। स्ट्रेस है, धूम्रपान है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जंक फूड है, नींद ख़राब, 8 घंटे की नींद तो जैसे लेना भूल ही गए हैं सब। इसके अलावा चिंताजनक बात यह है कि लोग शरीर से ज़्यादा काम और पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, शो ऑफ को प्रायोरिटी देते हैं। जब तक शरीर जवाब न दे दे

चिंताजनक बात यह है कि लोग शरीर से ज्यादा काम और पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, शो ऑफ को प्रायोरिटी देते हैं। जब तक शरीर जवाब न दे दे तब तक इन्हीं सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो समझिए होगा कैसे काम, कुछ नहीं हो सकता। एक और बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी खराब आदतों की वजह से हमें घेर कर चल रही है। ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, और तुरंत वापस आते हैं, बात करते हैं इन चिंताजनक बीमारियों के बारे में।

बज करके 48 मिनट हो गए हैं और अब बात आगे बढ़ाते हैं और ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो एक और ऐसी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है और भारत में इतनी तेजी से फैल रही है कि बस हब ही बन चुका है भारत इसका भी। और वो बीमारी पता है, हो सकता है आप सुन रहे हो, आपको भी हो, फैटी लिवर। और ये बीमारी ना अब बहुत ही कॉमन हो चुकी है, इतनी कॉमन हो चुकी है कि मतलब लोग सोचते हैं कि ठीक है पेट कॉन्स्टिपेटेड है या पेट में दिक्कत है, कुछ ऐसी चीजें। अब ये बीमारी बहुत बहुत बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि खासकर यूथ में आपको लगता है नॉर्मल सा कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल सा लूज मोशन है या नॉर्मल सा पेट दर्द है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि लिवर जब अपने ग्रेड टू फैटी तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, और कई लोगों को तो ग्रेड 3 सिरोसिस पहुंचने तक भी पता नहीं चलता है कि फैटी लिवर यानी कि एक लाइफस्टाइल डिजीज को समेट के चल रहे हैं अपने साथ। इसके जो मेन कारण क्या है फिर वही बता रहे हैं हम आपको, तला भुना, जंक, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स इसका मुख्य कारण है। अब लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स से लिवर में फैट जमा होता है। जी हाँ, ढूंढिए, सर्च करिए, पूछिए डॉक्टर से कि क्या कोल्ड ड्रिंक से और ये जो गंदी वाली जो आपकी पेय पदार्थ हैं, जो ड्रिंक्स हैं आपकी, ये आपको कितना नुकसान करती हैं। मोटापा, अगेन, अगर आप ओवरवेट हैं, फैट हैं, तो आप फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी, वही वही बात हो गई कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपका इसका मुख्य कारण है। और असर ये होता है कि आपको बहुत सारी बीमारियां लीवर से लगती हैं, और लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और इसके साथ जो दूसरी बात है वो मैं आपको बताऊं, पीसीओडी, पीसीओएस, महिलाओं में तेजी से बढ़ती लाइफस्टाइल डिजीज है। इसके मुख्य कारण भी वही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, और इरेगुलर आपका जो लाइफस्टाइल है वो है, खराब डाइट है, बहुत ही लेस फिजिकल एक्टिविटी है। फिर आप धीरे धीरे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वेट गेन होता है, स्किन खराब होती है, फर्टिलिटी समस्याएं आती हैं, और डिप्रेशन, ये भी अक्सर आजकल तो टर्म बन चुका है, आजकल मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ। भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तनाव, सोशल मीडिया का दबाव, अकेलापन, नींद की कमी, और जो ये डिसबैलेंस है लाइफ में वो सबसे ख़राब चीज़ है। बस देखिए, सारी लाइफस्टाइल बीमारियों की एक ही जड़ है, आपकी ख़राब लाइफस्टाइल। बस एक गाना आपकी रेडियो सेट तक पहुंचा देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस ना कम सा हो जाए।

इसी तरीके से खुश रहना है, मौज मस्ती करते रहना है, लेकिन जो ये अभी तो कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा बाद में, अभी तो थोड़ा बहुत है, इतना तो चलता है। ये वाली जो सोच है आपकी ना, बीमारी के शुरुआती संकेतों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे वो आपके शरीर को अपना घर बना लेती है और उसके बाद आप जितना चाहे निकालने की कोशिश करें वो नहीं निकलती है। स्वाद, आदत की लत, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और ये इरेग्युलर आपका लाइफस्टाइल, इतना डिसबैलेंस है आपकी लाइफ में, तो वो सारा आप हब बना रहे हैं, अपनी बीमारियों को समेट रहे हैं अपने अंदर। समय की कमी है, लोग कहते हैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, लेकिन घंटों मोबाइल रील्स और ये सब स्क्रॉल करते करते निकालते हैं। अवेयरनेस की कमी भी है, बीमारी का नाम पता है शुगर है, लेकिन बहुत जनरलाइज करके रखा, शुगर है अच्छा चीनी नहीं खाएंगे तब तो ठीक है, बिना चीनी वाली चाय, लेकिन चाय पियेंगे, पकौड़े भी खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बीमारी का नाम आपको पता है, बीमारी के जो प्रभाव हैं, बीमारी के जो कारण हैं, उनको भी तो जानने की ज़रूरत है। तो मेंटल स्ट्रेस आपको अपना कम करना है, इसके साथ आपको गलत खान पान को हटाना है अपनी ज़िंदगी से, ख़राब आदतों को थोड़ा आपको किनारे करना है। छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बस यही सारी बातें कहूँगी और इन सारी बातों के साथ आपसे तो मैं विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समय हो गया घर जाने का और मैं सोच रही हूँ कि आप आगे बढ़ें प्रोग्राम्स में और खुश रहें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए ये गाना आपकी रेडियो सेट पर, बाय बाय, टेक केयर।

कल्चर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे

0: की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं सीआरपीएफ की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं। लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है। अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो आप किन शब्दों में सीआरपीएफ को परिभाषित करना चाहते हैं?
0: सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज सीआरपीएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है सीआरपीएफ। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइन हैं, जैसे बीएसएफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, सीआईएसएफ वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो सीआरपीएफ ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक सीआरपीएफ ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज सीआरपीएफ ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का सीआरपीएफ ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: का पुनः स्वागत है और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यूर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे। वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो

0: मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प थोड़ी अपनी और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं
1: जी। तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बाकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कॉन्डक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आप का आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है
1: जी। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के भाव थे। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए, यहाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफकोर्स मैं भी काफ़ी खुश था।
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, इसे सुखद बात और को छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो

0: कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जो आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल तो ऐसा था। आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था। तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक
0: अलग
1: अलग
0: तरह से
1: अलग
0: निखर
1: अलग
0: कर आता
1: तरीके
0: है।
1: का निखर कर आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा। CRPF में भी, यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मुझे
0: एडिशनल
1: अपने,
0: तैयारी जैसे बच्चे
1: हाँ,
0: अक्सर
1: बहुत
0: करते हैं कई
1: मशक्कत नहीं
0: फोर्सेस
1: करनी
0: ज्वाइन
1: पड़ी।
0: करने से
1: उसके
0: पहले।
1: बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो। तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल की और उसके बाद CRPF में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: जी, तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियाँ उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका होनियार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबान ही सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाता

0: उनसे बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग नई उड़ान। ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में अभिषेक से जानिएगा बांस आधारित हस्तशिल्प व्यवसाय के बारे में। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे प्रखर कुमार श्रीवास्तव की वार्ता गाँवों में वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ते स्रोत, जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी में शाम 6:50 पर। आज शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेल जगत। इस कार्यक्रम में सुनिएगा प्रदीप शुक्ला से सुभाष खन्ना की बातचीत। विषय होगा भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे और संभावनाएं। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगी वार्ता प्रेमचंद और लखनऊ। वार्ताकार होंगे प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। वाचन एवं संपादन होगा सुरेंद्र राजेश्वरी का। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। महुआ राज त्रिपाठी की गाई गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 8:10 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 10:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। जिले की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम के तहत समाअत फरमाइएगा गुफ्तगू अहदे हाजिर में उर्दू रस्मुल खत। मेहमान होंगी डॉक्टर रेशमा परवीन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा में जानिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से उन्नत मत्स्य पालन के बारे में। खरबूजे के गुण इस विषय पर नीना सोनकर की वार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। समय रहेगा प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। विषय होगा लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अपराजिता। उन्नत बीज का चुनाव राकेश प्रताप सिंह से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंटवार्ता प्रसारित होगी कार्यक्रम विज्ञान और किसान में कल दिन में 2:30 से। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा

तरंग नई उड़ान, ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:45 पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकार्पण में आप सुनेंगे डॉक्टर जयशंकर राय की वार्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन। कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे राजवीर रतन से, कार्यक्रम खेती किसानी में कल शाम 6:50 पर, संपादन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर शिवा राकेश की वार्ता, मिस्टिक वेमेन इन इंडिया अक्का महादेवी, समय रहेगा शाम 7:31। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगा प्रवीण कुमार शुक्ला का काव्य पाठ, वाचन और संपादन होगा सुरेंद्र राजेश्वरी का। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनेगा कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन कल सुबह 7:31 पर और उसके बाद रात्रि 10:30 पर। श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति आप सुनते हैं सुबह 6:43 पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम लोकरग में कल सुबह 9:50 पर और कार्यक्रम लोकमाधुरी में दिन में 2:45 पर। उस्ताद सादत हुसैन खान की गाय नात और कव्वाली आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात्रि 8:10 पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा कल सुबह 11:00 से। श्रोताओं के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे कल रात्रि 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युवा तरंग।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवा तरंग में, जिसे लेकर आज हाजिर है आपके दो रेडियो दोस्त। मैं हूं आपकी दोस्त और इस सफर में आपकी साथी ऋषिका। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे साथ एक और आवाज है जो आपसे बात करने को है बहुत बेकरार। आइए जानते हैं उन्हीं से कौन है वो।
1: दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि और स्वीकार करिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और भाई ऋषिका एक बात बताओ,
0: पूछो,
1: ये इतनी गर्मी में कैसे काम कर रही हो आप?
0: भाई मैं क्या बताऊँ, ये गर्मी ने तो मुझे क्या मतलब सभी लोगों को पागल कर रखा है। एकदम ऐसा लगता है कि घर से निकलो मत, एकदम भरी दोपहरिया में घर में ही बैठे रहो।
1: बिल्कुल यही हाल मेरा भी है।
0: मतलब ऐसा लगता है जैसे एनर्जी ड्रेन हो गई है और एकदम थकान थकान पसीना पसीना।
1: हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है, एकदम सही कह रही हो ऋषिका। मुझे भी बाहर धूप देखकर मन नहीं करता कि मैं घर से बाहर निकलूं, लेकिन भाई काम पर आप नहीं गए तो फिर कैसे काम चलेगा।
0: सही बात
1: है ना, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ या आम का पना एक गिलास पी लेती हूँ।
0: अरे वाह, ये तुमने वैसे अच्छी चीज बताई है।
1: हाँ मैं आम का पना पीकर, आज भी मेरा बहुत ही मन गर्मी से परेशान था, मैंने एक गिलास आम का पना पिया और फिर मैं यहाँ पे आई।
0: तो भाई दोस्तों आप लोग भी ना बाहर निकलने से पहले या तो शिकंजी पी लें या तो आम पन्ना पी लें, ताकि इस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती रहे हम सभी को। और चलिए इसी के साथ हम अपने इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी यूं ही चलता रहे। करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि प्यारा सा गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: दोस्तों, त्योहार सिर्फ खुशियां मनाने का अवसर नहीं होते, बल्कि वो हमें प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश भी देते हैं।
6: बिल्कुल साथियों, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही खास पर्व की, यानी कि ईद उल अजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। आज पूरे भारत में ईद उल अजहा मनाया जा रहा है।
5: दोस्तों, ईद उल अजहा एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो त्याग, समर्पण और मानवता की भावना का प्रतीक माना जाता है।
6: और साथियों, ये पर्व हमें सिखाता है कि इंसान को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम, सेवा और दूसरों की मदद के बारे में सोचना चाहिए। इस दिन लोग सुबह विशेष नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और अपने घरों में खुशियां बांटते हैं।
5: और त्यौहार की सबसे खूबसूरत बात जो होती है ना दोस्तों, वो ये है कि लोग ज़रूरतमंदों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। यानी खुशी तभी पूरी मानी जाती है जब उसमें सबकी भागीदारी हो।
6: बिल्कुल साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, और हर बृहस्पतिवार को हम आपको सुनाते हैं, आपका परिचय कराते हैं अतीत की स्मारक से, ऐतिहासिक धरोहर से। तो आइए सुनते हैं ये सेगमेंट। साथियों, हम अपने कार्यक्रम के सेगमेंट ऐतिहासिक धरोहर में आपका परिचय कराते हैं भारत की उन ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों से जिनमें इतिहास आज भी सांस लेता है। आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों, पुरानी दिल्ली की शान, भव्यता और आध्यात्मिकता के प्रतीक जामा मस्जिद की। जी साथियों, लाल पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर से बनी ये मस्जिद केवल इबादत की जगह नहीं, बल्कि मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण भी है। जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे शानदार इमारतों का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1650 में शुरू हुआ और लगभग 6 वर्षों में पूरा हुआ। कहा जाता है कि इसके निर्माण में हजारों कारीगर और मजदूरों ने काम किया था। पुरानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित ये जामा मस्जिद उस समय मस्जिदे जहानुमा कहलाती थी, जिसका मतलब है दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। श्रोताओं, जामा मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत है इसकी विशालता। इसके विशाल आंगन में एक साथ लगभग 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में 3 बड़े गुंबद, ऊंची मीनारें और खूबसूरत मेहराब हैं। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का संयोजन इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। दोस्तों, यहाँ की दक्षिणी मीनार पर चढ़कर पुरानी दिल्ली का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। ऊपर से दिखाई देने वाली गलियाँ, बाजार और ऐतिहासिक इमारतें मानो पुराने दौर की कहानी कहती हैं। दोस्तों, ईद और अन्य विशेष अवसरों पर यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं। उस समय पूरा वातावरण श्रद्धा, भाईचारे और उत्साह से भर जाता है। जहां साथियों, जामा मस्जिद अपने विशाल, भव्य मुगल वास्तुकला के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी दिलचस्प बात ये भी है कि जामा मस्जिद के आसपास का इलाका दिल्ली

के सबसे प्रसिद्ध खान पान केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ की गलियाँ स्वाद और संस्कृति दोनों का अनोखा संगम प्रस्तुत करती हैं। तो श्रोताओं, जामा मस्जिद केवल एक मस्जिद नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की जीवंत पहचान है। यदि आपको कभी दिल्ली घूमने का अवसर मिले तो इस ऐतिहासिक धरोहर को जरूर देखें और महसूस करें कि उस दौर की भव्यता जिसने भारतीय इतिहास को नई पहचान दी। इसी के साथ साथियों, हमारा आज का सेगमेंट ऐतिहासिक धरोहर यहीं खत्म होता है और अगले सेगमेंट में हम किसी नए ऐतिहासिक धरोहर के विषय में बात करेंगे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युवा तरंग में। अच्छा सुरभि, एक बात बताओ।
6: हाँ?
5: अब तो सभी की समर वेकेशंस ऑलमोस्ट शुरू ही हो गई होंगी, है ना?
6: हाँ ऋषिका, और इस समय तो बच्चों से लेकर युवाओं तक सबके चेहरे एकदम खिले हुए रहते हैं।
5: भाई ये तो तुमने एकदम सही बात बोली है। हर कोई कहीं ना कहीं या तो घूमने जाने का प्लान कर रहा होगा। हाँ। या तो ये सोच रहा होगा अब हम देर तक सोएंगे, या तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो पहले से सोच लेते हैं कि अब अगले एक महीने तक हम सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे।
6: बिल्कुल सही कह रही हो ऋषिका, लेकिन कई बार यही आराम इतना लंबा हो जाता है ना कि छुट्टियां खत्म होने के बाद हमें महसूस होता है कि काश इस समय का थोड़ा अच्छा उपयोग कर लिया होता।
5: ये बात तो है, इसीलिए साथियों आज हम बात करेंगे कि कैसे समर वेकेशन को सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिव भी बनाया जा सकता है। यानी ऐसी छुट्टियां जिनके खत्म होने के बाद आपके पास अच्छी यादों के साथ साथ कुछ नई सीख भी हो।
6: अच्छा ऋषिका, एक बात बताओ, क्या प्रोडक्टिव वेकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना है?
5: बिल्कुल नहीं। प्रोडक्टिव होने का मतलब होता है खुद को पहले से बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, नई आदतें विकसित करना और अपने समय का सही उपयोग करना।
6: बिल्कुल दोस्तों, और जानते हैं दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको बहुत बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं होती है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा बदलाव ले आती हैं। तो साथियों, आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने समर वैकेशन को कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे, कैसे अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे लेकिन इस गीत के बाद।

0: अच्छा सुरभि,
1: हाँ
0: तुम्हें पता है कि ये जो छुट्टियां हैं ना, वो नई स्किल सीखने का सबसे अच्छा समय होती हैं। पूछो क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि इस दौरान ना तो हमें एग्जाम्स का प्रेशर होता है और ना ही हमें रोज की कोई भाग दौड़ करनी होती है, है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल ऋषिका, तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो। और दोस्तों, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो इन्हीं छुट्टियों में कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। अगर आपको डांस पसंद है तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका रुझान ड्राइंग या पेंटिंग में है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक नया रूप भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल। और भाई, आजकल तो मोबाइल और इंटरनेट के साथ भी हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं भाई। काफ़ी अच्छा साधन हो गया ये। घर बैठे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश ठीक कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक सीख सकते हैं, कोडिंग भी या फोटोग्राफी जैसी, मतलब कोई भी स्किल्स जो है वो हम लोग घर बैठे ही सीख सकते हैं।

0: बिल्कुल ऋषिका, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आज तो स्किल आप लोग साथियों शौक में भी सीखेंगे, वही आगे चलकर आपके करियर का हिस्सा भी बन सकती है।
1: बिल्कुल, जैसे कि ये जो फोटोग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह है, ये सब का कितना अच्छा स्कोप है आजकल फ्यूचर में, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भाई दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नया नहीं कर सकता, तो हमेशा एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगनर ही था।
0: बिल्कुल। तो एक लेकिन बात ये है, अब हम बात उस बात की करेंगे साथियों कि जो आजकल हर वेकेशन का सबसे बड़ा साथी बन चुका है, कुछ गेस कर पाए आप लोग?
1: अच्छा, समझ गई, समझ गई।
0: हाँ, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को एक और हिंट दूँ?
1: दो दो।
0: अच्छा, एक ये हिंट ये है कि इसकी बैटरी जब 100% होती है तो आपकी एनर्जी भी 100% होती है, और जैसे ही इसकी बैटरी लो होती है तो आपका मूड भी कुछ लो हो जाता है। क्या आप लोग गेस किए?
1: मैंने तो कर लिया है, बता ही दो।
0: हाँ, तो साथियों मैं बात कर रही हूँ मोबाइल फ़ोन की। सच कहें साथियों, तो कई लोगों की छुट्टियाँ मोबाइल की बैटरी के साथ ही चलती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है
0: दोस्तों, लेकिन अगर मोबाइल का सही उपयोग किया जाए तो वही फ़ोन सीखने का एक बेहतरीन माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, या ऑनलाइन क्विजेज भी खेल सकते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सीमित रखा जाए, क्योंकि असली ज़िंदगी की खुशियाँ सिर्फ स्क्रीन पर नहीं मिलती।
1: कभी कभी सुबह की ठंडी हवा में टहलना, दोस्तों के साथ खेलना या परिवार के साथ बैठकर बातें करना भी उतना ही ज़रूरी होता है दोस्तों।
0: बिल्कुल, और दोस्तों म्यूज़िक भी आपके वैकेशन का एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है। इसी बात पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वहीं दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल आपसे फिर होंगे रूबरू कुछ नई बातें कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, गर्मी से बचे रहें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ मुझे यानी अपनी दोस्त ऋषिका और सुरभि को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार, नमस्कार।

युवा साथी अभी कार्यक्रम सुन रहे थे युवा तरंग, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का नई उड़ान कार्यक्रम में। और बिल्कुल, अगर अपने सपनों को एक नई उड़ान देनी है तो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना बेहद ही ज़रूरी है। फिलहाल तो आज जो है बहुत ही खास चीज़ है, बहुत खास दिन है। क्या है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ईद उल जुहा की, यानी बकरीद जिसे कहते हैं, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और पूरी नई उड़ान टीम की ओर से। और फिलहाल आपको दूसरी जो सबसे खास बात है वो बताते हैं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। हम बात करने वाले हैं वीडी सावरकर जी की, जिनके शब्दों में क्रांति थी, जिनके विचारों में आग थी, जिनकी कलम ने जगाया देशभक्ति का राग। दोस्तों, ऐसे वीर सपूत को आज शत शत नमन है, जिनके साहस से रोशन हुआ था भारत का गगन। आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी, साहित्यकार और समाज सुधारक रहे हैं वीडी सावरकर, जिनकी जयंती है। आपको दोस्तों बताते हैं कि 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगूर गांव में जन्मे वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महानायक थे। आपने अदम्य साहस, ओजस्वी विचारों और क्रांतिकारी लेखनी से देश को नई दिशा दी। छात्र जीवन से ही आपके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। आपने युवाओं में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए मित्र मेला और बाद में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। बिल्कुल दोस्तों, विदेश में रहकर भी आप भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। आपकी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ने देशवासियों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। सबसे खास बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके सेलुलर जेल भेज दिया, जहां उन्होंने कठिन यातनाएं सही, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वीर सावरकर केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे,

बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सामाजिक समानता, छुआछूत उन्मूलन, राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया। वाकई दोस्तों, आपका जीवन हमें ये सिखाता है कि हम आपके आदर्शों को आत्मसात करें, राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प लें। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देशभक्ति की जो लौ उन्होंने जलाई थी, वह आज हर भारतीय के हृदय में जलती है। वीर सावरकर का जीवन हमें साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहे। तो आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन है हमारी और पूरी नई उड़ान टीम की ओर से। यही त्याग, बलिदान हमारे अंदर भी होना चाहिए, दूसरों की सेवा करने का भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब आज हमने बात करी है वीडी सावरकर जी की, तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है फिल्म लीडर का, अपनी आजादी को, जिसमें आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल दोस्तों, अपनी आज़ादी को हम बिल्कुल हरगिज मिटा नहीं सकते। देश प्रेम और आज़ादी के जज्बे को जगाने कि ये एक जो ये जो गीत सुना है, वाकई ये हमारे मन को कहीं ना कहीं झकझोर देता है। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, उसकी आन बान की रक्षा हमारा धर्म है। आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, शहीदों की अमानत है। आइए देश प्रेम को अपना संकल्प बनाकर भारत को और भी सशक्त बनाएं। कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे ऐसे काम हम कर सकते हैं दोस्तों। आज के दौर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे काम, चाहे वे लोगों की सहायता करने का काम हो या देश के लिए कुछ ऐसा करने का काम हो ताकि हमारा देश प्रगति की राह पर बढ़ सके, तो इसी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की आज के, जिसमें बांस आधारित जो हस्तशिल्प व्यवसाय है वो एक परंपरा और आधुनिक बाजार की मांग का बेहतरीन संगम है। ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों को आत्मनिर्भर भी बना रहा है, उनको रोजगार के अवसर भी दे रहा है। कैसे दे रहा है, आज इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे अभिषेक शर्मा से, जो कई लोगों से बात कर रहे हैं। विषय है बांस आधारित हस्तशिल्प व्यवसाय। तो आइए सुनते हैं ये स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित ओबी।
1: बांस सिर्फ एक पेड़ नहीं, भारतीय जीवन की सांस है। नमस्कार, नई उड़ान की विशेष श्रृंखला हुनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इतना बांस का महत्व क्यों है, कभी आपने ये जानने का प्रयास किया या जाना तो क्या आप बताना चाहेंगे? आप
2: जो बांस होता है और निरंतर बढ़ता रहता है और हरा भरा होता है, तो ऐसे हमारे जीवन भी हरा भरा रहे और लगातार बढ़ता रहे, इसलिए बांस महत्वपूर्ण है।
1: भारत की परंपरा में शायद ही कोई ऐसा पौधा हो जो इंसान के जीवन के हर पड़ाव का साथी बनता हो।
3: शुभ काम में भी इसका इस्तेमाल होता है, अशुभ काम में भी इस्तेमाल होता है। मतलब बांस हमारा जो है हिंदू समाज के लिए शुभ अशुभ दोनों कार्य के लिए बना है।
4: राजा महाराजा जब अपना यज्ञ करते थे वो भी बांस की मड़ैया बनवाते थे।
1: तो अच्छा, जो आज के जो हमारे युवा हैं, अगर वो इस तरफ अपने रोजगार की तलाश करें और वो चाहें कि बांस के व्यवसाय में अपना करियर बनाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
5: 100 रुपये की लागत में 500 रुपये काम हो जाता है, तो 400 रुपये में खर्चा चल जाता है। बहुत से आइटम 500 आइटम हम बनाते हैं, जैसा ऑर्डर आता है वैसा बनाते हैं
1: अपने हाथ से। तो मतलब किसी के अंडर में होकर के काम करना ठीक है या थोड़ा हेडेक लेकर के अपने लिए राजा बनकर के काम करना ठीक है?
5: नहीं, अपने लिए, हम लोग के लिए तो अपने लिए, जब घर में बैठ के पंखे के नीचे आराम से कर रहे हैं, अब किसी के आधार पर काम करेंगे वो कैसे करवाएगा, कहाँ बैठाएगा?
1: कभी छुट्टी मिली कभी नहीं मिली,
5: इसलिए हम लोग बहुत कम दूसरे के नौकरी उकरी पसंद करते हैं।
6: अनिता,
1: आप क्या क्या बनाती हैं?
6: हम लोग गिफ्ट वाली जो नहीं होती है वो दिया बना दिया जाता है।
1: आपने कैसे सीखा?
6: अब हमारे जो ससुराल में होता था जौनपुर में।
1: जन्म हो तो घर के आंगन में बांस की टोकरी और पालना दिखाई देता है, शादी हो तो मंडप की मजबूती भी बांस से आती है, घर बनाना हो तो छत से लेकर बाड़ तक बांस साथ खड़ा रहता है। खेती किसानी में किसान की लाठी भी बांस, फसल संभालने का सहारा भी बांस। संगीत में देखिए भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भी बांस की, जिसकी मधुर धुन आज भी प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। त्योहारों में, सजावट में, मेले में, गांव की चौपाल में, हर जगह बांस अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और शायद यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में बांस को सिर्फ उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि शुभता, सादगी और सहनशीलता का प्रतीक माना गया है। बांस जितना ऊंचा

0: ऊंचा बढ़ता है उतना ही झुकना भी जानता है। यही तो भारतीय संस्कारों की पहचान है। और सबसे भावुक बात, इंसान की अंतिम यात्रा में भी अर्थी का सहारा अक्सर बांस ही बनता है। यानी जन्म से मृत्यु तक, सुख से दुख तक, उत्सव से संघर्ष तक, बांस सिर्फ हमारे घरों में नहीं, हमारी यादों में बसता है। तो आज के इस विशेष अंश में हम बात करने वाले हैं उसी बांस की। जी हाँ, विषय है बांस आधारित हस्तशिल्प व्यवसाय। दोस्तों, इस वक्त अभी हम एक ऐसे व्यवसायी के पास में हैं जो इस वक्त बांस की चटाई बेचने का काम करते हैं। जी हाँ, वही चटाई जो इस गर्मी में लोगों को धूप से बचाने का काम करती है। और आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बांस की चटाई के अलावा और ये क्या क्या व्यवसाय करते हैं और इस व्यवसाय को वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका?
1: अशोक कुमार।
0: जो बांस आधारित हम व्यवसाय पर बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या काम करते हैं आप?
1: इसमें नेट वगैरह लगाया जाता है, बॉर्डर लगता है बांस का, छील के फंटिया सब बिनाई होती है, अड्डे बने रहते हैं, लेबर लोग जो बनाते हैं इनको, जैसे तो ये सब पूरा क्लियर हो के कपड़ा लग के बॉर्डर लग के तब ये लगता है। फैंसी चटाई भी होती है, बांस वाली, व्हाइट वाली भी चटाई होती है, धागे वाली भी होती है। तो इनमें हम जितना बांस का काम होता है सब टोटल करते हैं।
0: तो ये काम आप अपने हाथों से खुद करते हैं या?
1: अपने हाथों से भी करते हैं, लेबरों से भी करवाते हैं। हमारा कारीगर जो है वो लेबर भी करते हैं और खुद भी, जरूरत जहाँ पड़ती है तो खुद भी करना पड़ता है।
0: तो बांस आधारित अगर व्यवसायों की हम बात करें तो उसमें और क्या करते हैं आप?
1: बांस की झोपड़ी वगैरह, रूम जैसा बनाना हुआ वैसा बन जाता है, पर्दे टाइप का बनाना हुआ वैसा बन जाता है।
0: फैंसी आइटम भी बनाते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, फैंसी वो झोपड़ी वगैरह तो सब फैंसी ही होंगी।
0: बांस आधारित या बांस की लकड़ी की बात करते हैं तो अन्य लकड़ियों की तुलना में बांस किस तरह से लोगों को व्यवसाय ज्यादा देता है?
1: तो ये जब आसाम वाला जो बांस होता है, पका बांस, जो पका बांस होता है तो वो ज्यादा, उनकी ज्यादा लाइफ होती है। जैसे झोपड़ी हम लोग बनाते हैं पके बांस की, तो वो पके बांस का लाइफ थोड़ा ज्यादा होता है। और जो नॉर्मली बांस होते हैं तो ये एक दो साल में ये इनका मैटर गड़बड़ हो जाता है। और जो पके बांस होते हैं वो चलते हैं कम से कम 7-8 साल।
0: अच्छा, बांस की झोपड़ी कौन बनवाता है इस समय?
1: किसी ने ऑर्डर दिया कि हमको ये ऐसा आप बना के दीजिए, मुझको इसमें लाइटें वगैरह लगानी है, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो वो वहाँ जाके हम लोग कारीगर ले जाके वहाँ पे पूरा सेटलमेंट कर देते हैं। ये होता है,
0: जैसे किसी ने अपने फार्म हाउस में बनवा लिया, किसी ने अपने शॉप पे
1: बनवाया। फार्म हाउस जैसे बहुत से भैया के लोग होते हैं, फार्म हाउस हो गए या उनका रूम हो गया बड़ा सा, कुछ भी हॉल वगैरह बैठ कर वहाँ पे कहते हैं कि ये हमारा डेकोरेशन पूरा तैयार कर दीजिए, आप समय ले लीजिए, जैसा भी क्या करना है आपको, तो उसी हिसाब से हम लोग कर देते हैं काम।
0: अच्छा, ऐसी जगहों पर बांस की ही लकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
1: बांस की लकड़ी का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है पके बांस का, कि इसमें लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, चलता भी अच्छा है आगे तलक, ये होता है इसलिए बांस की लकड़ी को यूज किया जाता है। ये छील के पूरा बनाया जाता है, एक एक चीज छीला जाता है तब बिनाई करी जाती है, उसके बाद बॉर्डर लगता है।
0: दोस्तों, अभी एक हम आचार्य जी के पास हैं और उनसे जरा सा जानेंगे कि अगर बांस की आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे जीवन के हर मोड़ पर बांस का इतना महत्व क्यों है, चाहे वो शुभ काम हो या अशुभ काम हो। आपने देखा होगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, घर गृहस्थी तक, हर जगह बांस का इस्तेमाल होता है, तो क्यों इतना महत्व है बांस का, जरा सा जानेंगे।
2: जो बांस होता है और निरंतर बढ़ता रहता है और हरा भरा होता है, तो ऐसे हमारे जीवन भी हरा भरा रहे और लगातार बढ़ता रहे, इसलिए बांस महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह कि वो हमारे जीवन को सिखाता है कि वो कितना भी इंसान ऊंचा उठ जाए मगर झुक के रहना चाहिए, क्योंकि जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। और बांस ये भी सिखाता है कि हर हाल में किसी न किसी के वो काम आता है, इसलिए मनुष्य को भी हर हाल में किसी न किसी के काम आना चाहिए।
0: क्या नाम है भैया आपका?
3: जी, शरण कुमार विश्वकर्मा है मेरा नाम।
0: अच्छा, ये जानना चाहेंगे, ये जो आपकी बांस के बने हुए सामानों की जो दुकान है, इसे थोड़ा सा कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए, समझाइए कि क्या क्या चीजें आपके पास मौजूद हैं और कब से आप ये कारोबार शुरू किया है आपने?
3: कारोबार तो खैर बहुत दिन का हुआ है हमारा। बांस में बहुत से आइटम बनते हैं, बांस के जो है गमले बनते हैं, बांस की टेबलें बनती हैं, बांस की मेजें बनती हैं, सोफा बहुत लोग बांसों का बनवाते हैं, बांसों की झोपड़ी बनती हैं, बांसों की हट बनती हैं, और बहुत से काम व्यवसाय है बांस का। बांस की फंटी झंडी के लिए निकलती हैं, और टट्टर बनता है, सीढ़ी बनती है, चहलियाँ बनती हैं, इसकी लाठियाँ भी आती हैं बांसों की, बहुत सी चीज़ें हैं इस पे। और शुभ काम में भी इसका इस्तेमाल होता है, अशुभ काम में भी इस्तेमाल होता है। मतलब बांस हमारा जो है हिंदू समाज के लिए शुभ अशुभ दोनों कार्य के लिए बना है।

0: इतना बांस का महत्व क्यों है, कभी आपने ये जानने का प्रयास किया या जाना तो क्या आप बताना चाहेंगे आप?
1: बांस के महत्व में तो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो तो हमको भी नहीं मालूम उसके बारे में कि बांस में क्या क्या होता है। ये तो भाई पुरखों के जमाने से चला आ रहा है। भाई घर में मिट्टी हो जाती है तो हरा बांस लेके आते हैं, टिकटी बनाते हैं उसकी, उस पर मिट्टी शमशान घाट लेके जाते हैं, कहीं पे पूजा पाठ होती है तो झंडा बांधा जाता है बांस के अंदर। भाई मोर बनता है तो वही बांस का होता है, मंडप बनता है वही बांस का होता है। तो सब शुभ चीज़ें मानी गई, तो ये तो पुरानी चीज़ें हैं, इसके बारे में तो हम ज़्यादा नॉलेज हमको भी नहीं है, ये तो कोई बहुत बुजुर्ग आदमी का वही बता सकता है।
0: लेकिन है ये बात, हम सब जानते हैं, इसके महत्व को भी मानते हैं, हालांकि उसके इतिहास को भले ना जाने। भैया थोड़ा आपका नाम जानना चाहेंगे?
1: राजू।
0: अच्छा, आप अभी बता रहे थे ये कुछ बहुत सारे फैंसी आइटम्स भी बनते हैं बांस के, तो आप क्या क्या चीजें बनाते हैं
2: बांस का? जैसे कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी बन सकता है, एक अच्छा मड़िया भी बन सकती है, एक अच्छा दुकान भी रोड पे बन सकता है, बहुत सी चीजों में बांस काम आता है भाई। और बांस का जैसे मकानों भी बांस का काम आता है, बिल्डिंगों में भी जरूरत लगती है, चिट्ठियों में भी काम आता है, हर चीजों में भाई बांस काम आता है।
0: तो बांस के व्यवसाय पर जब हम बात कर रहे हैं तो एक भैया और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बांस के व्यवसायी हैं और अपने हाथों से बहुत सारी चीजें बनाते हैं ये खुद। भैया आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
3: भैया देखिए, हमारे यहाँ तो इसका एक से एक फैंसी काम होता है, बांस तो हर एक चीज में काम आता है। आपका सुन लिया, बांस पतंग अतंग में भी बनती है, इसकी पतंगे भी बनती हैं बांस की मूर्तियाँ भी बनती हैं, बांस के पंडाल बनते हैं जिसे गणपति होती है, और बांस जो है हर एक चीज़ में काम आता है। ये एक पीढ़ी से चला आ रहा बांस, मतलब एक राजा महाराजा जब अपना यज्ञ करते थे वो भी बांस की मड़ैया बनवाते थे, और एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी कि वहाँ खाना पीना आदमी खाता था। बांस मतलब हर एक चीज़ में प्रयोग आता है। और ऐसे ऐसे होटल हैं बांस के, खुद मेरे बड़े भाई बनाते हैं, श्रवण कुमार विश्वकर्मा, एक से एक रेस्टोरेंट बनाते हैं जो लोहिया में आनंदी में, और एक से एक मतलब फैंसी चीज़ें बनती हैं।
0: तो अच्छा, जो आज के जो हमारे युवा हैं, अगर वो इस तरफ अपने रोजगार की तलाश करें और वो चाहें कि बांस के व्यवसाय में अपना करियर बनाएं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
3: के लिए यही है भैया कि वो आसाम बांस का काम कारोबार करें, कोई भी करें। आसाम बांस इस समय लखनऊ के अंदर छाया हुआ है, देसी बांस की पैदावार है तो, लेकिन अब जो है गाँव में सब आदमी खेत बेच दे रहा है, सारी जमीनें बेच के मकान बना रहा है, प्लाटिंग कर रहा है, बांस लखनऊ से खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन आसाम में बांस का बहुत पैदावार है। अब लखनऊ में भी बांस आसामी से सबसे ज्यादा आता है।
0: अच्छा, आसाम के बांस की कुछ खासियत भी है क्या?
3: आसाम बांस एकदम सीधा होता है, लेकिन देसी बांस जो लखनऊ के बांस होते हैं, देसी बांस वो ऐसे बांस होते हैं कि वो फटते नहीं जल्दी, लेकिन आसाम का बांस क्या है, वो सिर्फ फैंसी चीज में काम आता है बस, और कोई चीज में नहीं काम आ सकता है। अगर उसको धूप में रख देंगे आप फट जाएगा बस, और लेकिन देसी बांस फटता नहीं हमारा।
0: तो देसी बांस का अपना महत्व है कि आप उसका इस्तेमाल कितने भी लंबे टाइम तक करिए वो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर फैंसी आइटम आप बना रहे हैं तो आसाम का जो बांस है वो काम करेगा। अच्छा, कम लागत में ज्यादा कमाई के लिए हम इस व्यवसाय को चुन सकते हैं क्या?
3: देखिए, पहले एक समय था इसका, लेकिन हर धीरे धीरे चीज हर चीज महंगी हो गई है। अब तो ये है कि जैसे आप 100 लगा रहे हैं तो 150 कमा सकते हैं, 50 आप पा सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बस ये है भाई।
0: अपना नाम बताइए भैया।
4: बुझारत।
0: क्या उम्र होगी आपकी?
4: 57 साल।
0: अच्छा, जो बांस आधारित हस्तशिल्प व्यवसाय हैं उसमें क्या क्या काम आप करते हैं?
4: हम बहुत सा काम करते हैं, रक्से पे पर्दा बनता है, जो पर्दा लगाते हैं उसको पंजा बोलते हैं, जो खोंचा बेचने वाले बेचते हैं, जो नीचे रख कर उसको तन्ना बोलते हैं वो बनाते हैं, बहुत सा आइटम, 50 आइटम हम बनाते हैं, जैसा ऑर्डर आता है वैसा बनाते हैं
0: अपने हाथ से।
4: ये बास्केट बनाते हैं जो फूल उल सजता गुलगस्ता, रैक बनाते हैं, छितनी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, दौरा बनाते हैं, दौरी बनाते हैं, ये सब जो आइटम जितने हैं 50 आइटम का हम कारीगर हैं, हम ये बनाते हैं, जैसा ऑर्डर आता है उस तरह काम हम करते हैं।
0: तो कैसे सीखा ये बनाना आपने?
4: ये हमारा ये खानदानी काम है, हमारे बाप दादा से बनता आ रहा है, वो हम भी पैदा हुए बचपन में सीखे, सीखते सीखते तब अपना सीख लिए पूरा आइटम, हम जब सीख लिए तो अपना काम धंधा अलग करने लगे। अपना हमारा घर है आजमगढ़, यहाँ हम 27 साल से हैं और यही काम करते हैं। अब आपके पीढ़ी आगे नहीं बस सीख रहे हैं, सब बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, ये काम नहीं करने चाहते हैं, कहें कि ये काम कुछ रंग उंग भी का काम होता है तो उनको रंग उंग नहीं लगना चाहिए, बड़े अब दूसरे हिसाब से है, हम ही लोग तक है जब तक है। हाँ, आगे कहीं कभी बच्चे है, आगे नहीं अब सीख रहे हैं।
0: अभी कौन कौन लोग साथ में काम करते हैं आप?
4: हमारे बच्चे करते हैं, जो मतलब सीखे हैं तनी मनी, हमारी वाइफ

0: करती है हमारी जो बूढ़ा है वो करते हैं, हम करते हैं और कोई ना जो हमारे घर में है वो करते हैं मतलब।
1: अच्छा तो अगर चाचा हम ये जानना चाहें कि जो आने वाली पीढ़ी है, आपने कहा कि हालांकि वो सीखना नहीं चाहते हैं या इस व्यवसाय में नहीं लगना चाहते हैं, तो क्या इस व्यवसाय को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर सोचिए कि मौर बनना बंद हो जाएगा तो जब शादियां होंगी तो लोग अपने सिर पर क्या रखेंगे, ये सवाल है कि नहीं?
0: उसके लिए अब हम क्या समझाते तो हैं बच्चों के कि भैया आप सीखो सीखो करो, जब वो नहीं कर रहे उनको इनके मेहनत ज्यादा लगता है इसमें। आप दुकान पे कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो एसी के नीचे कर रहे हैं, उनको लिए ये आराम है, हम लोग उतना मेहनत कर चुके हैं, अब वो उतना मेहनत नहीं आप करने चाहते हैं बच्चे,
1: मतलब हेडेक नहीं लेना चाहते है ना, उनको सीधा जाइए कि सुबह 10 to 5 नौकरी चाहिए,
0: आराम से अपना काम किए, समय से अपना घरे चले आए, हम लोग बनाते हैं बेचते हैं, ले जाके बेचते भी हैं, कहीं ऑर्डर रहता है दे भी देते हैं, वो सब ये काम उनको झंझटी लगता है।
1: तो मतलब किसी के अंडर में होकर के काम करना ठीक है या थोड़ा हेडेक लेकर के अपने लिए राजा बनकर के काम करना ठीक है?
0: नहीं, अपने लिए, हम लोग के लिए तो अपने लिए जब घर में बैठ के पंखे के नीचे आराम से कर रहे हैं, अब किसी के आधार पर काम करेंगे वो कैसे करवाएगा, कहाँ बैठाएगा?
1: कभी छुट्टी मिली कभी नहीं,
0: कभी नहीं मिली, इसलिए हम लोग बहुत कम दूसरे के नौकरी उकरी पसंद करते हैं, अपना काम खुद हम लोग के ऑर्डर हर सीजन में ऑर्डर आता रहता है, काम करते रहते हैं।
1: अच्छा एक चीज बस और पूछना चाहेंगे कि जो लागत होती है और जो इनकम होती है उसमें जो जो मतलब पैसा बचता है उससे घर का खर्च चलता है या समस्याएं आती हैं?
0: नहीं, खर्चा तो चल जाता है आराम से, बात नहीं है, खर्चा जो चल जाता है, अगर 100 रुपये की लागत में 500 रुपये काम हो जाता है तो 400 रुपये में खर्चा चल जाता है।
1: ये बहुत अच्छी चीज है। माता जी आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम अनीता।
1: आप क्या क्या बनाती हैं?
2: हम लोग गिफ्ट वाली जो नहीं होती है वो दिया जाता है।
1: आपने कैसे सीखा?
2: अब हमारे दोनों ससुराल में होता था जौनपुर में।
3: अच्छा। दोनों लोग करते चले आए।
2: हम लोग जो शादी ब्याह वाला भी काम करते हैं और फूल वाली डलिया भी बनाते हैं।
1: ये बताइए चाची, जैसे एक जो डलिया आप बनाती हैं बांस की, उसको बनाने में कितना समय लगता है?
2: अरे कम से कम 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है।
1: 1 घंटा? अच्छा, और मेहनत कितनी लगती है?
2: मेहनत तो बहुत लगती है, दिन भर जो ना इसी में सवेरे से जुटे रहो, अभी शाम को कभी 8 बज जाता है, कभी 7 बज जाता है, कभी 6 बजे छुट्टी हो जाता है।
1: तो घर का काम कौन करता है?
2: बिटिया बनाती है।
1: अच्छा,
2: कोई झाड़ू पोछा?
1: बच्चों का सहयोग मिलता है?
2: हाँ, 2-3 लड़की हैं, 4 वही सब करती है, संग संग लड़के दोनों जो ना बैकरी में करते हैं।
1: बांस कहाँ से लाते हैं आप लोग?
2: बांस तो डालीगंज से लाते हैं।
1: अच्छा, लोग बताते हैं कि जो देसी बांस है उसका थोड़ा कम व्यवसाय चलता है या कम अच्छा लगता है, जो बाहर के बांस है ऐसा क्या है उसमें?
2: उसमें जो पोर बड़े बड़े होते हैं उसमें जल्दी बनती है, और जो छोटे बांस पोर की होती है उसमें जल्दी नहीं बनता है,
1: उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है।
2: उसमें ज्यादा लगती है, गांठ बहुत होते हैं, इसमें जो ना गांठ नहीं होते हैं, यही है।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
4: दोस्तों, बांस महज एक पेड़ नहीं, हमारी परंपरा, रोजगार और प्रकृति से जुड़ी एक पूरी संस्कृति है। कहीं ये टोकरी बनकर घर संभालता है तो कहीं आधुनिक दुनिया में ग्रीन बिजनेस की पहचान बनता है। उम्मीद है कि हमारे कारीगरों की ये कला यूं ही निरंतर आगे बढ़ती रहे। तो फिलहाल आज के इस विशेष अंश हुनर से दीजिए मुझे यानी कि अभिषेक को इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।
5: बिल्कुल दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरीके से बांस से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आज अभिषेक शर्मा कई लोगों से बात कर रहे थे, बांस आधारित हस्तशिल्प व्यवसाय, लोगों के विचारों को हमने जाना। ये स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित जो उबी है वो आप तक नई उड़ान के माध्यम से पहुंची। फिलहाल तो आइए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, विकास समाचारों की ओर। तो सबसे पहले तो शॉर्ट में आपको बताते हैं कि यूपी में बनेंगे 80 आवासीय बालिका विद्यालय, लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क का काम तेज होगा, ट्रैफिक सुधारने को 35,000 करोड़ की कार्य योजना, फ्री वाईफाई व डिजिटल सेवाओं से बदलेगी गांव की तस्वीर, और खेती को बनाना है टिकाऊ और लाभकारी। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के जिन ब्लॉकों में अभी तक कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है वहां 80

आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि प्रत्येक विद्यालय में करीब 200 छात्रों के रहने और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना पर लगभग 586 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सरकार का कहना है कि इससे दूर दराज क्षेत्रों की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर भी मिलेगा और बालिका शिक्षा भी नई मजबूती की ओर बढ़ेगी। वहीं प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए टेक्सटाइल पार्क परियोजना के काम तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े निर्माण कार्यों और आधारभूत सुविधाओं को तय सीमा से पूरा किया जाएगा। इस टेक्सटाइल पार्क के शुरू होने से प्रदेश में वस्त्र उद्योग को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही साथ सरकार का कहना है कि ये परियोजना निवेश आकर्षित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में अहम साबित हो रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई और हाई स्पीड डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब समाचार यहीं पर समाप्त हुए, विकास समाचार। फिलहाल तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अर्पित को दीजिए इजाजत। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए।

0: विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हमारे बुजुर्ग जैसे बरगद की छांव, किससे कहानियां दादा दादी के, प्यार दुलार नाना नानी का, जीवन की इस सांझ के अनुभवों को याद दिलाता है हमारा ये कार्यक्रम अक्षयवट। हर रविवार 1:30 बजे मीडियम वेव 747 MHz पर। तो सुनना ना भूलें अक्षयवट।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
5: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वपदात् औपचारिकरूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमंत्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू सिक्किम आरक्षक दलाय राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदत्तवती। अत्रांतरे सिक्किम राज्यं पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। होर्मुज जलडमरु मध्यस्य समीपे आक्रमणान्तरं अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये अवसादः वर्धितः। गृहमंत्री अमित शाहः गांधीनगरे जनसभायां अवैध प्रवासीनां देशात् निष्कासनार्थं सर्वकारस्य दृढसंकल्पं पुनः प्रत्यपादयत्। अपि च बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पीवी सिंधुः तथा च लक्ष्य सेनः सिंगापुर ओपन इत्यस्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इत्यसौ अद्य लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः स्वयं प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनं मुख्यमन्त्रिणः पदभारं ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 37% अधिक विधायकानां समर्थन सहचारेण कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतिना स्वकीयम् अरुचिं प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् सः राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। सिद्धरमैया इत्येषः 23-2000 वर्षे द्वितीयवारं कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री संजातः। इतः पूर्वं सः 13-18 यावत् मुख्यमंत्रित्वेन कार्यम् अकरोत्। सः राज्ये 8 वर्षाणां कार्यकालद्वयं पूरयित्वा सर्वाधिक समयमुपविशता मुख्यमंत्रित्वेन गौरवम् अर्जितवान्। मुख्यमंत्रित्वेन वित्तमंत्रित्वेन च तेन राज्यस्य 17 आयव्ययकानि उपस्थापितानि। तस्य त्यागपत्रेण राज्ये सुदीर्घकालतः जायमानः सत्तासंघर्षः समाप्तः। अत्रांतरे राज्यस्य उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः कर्णाटक कांग्रेस दलस्य वरिष्ठतमेषु नेतृषु कश्चन प्रमुखः अस्ति। 23-2000 विधानसभा निर्वाचने कांग्रेस दलस्य महत विजये तेन प्रमुखा भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोकनगरे आयोजित

0: ते अलंकरणं सञ्चलने सिक्किम आरक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय सम्बोधितवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपद प्रबन्धने सिक्किम आरक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: अत्रांतरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यं आधिकारिक रूपेण पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितं। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोक नगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता। यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि, तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितं। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितं आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्ध विरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासीनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिंशत कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाह पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाह अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्व आरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मंत्रिणां एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षामंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत, तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के

0: माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए। ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: पूरा ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतन दिवस भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्ण आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, पीवी सिंधु, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिला तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां षोडश चक्रे पीवी सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी 21:09, 21:12 इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य एनके यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वारीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदित सारनः स्पर्धायाः आरंभे एव आहतो भूत्वा क्रीडांगणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आशयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन।

0: पंचो जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ रेनु बहनी।
1: भैया अस गर्मी आजकल पड़ रही है कि ऐसा लागत है कि घर से निकलबे ना करो।
0: अरे
1: भैया देही जैसे जर जात है तनिको निकल।
0: बिल्कुल हमार तो पिठिया उठिया आइस करिया हो गया है कि जैसे लागत है एकदम भुट्टा उट्टा भुना तो वही मेर का करिया हो गया। कबो कबो तो पपड़िया छूटे लागत है। अब का है कि देही काम तो करबे करे पड़त है अपने खेती पाती में।
1: बिल्कुल भैया खेती पाती में काम करक पड़त है और घर से बाहरों निकलक पड़त है। कहे कहीं देखो चाहे जितना कुछ करो लेकिन चाहे घाम हो चाहे बरखा हो चाहे बूंदी हो चाहे जाड़ हो मौसम तो चाहे जौन आवे जाए करे लेकिन काम तो अपन बंद नहीं कर सकत हो।
0: बिल्कुल भाई।
1: अब काम खातिर कबो कबो निकलक पड़त है कबो जो है घूमे टहरे खातिर निकलक पड़त है। मतलब घूमे टहरे का मतलब है कि कोई क्या कहूँ आवे जाए पड़ेगा जरूरी भा है या फिर कोई दिखावे सुनावे पड़ेगा। तो ये सब काम अस हैं कि जिनका हम टार ही नहीं सकित है हमका निकरही निकरक है। तो ऐसे मैया भैया अगर हम जब घर से निकली तो तनिक सचेत होके निकली अपन जोन है देख रेख के साथ निकली कि मतलब मान लो घर से निकल ही का पड़ेगा तो जोन है अपने मुड़े मैया अंगोछा बांध ली या फिर टोपी पहन ली और जोन मान लो महतारी बिटिया हो रही हैं बहनी हैं तो वे पंचे अपने जोन है दुपट्टा हो जोन काटन के रे होते हैं उनका सूती दुपट्टा जिनका कहा तो उनका भैया बांध लो है। ये सब चीजन के यहाँ ध्यान दे के निकलो कि सीधे घाम खोपड़ी में ना लागे।
0: और यहूँ एक जोन वैसे बात तो बहुत बढ़िया बताओ बहनी मूल अगर हो सके तो एक चाहे जो अपने घर के अगर बोतल हुए वही में पानी भर लो। कुल मिला पानी का व्यवस्था जरूर रखो काहे के बदे कब प्यास लगी कब दिक्कत हुई कोनो पता नहीं है। और कहूँ तो ऐसा होता है कि चलत चलत हम पंच ध्यान ना दे पाए और शरीर में पानी कमी हो जाते तो उससे झटका लग जाता है कि तनी कबो कबो आँख मुंदे लागत है। यहू सबसे हम पंचन का सचेत रह चाहिए और अगर ऐसा कोनो दिक्कत हुए तो भैया तू जुड़ते साइकिलिस्ट या जौन चीज चलाए रहे हो वैसे उतर के अपन मुंह धो लियो पानी पी लियो 2 मिनट सुस्ताए लियो छहा लियो और फिर आगे बढ़ो तो वैसे का हुई कोनो मेर का दिक्कत ना हुई। और ना ही तो भैया काम तो हमेशा हुई मूल अगर शरीर का कोनो दिक्कत हो गए तो भैया वो फिर जल्दी पूर न हुई।
1: बिल्कुल सही कहो रामजीत भैया। और जो नहीं पानी वाली बात कहो ये तो कबो कबो ऐसा होता है कि जैसे लाते गटई सूखे लाग हैं जीभ मार कह रहे कि हमका पानी प्यास लाग है। मूल जब पानी अपने लगे नहीं होते ना तो बड़ी दिक्कत होते है सोचा था कि अच्छा चलो अब घरहीन पहुंच जाए या फिर जहाँ जा रहे हैं उस जगह तक पहुंच जाए। तो ऐसे में यहाँ पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाता है और भैया लू लागे के लिए पूरी संभावना रहा था इस समय पर। तो ई बदे अगर जब घर से निकलो तो कुछ चीजें और हैं कि घर में रहो तो कम से कम तब तो पानी की कमी का पूरी करे रहो कि अगर बाहर निकलो तो अपन शरीर जो है अगर थोड़ी देर पानी ना पावे तो उसका झेल सके। अब जैसे घर में हो तो अपन माठा है उसका पियो जैसे पतला मठा बना लियो पी लियो या फिर छाछ जो माठा के पतला एकदम होता है

0: हुक्का पिएन, और नहीं तो जो है सत्तू आजकल बड़ा बढ़िया रहा था भैया, सतुआ घोर के पी लियो हैं। ई तिना की चीज़ें हैं, बेल केर शरबत है, आम केर पना है, ये सब चीज़ें जो उन्हें लू से बहुत बचाव करती हैं। अगर घर से बाहर निकले है तो भाई ये सब चीज़न के सेवन जो है भरपूर मात्रा में करें।
1: बिल्कुल बहनी, और इतना चीज़ गिनाए दियो कि हमारे जो जिभिया है वही सब चुटपुटाए लाग है। मूल अब हियाँ तो खैर मिली ना, लेकिन एक बात हम और कहे चाहिए बहनी कि ये सब चीज़ पिए चाहिए और मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मूल अगर बहुत घमाए के बहुत दोपहरी में एकदम आए रहे है तो जुड़ते अगर क्यों पकड़ायु दे है तो ओका पियक ना चाहिए, 2 मिनट सुस्ताई पियक चाहिए। शरीर जौन है वो एकदम तपत रहा था तो उसे धीरे धीरे तनी ठंडी हो जाए, हम आपन हमहो सुस्ताए ले तब जब वो शरीर में जाता तो कौनो मेर के दिक्कत नहीं करत, ना ही तो शरीर में दिक्कत
0: हो जाता। सही कहो रामजीत भैया। और देखो तुम्हें जो घमाया और तपाए वाली बात कहो ना, इससे हमका एक बात और याद आ रही है कि बहुत जने भैया क्या करते हैं, जब बहुत घमान रहे थे और जैसे घरे पहुंच गए हैं तो वे एकदम से सोचे थे कि बस हम तुरंत कमरा में जाए, और कमरा में यहाँ भाई जो कोई घर में पहले से रह रहा है तो वो पता चला कूलर चलाया है, कहूँ पंखा चलाया है, और आजकल तो भाई एसी की सुविधा है बहुत जनन के लगे तो वह चलाए हैं, तो कहते सीधे वही गए जुड़ते कमरा में घुस गए जाए के ऐसे मैया भैया घामे से आए और जुड़ते कमरा में यहाँ घुस गयो तो जो है वहू मैया बड़ी दिक्कत हो जाते है, सर्दी जुकाम हो जाते है, तबीयत खराब हो जाते है। तो इस सब बातन का यहाँ ध्यान रखे के कि जुड़ते भैया कमरा में ना जाओ। और याक बात और भैया जो बहुत जरूरी है
1: वो बताए दो
0: कि भैया देखो हम पंच तो है ही अपन सबके जो ध्यान रखी थे, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं
1: लड़कोर महिलाएं
0: हाँ भैया जो गर्भवती महिलाएं हैं या नवजात शिशु हैं जो उनको उनके सबके समय पर भी बहुत ध्यान धरे के लिए जरूरत है। कहे कि यहाँ देखो उनका समय समय पर दिखावे सुनावे जाहिन का परत है, तो ऐसे में यहाँ उन्हों के यहाँ भाई दिक्कत हो सकत है। तो इके लिए पहले से उनका जब जाओ तो जुड़े जुड़े जाओ हैं, और भैया उनके ख्याल बहुत अच्छे से हमका रखे का है। और हम ही नहीं देखो ये ख्याल हम पंचे तो रखते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी चाहते हैं कि हम पंचे उनके अच्छे से ख्याल रखी, सरकार भी पूरी ध्यान धर रही, यही वजह उनके सबके खातिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई है। इके अंतर्गत जो अपन क्या कहते हैं गर्भवती महिलाएँ हैं या फिर जो है स्तनपान करावे वाली जो महिलाएं हैं इनका सबका खातिर जो है सरकार की तरफ से विशेष जो है कहते हैं कि आर्थिक सहायता दी जाते हैं भैया।
1: बिल्कुल बहनी, और ई सहायता यही बदे दी जाता है कि लड़कन का कोनो प्रकार के दिक्कत ना होए, और जौन लड़कोर मेहरारू हैं वनहों का कोनो मेर के दिक्कत ना होए, और दोनों जने का जौन स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहे, और यकरी ता आर्थिक मदद दीन जात है, जैसे वन का अगर कोनो दिक्कत हो रही है तो वो ना हुआ और अपन वो खर्चा पानी आराम से पूर कह सकें, अपन जो दवाई है जो उन खाए पिएता उन्हें दिन जात जो जरूरी चीज़ होता है वही का वह अपने शारीरिकता पूर कह सकें। और यही बदे यही का जौन चाहे वो लड़का हो तो वही समय पे दिन जात है, और जब दूसर बेटी हो तो वही समय दिन जात है, और ई पैसा जौन है जौन औरत होती जौन जिनके नाम से खाता खुला रहा था वन ही का मिला था उनके खाते में सीधे
0: जाते है कि कोई भाई उनके दुरुपयोग न कर ले, कि पता चला उनके खाए पिए खातिर रुपया पैसा मिला और पता चल घर वाले जो है कौन और काम में लगा दिन। यही वजह सरकार बहुत सचेत है, और इके खातिर भैया हमका सबका मतलब जो गर्भवती महिलाएं उनके पंजीकरण होते है, और ई जो है इके लाभ लिए खातिर जो गर्भवती महिला है उनके पंजीकरण जानत कहाँ होते आंगनबाड़ी में या फिर स्वास्थ्य केंद्र पर जाके भी आप करा सकत हो पंजीकरण। और इसके लिए कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं होता रामजीत भैया, जैसे अपन आधार कार्ड है, बैंक खाता के लिए जो डिटेल होती हैं, और जो मान लो थोड़े मोड़े जो जरूरी दस्तावेज जिनका कहते हैं उनकी सबकी ज़रूरत होते है, और जो है इस लाभ का वही उठा सकती हैं।
1: बिल्कुल, और अगर कोनो मेर के दिक्कत हो रही है तो जो उन आशा है वन के लगे जाए के अपन समस्या बताए दो तो वन दवाओं के इंतजाम कर दिए थे, अगर कोनो डॉक्टरी सलाह चाहिए तो भुगतान में बताए दिए थे, और जैसे वो फिल्म निकल थे एक अल्ट्रासाउंड कहा थे तो वहू केयर कुल व्यवस्था वह करवाए दिए थे, तो कोनो मेर का दिक्कत देखो नहीं होता।
0: मतलब अगर भाई देखो मतलब वही पूरी व्यवस्था अपन सरकार करी से कि जो है हमारे जो महिला हैं माताएं हैं बहनी हैं जो उन गर्भवती महिलाएं वो सब स्वस्थ रहे, मतलब अगर नींव मजबूत हुई भैया तो देखो इमारत मजबूत हो बे करी। तो भाई जब लड़का मतलब जब माता जो है अपन सुरक्षित रही है तो लड़का बच्चा जो है सुरक्षित और सेहतमंद हो बे करी है।
1: बिल्कुल, और तब देखो अपन गाँव घर आगे रही, और गाँव घर माँ आगे का एक चीज़ यह है कि जौन हम पंच काम करी थे जैसे गांव

0: घर में तरह तरह के कारखाने लागत है, तरह
1: हम्म,
0: तरह के हम अपन छोट मोट काम करित है, वही में तमाम तरह के जैसे बिजली के उपयोग होत है, अगर उन सब चीजन के हम वैकल्पिक उपयोग ऊर्जा इस्तेमाल करे लागी तो कहूँ ना कहूँ जौन ऊर्जा के बचत है वो तो होबे करत है, हम पंचन के जौन खर्च है वह बचत है और साथ ही साथ फायदा बढ़ जात है। तो यही वजह आज के बैठक में विषय लायन है कि गांव में वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ते स्रोत, और यहीं पर जानकारी दे रहे हैं प्रखर कुमार श्रीवास्तव भैया, तो आओ जानकारी का सुना जाए और जाना जाए।
2: हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी और सुंदर कहावत है, भोर भय अरुभान उगे सब संकट दूर भगे, यानी जैसे ही सुबह सूरज उगता है सारे अंधेरे और संकट दूर हो जाते हैं। आज यह कहावत हमारे गांव पर बिल्कुल सच बैठ रही है। एक समय था जब हमारा गांव सूरज डूबते ही अंधेरे में डूब जाता था। डिबरी और लालटेन की मध्यम रोशनी में बच्चे पढ़ते थे, धुएं से भरी रसोई में हमारी माताएं बहनें खाना बनाती थीं। लेकिन आज वक्त बदल रहा है, अब हमें सिर्फ उस बिजली के भरोसे नहीं रहना है जो दूर शहरों से तारों के सहारे आती है। अब हमारे पास अपनी ऊर्जा होगी, अपनी बिजली होगी। हमारे उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर अवध के इलाके में, साल के ज़्यादातर महीनों में अच्छी धूप खिलती है। यह धूप सिर्फ फसलों को पकाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे घरों को रोशन करने के लिए भी है। सूरज की यह रोशनी भगवान का दिया हुआ एक ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई बिल भी नहीं आता। आजकल गांव में सोलर पैनल का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अपनी छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल लगाकर आप दिन भर पंखा चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और रात के लिए बैटरी चार्ज कर सकते हैं। मिट्टी के तेल की लालटेन से जो काला धुआं निकलता था वह हमारे आँखों और फेफड़ों को बीमार करता था, सोलर लाइट ने उस धुएँ को हमेशा के लिए विदा कर दिया है। अब हमारे बच्चे बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकते हैं। और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके द्वारा हम बिजली भी बना सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगाकर बचत कर सकते हैं, ऊर्जा की बचत होगी और सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं जिससे बिजली बेचकर घर बैठे कमाई भी की जा सकती है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों को खेती में मिल रहा है। सिंचाई के लिए पहले हमें पूरी तरह से डीजल इंजन या फिर सरकारी बिजली के सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता था, और कभी कभी तो रात में बिजली आती थी, कड़कती ठंड या सांप बिच्छू के डर के बीच हमारे किसानों को रात में खेतों में पानी लगाना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक बहुत ही शानदार योजना चला रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान यानी पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत सरकार हमारे किसान भाइयों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए भारी छूट दे रही है। आपको बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है और बाकी का खर्चा सरकार उठाती है। अब दिन के उजाले में आराम से अपनी फसलों की सिंचाई करिए, न डीजल का खर्चा न रात में जागने की टेंशन। अवध में कहते हैं ना, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, यानी खेती सबसे उत्तम काम है। और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं हमारी खेती को सच में सबसे उत्तम और आसान बना रही हैं। इसी तरीके से एक योजना है कचरे से कंचन बायोगैस, एक और बेहतरीन साधन है जिसे हम बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। हमारे गाँव में लगभग अब हर घर में गाय भैंस जैसे मवेशी होते हैं, इनके गोबर को हम अक्सर या तो उपले बनाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे ही फेंक देते हैं। उपले जलाने से बहुत धुआं होता है जो हमारी माताओं बहनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर हम अपने घरों में एक छोटा सा बायोगैस प्लांट लगा लें तो यह गोबर हमारे लिए मुफ्त की रसोई गैस बन जाएगा। इस गैस पर खाना बहुत जल्दी बनता है और बर्तन भी काले नहीं होते। सबसे मज़ेदार बात यह है कि गोबर गैस प्लांट से गैस निकलने के बाद जो बचा हुआ गोबर होता है वह एक बेहतरीन जैविक खाद बन जाता है। जब आप इस खाद को अपने खेतों में डालेंगे तो फसल की पैदावार दुगनी हो जाएगी, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। वैकल्पिक ऊर्जा को बचाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं है बल्कि अपनी धरती माँ को बचाना भी है। सरकार सोलर पैनल लगाने और बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भी कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। आप अपने नज़दीकी विकास खंड या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर इन सभी योजनाओं की पूरी जानकारी ले सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है, गांव में का रहन सहन इससे बदल जाता है, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं।

अब गांव के युवाओं को सोलर पैनल की फिटिंग और रिपेयरिंग के लिए सौर मित्र के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे युवाओं को शहर भागने की ज़रूरत नहीं, गांव में ही रोज़गार मिल रहा है। इससे सुरक्षा और शिक्षा भी काफ़ी मजबूत हो रही है, क्योंकि गांव के चौराहों पर लग रही सोलर स्ट्रीट लाइटों की वजह से अब रात में भी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। रात में बिजली कटने से बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकती है, वे कंप्यूटर चला रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का भी माध्यम इससे बाधित नहीं होता है। बच्चों को मुफ्त में रात में बिजली मिल रही है। सड़कों पर आदमी निडर होकर घूम रहा है, इससे चोरी और अन्य घटनाएं भी काफ़ी रुक जाती हैं। सोलर पैनल लगाने से सबसे बड़ी मदद किसानों को ये मिलती है कि किसानों को बिजली के बिल से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि किसानों की आय बहुत ही कम होती है, इसलिए एक अलग से बोझ जो बिजली बिल का होता है वो उन पर नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना के तहत किसान बिजली बेचकर काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यूपी नेडा भारी सब्सिडी दे रहे हैं।

0: कि किसानों को बिजली के बिल से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि किसानों की आय बहुत ही कम होती है, इसलिए एक अलग से बोझ जो बिजली बिल का होता है वो उन पर नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना के तहत किसान बिजली बेचकर काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यूपी नेडा भारी सब्सिडी दे रहे हैं, यानी हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, बिजली मुफ्त मिलेगी और आपकी छत पर ज़्यादा बिजली बनेगी। भाइयों, उत्तर प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य साफ है, राज्य में 22,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करना। इसीलिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नई स्कीम ला रही है और हमारे किसान भाइयों एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर मंच लगाकर, नुक्कड़ नाटक कर एवं विभिन्न सरकारी अधिकारियों को लगा करके योजना की जानकारी घर घर तक पहुंचाई जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाएं, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले और हमें वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में एक कभी न खत्म होने वाली स्रोत से जुड़कर हम अपने गाँव को एवं अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आज आपको यह जानकर गर्व होगा कि हमारी ऐतिहासिक नगरी अयोध्या देश की पहली मॉडल सोलर सिटी बनने की राह पर तेज़ी से बढ़ चुकी है। ऐसे ही हमारे प्रदेश के अन्य ज़िले हैं जो कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग भी सरकारी दफ्तरों में जाएं, इसकी पूरी जानकारी लें एवं अधिक से अधिक अपने जानने वालों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रेरित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ करके इसका लाभ ले सकें, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक वरदान के रूप में नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि हमारा धन और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेगा एवं आने वाली पीढ़ियां हमारा आभार व्यक्त करेंगी।
1: भावित व्यापक
2: रामजीत भैया,
1: हाँ रेणु बहनी,
2: देखो गांवों में वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ते स्रोत पर इतनी अच्छी जानकारी दी हैं प्रखर कुमार श्रीवास्तव भैया, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल बहनी।
2: और भैया एक बात और बताई,
1: बताए दो,
2: जब मेहरवे घर में रहती है ना तो उनके कोनो वक्त नहीं होते।
1: हाँ बिल्कुल,
2: मतलब
1: सही है,
2: होत है, लेकिन लोग कहिए कि तुम्हारे बिना सब कुछ बढ़िया बड़ा नीक नीक चले।
1: हाँ लागत तो है, लेकिन जो नकरे आगे बात कही है वो ये है कि अगर कोनो दिन एक दो दिन तो अगर कहूँ गई तो उतना नहीं खलत है, मूल अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो फिर बड़ा खले लागत है, और कहूँ जाए तो ऐसा हो जाता है कि अगर तनी नुकुर वस गए हैं, नाराज हो गए हैं, तब तो फिर बड़ी समस्या हो जाता है, और वही समय लागत है कि कोनो विधि आई जाओ,
2: बस आए जाओ, तब फिर जाना तो मैंने क्या कहा थे,
1: क्या कहा था
2: अब ये हम ना कहबे।
1: हाँ
2: भैया और सुनो, विंध्यवासिनी त्रिपाठी बहनी के स्वर में यहाँ ये गौ नहीं सुनो, तब है तुमका समझ में आई।
1: बिल्कुल बहनी।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: रामजीत भैया।
3: हाँ रेनू बहने।
2: भैया देखो, चाहे खेती हो, चाहे बाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, अगर प्रबंधन नहीं है सही तिना से तो भैया देखो हमका सबका खामियाजा उठा हुआ इनका पक जाते।
3: बिल्कुल बहनी, ठीक कहती हो। खेती पाती में तो जैसे अपन खेत अगर कमजोर हो रहा है, वहाँ कौन चीज़ की जरूरत है, कौन कौन पोषक तत्व चाहिए, अगर ये बात हम पंच सही समय पर ना समझ पाएन और अपन लागत लगाए दिहन तो यही के परिणाम बहुत घातक हो सकत है। अपन लागतों डूब जाए, फसलों ना तैयार हुई, साथ ही साथ हमारा जो नुकसान है बतौर फसल वो बहुत ज़्यादा कबो कदार हो जाता है। यही के ताँ जरूरी है कि हम माटी के जांच कराई समय पर और ये बात का जरूर समझी कि हमारे माटी का कौन चीज़ चाहिए। हमार माटी बीमार तो नहीं है, हमारे माटी में ऐसा तो नहीं है कि माटी में बहुत कमी हो गई है या जौन फसल हम लिए जा रहे हैं वही का जौन पोषक तत्व चाहिए वो हमारे माटी में है ये नहीं है। तो ये सबसे का होता है, अगर जानकारी यही के समय पर मिल जाता है तो हम पंच यही के व्यवस्था कर ली थे और एक बाद जब हम अपन फसल डाई थे खेते में अपने तो वो फसल बढ़िया था ना लहलहा था।
2: बिल्कुल यही का कहा था भैया, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। मतलब अगर आप जौन है समन्वित तरीके से अपन जो माटी की कमी है, जो नुमा पोषक तत्वन की कमी है उनका पूरी करियो। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि खाली एक ही चीज़ डाल दियो है ना। भोजन का करते हैं कि उनका लागत है कि तनिक बहुत देखिन कोई दूसर मनी अपने खेते में यहाँ जौन उर्वरक जौन खाद जौन चीज़ डाले है वह वही ला के अपने में डाल दिन कि भैया वही डालिन तो उनका खेत बहुत लहलहा रहा है तो हमहू अपने खेते में यहाँ यह चीज़ डाल दी।
3: बिल्कुल बहनी, बहुत जने का हो जैसे नाइट्रोजन है और पूछ के आए कह भैया लाओ पोटास जाए दो तो पोटास जाए दिन और यूरिया तो पूछे नहीं करना है कि गए ले आए और डाए दिन तो यह

0: मेर अधाधुंध जौन है खाद नहीं डाले के चाही, बल्कि अपने माटी का कौन चीज चाही, कितनी मात्रा में चाही, काहे ताई खेत का जन आकार होता है, वही भी बात निर्भर करत है कि हम पंच कितना खाद वहां डाई।
1: बिल्कुल भैया, और एक जो है चार सिद्धांत होते हैं कि हम पंचे जो है कौनी तिन्ह से उनका उपयोग करी। अब जैसे कोनो चीज के अगर हमका उपयोग करक है तो भाई उका जो है सही स्रोत का होते हैं, सही दर का होते हैं, और फिर सही समय और सही स्थान, ये जोन है चार चीजें बहुत मायने रखती है। मान लो तुम माटी की जाँच करा ली हो, उसके बाद भी ये चार चीजन के ध्यान रखे है कि कौनी तिना से डायरेक्ट है, कौनी जगह पर डायरेक्ट है, कौन कितना डायरेक्ट है, ये सब चीजें जो बहुत मायने रखती हैं। जैसे मान लो हम पंचे खाद पानी जो डालते हैं तो वो जो है ऐसे नहीं डायरेक्ट है, वो जो है अपने जो मतलब खेत में यहाँ जो अपन लगा रखे हो, फसल लगा रखे हो, बिरवा लगा रखे हो, जोन लगा रखे हो, उसकी जड़ के लगे डायरेक्ट है। इसे कहा होता है कि उनका वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल बहनी, और जौन बात जैसे अपन कार्बनिक खाद है, जैविक खाद है, अगर हम यही के इस्तेमाल करी थे, जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गए, केचुआ वाली खाद, हरी खाद हो गए या गोबरा खाद हो गए, तो इनके तो हम इस्तेमाल अपने खेती पाती में बढ़िया तरह कर सकी थे, कोनो विशेष दिक्कत नहीं होते। मूल जौन रासायनिक खाद है, अगर हम वही के इस्तेमाल करी थे तो बिना संस्तुति के वही के इस्तेमाल हम पंचन का बिल्कुल ना करे, और अगर कयू रहन है तो पूरी जानकारी लय के तब करे चाहिए, हमें अधाधुंध वही के इस्तेमाल ना करे चाहिए। कहे तो एक दाएं खेते को माटी अगर खराब हो गया तो वही का दोबारा बनावे में बहुत लंबा समय लग जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे अपन स्वास्थ्य जब बिगड़त है तो हमका भाई उके हम जांच कराई थे, उके परीक्षण कराए थे कि हमारे स्वास्थ्य में कौन चीज ऐसी कमी रह गई है, तो उका जो है डॉक्टर से पूछ के तब जो है जो दवाई पानी है या फिर जो खाए पिए के चीजन से पूरा हो सकता है उका उसे पूरा करी थे। वैसे समझो अपन जो खेती पाती होते वह वही तिना से होते हैं कि पहले उके जाँच करा लो, अंधाधुंध कौन चीज के कोनो प्रयोग ना करो, तब जब जांच में यहाँ जत्ता पता चले कि कौनी चीज में का कमी है, तब है जोन है उस चीज के वत्ता इस्तेमाल करो, और अपन जोन विशेषज्ञ हैं उनकी परामर्श से ही जोन है कोनो कार्य करो।
0: ठीक है बहनी, और यही में एक बात हम और जोड़े चाहिए कि जब उन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं हमें वनों का ध्यान रखे चाहिए। कहे खेते में भले वह सूक्ष्म है, मूल वन के जो भूमिका रहा था पेड़न के प्रति वो बहुत ज्यादा रहा था, तो हमें इन्हें सोचे चाहिए कि ठीक है अगली दाएं हो जाए, बल्कि यह बारे में बहुत हम पंचन का सचेत रह चाहिए। और कुल मिलाए के जो अपन समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन है, ये प्रबंधन है हम पंचन का बढ़िया खेती की ओर आगे बढ़ाए सकत है। और देखो प्रबंधन यो है, प्रबंधन साथे यो है कि बहुत जने हम पंचो है कि तमाम तरह के बाग लगाए रही थे, और वही में का होता है कि जब मौसम बदलत है तो वो से कौदाएं का होता है कि फलदे ना आवत, कौदाएं फूल ना होते, तो बड़ी समस्या
1: हाँ, जलवायु परिवर्तन जब होते हैं तो इस तरह की समस्या हो जाती है, तो यही के लिए हमका प्रबंधन जरूर करें।
0: बिल्कुल, और यही वजह देखो बैठकी का आज के विषय है जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन, और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव भैया, इनसे बतकही की न डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ यह जानकारी का समझा जाए, सुना जाए, और साथ ही यह समझा जाए कि हम पंच अपने बागवानी में और किस प्रबंधन कह सकी थे कि जलवायु के मार कम पर है।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आजकल जलवायु परिवर्तन का दौर है, या मौसम का बेमौसम हो जाना ही जलवायु परिवर्तन है, और कई बार तापमान में अचानक बढ़ोतरी, जाड़े में अधिक जाड़ा, गर्मी में अधिक गर्मी, ये कहीं न कहीं जो फसल और बागवानी है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन ऐसे में कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जलवायु परिवर्तन का दौर है, तो इसके बारे में बागवान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
3: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि ये बड़ा सामयिक विषय है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और खास करके उन देशों के लिए जिनकी दो तिहाई से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है
2: जी,
3: उनके लिए जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है,
2: यानी ग्लोबल समस्या है,

0: समस्या
1: जी जी वैश्विक समस्या जी।
0: लेकिन भारत इसे अछूता नहीं है,
1: भारत इसे अछूता नहीं जी। तो जलवायु परिवर्तन अगर हम कहें तो ये असाधारण सूखे की स्थिति हो जाना या बरसात का प्रकोप अधिक हो जाना, जैसा पिछले सालों हमने देखा है कि किसी एक ही दिन जो है करीब 200 मिलीमीटर तक बारिश हो गई
0: एक ही दिन में,
1: तो इससे जो है कई समस्याएं आती हैं, या कई बार तापमान जो है जाड़े में भी बढ़ जाना, या जाड़े में अत्यधिक तापमान नीचे चले जाना, या बसंत में तापमान नीचे चले जाना या ऊपर चले जाना, ये कई चीज़ें होती हैं जो जलवायु परिवर्तन की तरफ इशारा करती हैं।
0: तो ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका प्रभाव बागवानी फसलों पर भी पड़ेगा?
1: जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव बागवानी फसलों पर पड़ रहा है, लेकिन चूंकि बागवानी फसलें ऐसी हैं जो इससे सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन हमारी जो धान वाली फसलें हैं जैसे गेहूं है या कुछ अन्य फसलें हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावित हो, लेकिन हमारी जो बागवानी फसलें थोड़ी कम प्रभावित होती हैं। तो हम कह सकते हैं इस चुनौती को डील करने के लिए ये बागवानी फसलें ज़्यादा उपयुक्त हैं।
0: लेकिन फिर भी चुनौतियाँ तो हैं
1: जी। हाँ,
0: जैसे फरवरी में अचानक तापमान बढ़ गया
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं आम की बागवानी और केले की बागवानी पर असर तो होता
1: जी,
0: है।
1: जी जी, तो जैसे फरवरी में अधिक तापमान हो जाने से क्या है, फरवरी में ही पुष्पन होती है, फ्लावरिंग होती है, तो उस समय क्या होता है अगर तापमान अधिक बढ़ गया तो उसमें फल का टिकाव नहीं होगा, या तापमान कम हो गया, कई बार देखा गया कि तापमान कम हो जाता है तो फल जो है उसमें मक्खी का काम नहीं होता या परागणकर्ता काम नहीं करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो इस वजह से भी फल टिकाव बहुत कम होता है जी। पिछले कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, कई बार दिसंबर में पुष्प आ जाते हैं और जा करके वो काले पड़ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं जब तापमान बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है फरवरी में बारिश हो जाती है तो इस तरह से वो काले होकर के उसमें फफूंदी लग जाती है, उस तरह से वो जाके गिर जाते हैं, फल टिकाव नहीं होता। जैसे इस साल ही 2026 में हुआ कि खूब बढ़िया फ्लावरिंग आई आम के बाग में, लेकिन जा करके अंत में देखा गया है कि दशहरी या लंगड़ा या चौसा में बहुत कम फल टिकाव हुआ। आम्रपाली जो नियमित फसल देती उसमें भी इस साल कम फसल देखा गया है, क्योंकि उस समय जिस समय फ्लावरिंग हो रही थी उस समय एबनॉर्मल तापमान ऊपर नीचे हुआ और बारिश हो गई, इस वजह से ये समस्या आ गई।
0: यानी दिन और रात का तापमान घटना या बढ़ना
1: जी,
0: जो सामान्य तापमान है उससे
1: जी जी जी,
0: तो ये जलवायु परिवर्तन
1: ये जलवायु परिवर्तन है जी।
0: केले की बागवानी पर भी असर इसका?
1: केले की बागवानी में देखा गया कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो हैवी रेनफॉल या ज्यादा बारिश होगी, काफी दिन तक अगर पानी उसमें टिक जाएगा तो पेड़ पीले होकर के गिरने लगेंगे, या कई बार ऐसा देखा गया है कि तापमान अगर 8 डिग्री के नीचे दिसंबर या जनवरी या फरवरी में आ जाएगा तो क्या हुआ, पेड़ जो है जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और वो पेड़ पूरा सूख जाते हैं,
0: यानी पाले का असर,
1: पाले का असर पड़ जाता है। और ये देखा कि बेल में भी ये समस्या होती है, अगर तापमान बहुत नीचे आ गया तो बेल के फल गिरने लगते हैं, उसमें गोंद निकलने लगता है। अमरूद में ये समस्या आती है, अगर तापमान बढ़ गया तो अमरूद में स्वाद नहीं आता, वो फल की साइज नहीं बन पाती है, और इसलिए ये सब सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी का तापमान सामान्य बना रहे तो अमरूद में गुणवत्ता बड़ी अच्छी होती है, रंग उस पे आते हैं और फल की साइज अच्छी होती है, अगर तापमान ज़्यादा होगा तो फल का साइज नहीं होगा। इसी वजह से क्या है कि अंगूर की फसल जब हम उत्तर प्रदेश में लगाते हैं तो अंगूर का फल बिल्कुल छोटा रह जाता है, क्योंकि जैसे फरवरी में पुष्प आता है और उसके बाद तेजी से तापमान बढ़ता है तो वो जो डिग्री डे उसको चाहिए होता है वो बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है, इस तरह से अंगूर जाके पक जाता है, छोटे में ही जो है मीठा हो जाता है जी।
0: डॉक्टर साहब, समस्या गंभीर है, ऐसे में जब जलवायु परिवर्तन का दौर है तो बागवानी में प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन कि जलवायु परिवर्तन का असर बेअसर हो जाए?
1: जी, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए किसानों को चाहिए कि जैसे अगर वो बागवानी करना चाहते हैं, आम के फल लगाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जो है वो गुठली लगाएं और उस पर इन सीटू ग्राफ्टिंग करें, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं मूसला जड़ें
0: वो नीचे तक
1: जाती हैं, मजबूत रहती हैं, नीचे तक जाती हैं और इस तरह से पेड़ आंधी आने पर या पानी की उपलब्धता कम होने पर वो जो है वो सस्टेन करती हैं, वो रुकी रहती हैं,
0: यानी तो उसका सर्वाइवल
1: ज्यादा होता है, तो उस पर जाके वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पे जो है कोमल कलम बंधन करके उस पौधे को हम ग्राफ्ट करके वो बना सकते हैं, कलमी बना सकते हैं। लेकिन जब कलमी पौधे सीधे लगाएंगे तो उसकी जड़ें कट जाती हैं, इस तरह वो फील्ड में सर्वाइवल कम होता है उनका।
0: यानी कलमी पौधों की बजाय बीजू पौधों पर जलवायु परिवर्तन का असर कम पड़ेगा
1: जी हाँ। और वो फल पौधे ले जैसे बेल है, कैथा है, जामुन है, इन पौधों को हम कलमी पौधे ना लगा के इनको सीधे बीजू पौधा लगाएं, ये ज्यादा सर्वाइव करेंगे। तीसरा, हम पलवार का इस्तेमाल करें,
0: यानी मल्चिंग
1: का इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास फार्म बेस्ड है तो 6-7 इंच मोटी मल्चिंग उस पे बिछाएं पेड़ के चारों तरफ, और देखा गया है कि जैसे आम में हर तीसरे दिन पानी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम पलवार बिछवा देते हैं तो इससे 8 से 10 दिन बाद हमें पानी देने की आवश्यकता पड़ती है।
0: यानी ऑर्गेनिक मल्चिंग हो
1: तो
0: फसल अवशेष है,
1: हाँ,
0: पुराना पुआल है,

0: जी जी
1: गेहूं का डंठल है
0: जी जी जी
1: या ईख की पत्ती है, गन्ने की पत्तियां हैं,
0: इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: या सूखे खरपतवार हैं
0: जी जी जी इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये इसमें डिकम्पोज होकर के धीरे धीरे अंदर भी चले जाते हैं और पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, ज्यादा पानी सोखने लगता है और सॉइल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन का जब असर होगा तो बागवानी फसलों की भूख और प्यास पर भी इसका असर होगा?
0: जी हाँ, जैसा आप जानते हैं इसमें हमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या
1: समन्वित पोषण तत्व
0: समन्वित पोषण प्रबंधन, अब इसमें बीमारियां भी अलग अलग तरीके से आएंगी। कीट मकोड़ों का प्रकोप कई बार बड़ी तेजी से बढ़ेगा और कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी साल जो है इसमें कीट कम आते हैं तापमान अधिक बढ़ जाने से, जैसे भुनगा कई बार तापमान ऊपर नीचे होने से भुनगा का असर कम हो जाता है,
1: लेकिन बेमौसम बारिश अगर हो गई
0: हाँ तो उसमें बढ़ जाएगा, तो कई बार देखा गया। तो इसलिए किसान भाइयों बड़े सावधान रहने की जरूरत है और एकीकृत फसल पोषण प्रबंधन और जो है व्याधि प्रबंधन उपयोग करना है जिससे कि हम उसको बचाव कर सकें।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ नए बाग लगाना चाहते हैं बागवान भाई बहन, तो वहाँ भी जलवायु परिवर्तन के असर को बेअसर करने के लिए फसल का चुनाव, प्रजातियों का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण होगा।
0: जी हाँ, एक तो ये कोशिश करें कि हम सघन बागवानी तरफ जाएं, दूसरी तरफ हम कोशिश करें कि हम बीजू पौधे सीधे लगाएं, उस पर हम ग्राफ्टिंग करें, तीसरा हम ऐसा करें कि रिन्यूएबल ऊर्जा का सोर्स करें,
1: यानी वैकल्पिक ऊर्जा,
0: वैकल्पिक ऊर्जा का हम उपयोग करें और जंगल हम ज्यादा लगाएं, ज्यादा हम फॉरेस्टेशन करें जिससे कि हमारा जो है जल संरक्षित हो, जल संरक्षित करने की कोशिश करें, ड्रिप इरीगेशन लगाएं जहां भी संभव हो, हम जो है टपक सिंचाई विधि से सिंचाई करें तो करीब 40-50% तक हम पानी को हम बचा सकते हैं,
1: यानी जो भूगर्भ जल है उसका दोहन कम से कम
0: उसका दोहन कम से कम करें जी। और ऐसे प्रजातियों का हम चयन करें जिनकी जड़ें गहरी जाती हों और जो तापमान को ज्यादातर जो है झेल सकती हो, जो इसमें सस्टेन कर सकती हो।
1: डॉक्टर साहब, जो सामयिक प्रबंधन की बात करें तो जैसे इस साल जो आम के बागों में जलवायु परिवर्तन का असर है कि फरवरी में तापमान अचानक बढ़ गया, फिर बेमौसम बारिश हो गई कई बार
0: जी,
1: तो उसका प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई इस समय?
0: देखिए, अगर एकाएक तापमान बढ़ गया तो देखना है कि कई बार अगर फ्लावरिंग उसमें हुई है तो उसमें फल का टिकाव कम होगा, तो हम कोशिश करें कि हम बाग में जो है किसी पेस्टिसाइड का उस समय इस्तेमाल न करें जिसमें वो पुष्पन की अवस्था है, और उसके बाद जो है हम मधुमक्खी की जो ये है इसके हाइप्स हैं इसके छत्ते, इसको हम बाग में रखें, फल टिकाव अच्छा होगा। तीसरा जो है हम चारों तरफ से अगर हम जो है किसी तरह से वो बड़े वाले ट्री लगा सकते हैं जो
1: विंड ब्रेक,
0: हाँ विंड ब्रेक लगाएं,
1: वायुरोधक
0: हाँ हाँ वायुरोधक लगाएं, तो कई बार देखा गया कि बाग एक ही बाग में एक ही पेड़ में किसी साइड में अधिक फल टिकाव है इस साल और किसी साइड में कम टिकाव है, तो जहां वायुरोधक लगा हुआ है वहां से तापमान या वहां से पानी आने की संभावना कम रहती है, तो इस तरह से उसको बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी हाँ किसान भाइयों, मेरा नंबर नोट करते 94520922098 9452022098 9452220988।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ, जैसा आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को हम खत्म तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को हम संरक्षण बागवानी, संरक्षण मतलब कि
1: कंजर्वेशन
0: हॉर्टिकल्चर का हम उपयोग करके इससे हम कर सकते हैं। जैसे हम जंगल का संरक्षण करें, वृक्ष रोपण करें, पौध प्रजाति का संरक्षण करें, कृषि की पुरानी पद्धति को अपनाएं, जहां कीट प्रबंधन की समस्या हो गैर परामर्श क्षेत्रों में ऐसे किस्में हम लगाएं जिसमें वो कीट या बीमारियां जिसमें कम आती हों जी।
1: डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जलवायु परिवर्तन के दौर में बागवानी का प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेणु बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो इतनी बढ़िया जानकारी सुन के पंच भाई समझ गए हुई है कि वन है अपने बागवानी में कौन कौन चीज करक है, कैसे वन है अपन बागन का बचावक है। तो जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन पे इतनी बढ़िया तरह डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव भैया बताएं और इतने बढ़िया

0: पूछें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों जने के बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो बहनी, ये तो जानकारी हो गई, और जानकारी का हम पंच अगर अपने खेती पाती में इस्तेमाल करी थे तो वही के लाभ जौन है वो बढ़ जात है। मूल जगह जगह जौन जानकारी होत है हर जगह हम वही में वही का इस्तेमाल नहीं कर सके, ये हमारा हुआ का जौन विज्ञान केंद्र होते हैं, हुआ जाए के हम बेहतर तरीके से वह बात का हम समझ के तब अपने खेत में इस्तेमाल करबे तो कोनो मेर के दिक्कत ना होए। और अब तो तनी कुछ गीत गौना ही हो जाए बहनी।
1: बिल्कुल भैया, जब जानकारी इतनी बढ़िया देवा दी हो तो गीतों गौने सुनवा दियो।
0: तो एक खेमटा लायन है अनुराधा राठौर बहनी की आवाज में, कजरा राजा, तो आओ सुना जाए।

0: बहनी,
1: हाँ रामजीत भैया।
0: तो ये तो भाई गवनई सुन के जी एकदम आनंद से भर गया। अब कुछ जानकारी अपने पंच भाई को दे दें जा, मौसम मौसम के।
1: बिल्कुल भैया, मौसम में यहाँ जोन है आपका, जो वहाँ मौसम विभाग से जानकारी प्राप्त भई है उसका
0: हाँ
1: अपने पंच भैया से जल्दी से बता दियो।
0: बिल्कुल, तो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम की जानकारी जो है अगले 28 से लेकर 31 तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। तो पंच भाई अगर अपने खेते में कोनो काम बचा हुआ है तो वह मेर से वही का सही कह लें, और अगर कहूँ बहरे भीतर जाए आवत है या कोनो योजना बनाए रहे हैं तो पूरी मतलब अपने बचाव के साथ तब घर से निकलें।
1: और भैया हम पहले काल के कार्यक्रम बता दें तब फिर आगे करी बातचीत करबे। तो
0: बिल्कुल
1: भैया देखो, कल अपने कार्यक्रम लोकायतन भैया हुई ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, वार्ताकार हुई हैं डॉक्टर जयशंकर राय भैया, और देखो खेती किसानी में हुई किसान डायरी जो उनकी कृषि समाचार पर आधारित हुई, आलेख एवं वाचन राजीव रतन जी के हुई हैं, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के हुई। तो ये तो भाई भाई कल के कार्यक्रम की बात। और भैया देखो जो है, अब गर्मी तो अबे परिन रही है, बरखा बूंदी जब हुई तब हुई है, तो ऐसे में यहाँ जब तक जो है गर्मी पड़ रही तब तक अपने जो गोरु हैं उन्हों के बड़ा ध्यान रखे है
0: बिल्कुल
1: भाई। आपन ध्यान तो अपन सबे कोई रख लेते हैं, लेकिन जो अपन हरा हैं, मवेशी हैं, गोरु हैं, जो अपने द्वारे बंधे हैं, वही बेजान जो मतलब बेजुबान हैं, उनका जो है हमका सबका बहुत ध्यान धरे के लिए जरूरत है इस समय पर। यहाँ कहे कि यहाँ अगर ऐसे में यहाँ उनका तनिको लू लाग गए तो भाई देखो जो है अपन जो जेब है ना ऊपर भारी पड़ सकत है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बहनी,
1: उनका हमका पंचन कहीं जो है समय समय पर पानी पिलावे के रहा है, और पानी ताजा जो है पिलावे के, और अगर हो सके तो दिन में यहाँ एक दो बार उनका नहलाए जरूर दिए ठंडे पानी से, और अगर नहीं अगर ऐसे नहवा सकते हैं दो तीन दिन तो जो है ठंडे पानी के जो छीटा होते हैं जैसे उका मार दिए, और जो है उनकी जो नांद है उसका सफाई सुथराई जो है बहुत ध्यान धरे की जरूरत है। और जहाँ बांधे भैया सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि बांधो तो उनका छहारे में बांधो, और ये नहीं कि जो है दोपहरिया में यहाँ खोल लेके चले गयो और कहो कि लाई जाए चराए लाई जाए के, तो ये एकदम नहीं करे है भाई। जब सवेरे जुड़ हो और संझक जब जुड़ हो लागे मौसम तब है उनका जो है चरावे खातिर ले जाओ, नहीं तो उनका हुए जहाँ बांधत हो खुलेदार जगह पर या हवादार जगह पर या हुए पर राखे कर है।
0: एक बात बहनी हमन और है कि बदलत मौसम के साथे अब जैसे हम पंचन का दिक्कत होत है वैसे जो अपने हरहा गोरु है वनहों की दिक्कत होत है घाम के साथे। तो हम पंच भाई आपन वह का ठंडा रखें पट्टी लगाए दिहन और समय समय पर हम वही का बदलतो है मूल। अगर मौसम बदल गया है और भाई जैसे बरखा बूनी के आसार हैं तो ऐसे दिक्कत ना हो कि बौछार अंदर आए रही है या जो
1: हाँ, मतलब
0: गोरू है रात बिरात भीगत है, तो ये सब चीजन में हम
1: हाँ ये नहीं कि गीलन में यहाँ बांधे रहेंगे तो उनका और तमाम तरह की बीमारी अजारी भी हो सकती है, ये सब चीजन का हमका ध्यान धरे के लिए जरूरत है। और भैया देखो ये तो जो जरूरत है तो उन्हें एक जरूरत और है, ये है कि भाई हमारे कार्यक्रम कस लागत है, कोनो सुझाव कोई दिन चाहत है, तो इके खातिर जो अपन ईमेल आईडी है पहले उका बता दियो भैया।
0: तो पंच भाई कागज कलम उठाए लिए और तब लिखें FARM फार्म एंड ANDE एंड HOME होम AIR लखनऊ LKO@gmail.com, यानी फार्म एंड होम एयर LKO@gmail.com। और एक साथ है नोट करें हम पंचन केर पता, तो पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर 226001।
1: बिल्कुल, जो कोई ईमेल नहीं कर सकता है पाती लिखे है तो उसका ई पता पर लिख सकते है।
0: और अब देखो बैठक समय हो चला है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद, हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: सुनिए

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन, कहा शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार, प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान, लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि 2 दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की, इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं। इस वर्ष में, इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
3: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
5: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा

0: CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AK शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
1: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
0: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
2: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
0: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
4: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और

50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप शुक्ला से सुभाष खन्ना की बातचीत। विषय है भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे और संभावनाएं।
2: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हम खेल के इस कार्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, किसी ऐसी विधा पर बात करते हैं जो स्पोर्ट्स में निहित होती है या खेल में निहित होती है। और जैसा आपको पता ही है कि जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। केवल और केवल उस विधा में करियर बनाने के अलावा भी आप में नेतृत्व क्षमता, आप में सहयोग, आप में एकता, आप में आगे बढ़ने की, लगातार संघर्ष करने की, वो ढेरों ऐसी कलाएं, ढेरों ऐसी विधाएं मौजूद होती हैं जिससे हम सीखते भी हैं और हम उससे प्रेरणा भी लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरों की और होने वाली संभावनाओं की, और भारत का वर्तमान में क्या भविष्य है, इन फ्यूचर क्या भविष्य होगा। ये ढेर सारी बातें आज हम किसी ऐसे विशेषज्ञ से करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से करेंगे जिसने क्रिकेट में कई दशक बिताए हैं। वो भारतीय क्रिकेट टीम के जूनियर टीम के सदस्य रहे हैं, सेंट्रल जोन के कप्तान रहे हैं, रणजी प्लेयर रहे हैं, और लखनऊ में भी क्रिकेट का आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। श्री प्रदीप शुक्ला जी का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नमस्कार सर। जब हम आजकल क्रिकेट की बात करते हैं, 120 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या, उससे ज्यादा की जो जनसंख्या है, 60-70% लोग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो शौकिया खेलते हों, चाहे उससे आगे खेलते हों। भारतीय टीम ने आजकल हमने देखा कि बहुत प्रगति की है। हमने कई वर्गीकरण कर लिए हैं, T20, वनडे, टेस्ट, और लगातार जो अभी पिछली कुछ सीरीज हुई है या T20 विश्व कप हुआ है, इससे पहले का जो विश्व कप रहा, हमने बहुत अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और कई हमने ट्रॉफी जीती है। पिछला विश्व कप T20 भी हमने जीता है और लगातार अच्छा दर्शन कर रहे हैं। क्या स्थिति है वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट टीम की?
3: भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है इस समय
2: जी।
3: और भारतीय क्रिकेट की बात करें, अभी रिसेंटली हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है उसमें
2: जी,
3: जिसमें एक बढ़िया से बढ़िया टीमों को हराया है, परफॉर्मेंस के साथ हराया। आने वाले दिनों में भी मैं कहता हूँ कि भारत कम से कम पूरे वर्ल्ड में अगर 10-15 साल यही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा
2: जी,
3: तो हम भारतीय क्रिकेट उस पर राज करेगा पूरा। जिस प्रगति के साथ भारत बढ़ रहा है आगे
2: जी,
3: उसको रोक पाना असंभव है आज के दिन। हमारी बेंच स्ट्रेंथ हो, हमारे मेन क्रिकेटर्स हो
2: जी,
3: हमारे अंडर 19 को हो, सब जगह प्रोग्रेस हो रहा है। हर खिलाड़ी एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हमें खुशी है कि आज जिस मुकाम पर भारतीय टीम पहुंची है, वो अपनी मेहनत के बल पर, भारतीय बोर्ड के प्रबंधन की वजह से
2: जी,
3: इतना क्रिकेट भारतीयों ने खेला है कि पूरे विश्व में आज भारतीय क्रिकेटरों का नाम है। कुछ क्रिकेटरों का नाम ऐसा हो जो आज भी जो खेल चुके हैं, लेकिन वो कमेंट्री के उसमें अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सुनील गावस्कर हो, रवि शास्त्री हो, एक से एक इसमें कमेंटेटर है जो आज की डेट में उन्नति कर रहे हैं।
2: वर्तमान टीम की बात करें, जब जैसे जो क्रिकेट खेली जा रही है,

0: आजकल की ऑलराउंडर्स बहुत निकल कर आते हैं, वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, या यूं कहें कि आप T20 में आप देखते हैं कि रनों का एवरेज बहुत ज्यादा हो जाता है या बॉलिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है, इंडियन टीम में क्या ऐसी विशेषता अभी आपको दिखती है?
1: अगर हम भारतीय क्रिकेट की बात करें तो इसको हम तीन उसमें खेमे में बांट सकते हैं।
0: जी जी,
1: एक तो हमारा टेस्ट खिलाड़ी है, दूसरे हमने ODI या T20 आप कह सकते हो।
0: जी जी,
1: हर टीम में हमारे पास इस समय अगर हम देखें, हर टीम के बाद एक टीम हमारी तैयार हो रही है, चाहे टेस्ट क्रिकेट की कहें, चाहे T20 कहें या ODI की बात करें। ODI और T20 में हमारे पास तो इतने प्लेयर हैं कि अगर एक टीम जो खेल ले इसको हटा भी दें हम और दूसरी टीम बनाना चाहे तो तुरंत बना के हम तुरंत खिला सकते हैं, वो भी हमारी टीम चैंपियन की तरह खेलेगी पूरी टीम को। तो भारतीय क्रीम में अगर हम उज्ज्वल की बात करें, भविष्य के बारे में बात करें, तो भारतीय टीम का भविष्य इतना उज्ज्वल है कि आने वाले 15-20 सालों में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सर जितने भी खिलाड़ी हैं वो हेड डाउन कर करके खेलते रहें, कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग की प्रतिभा सीखें वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई सीनियर है तो सीनियर को देखें कि उसने क्या किया, अपने पास में क्या किया, कैसे खेलते तो टेस्ट उसको देखा देखे भी आज हमारे क्रिकेटर जने कितने आगे पहुँच गए हैं, जिनका हम अगर उल्लेख करेंगे तो हो सकता है कि कार्यक्रम 1-2 घंटा चलता रहे और ये खत्म ही ना हो। तो आज भारतीय क्रिकेट उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां से लौटना 10-15 साल तक बड़ा मुश्किल काम है, और इसमें हम BCCI का या जो भी स्टेट एसोसिएशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो हम भारतीय की मेन टीम भी बना सकते हैं, ए टीम भी बना सकते हैं, U19 भी है, U23 भी, और हर जगह जा रही है ये टीमें। अगर हम व्यक्तिगत तौर से देखें या पिछले 2-3 साल में देख लिए, भारतीय ए टीम भी दौरा करती है, 19 भी दौरा करती है, हम 19 के भी वर्ल्ड कप चैंपियन हुए अभी।
0: जी, जी, जी,
1: हमारे अभी नए नए जो फाइंडिंग हमको मिली है इंडियन क्रिकेट को, वैभव सूर्यवंशी आपने देखा ही हो सभी, उसके अलावा भी आप देखिए ये सब बच्चे जो निकल के जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे जो खेल रहे हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं उसी स्तर के हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा है, वो आज इधर उधर भटक रहे हैं, वो अपना अपना स्टेट छोड़ रहे हैं या इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, कोई कनाडा से खेल रहा है, कोई अमेरिका से खेल रहा है, कोई UAE से खेल रहे तक है। आप सोचिए कि भारतीय टीम तो है ही है, इसके अलावा भी हमारे भारतीय खिलाड़ी बाहर के कंट्रीज से भी खेल रहे हैं, जो ये बहुत बड़े बात होती है एक भारतीय होने के नाते। हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे आज भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं दुनिया में चारों तरफ तहलका मचाया हुआ है।
0: आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्या कोई खिलाड़ी, चूंकि ये सतत प्रक्रिया है कि कोई बच्चा वो बड़ा खिलाड़ी बनता है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका खुद का व्यक्तिगत प्रदर्शन, ये ढेर सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे मिलकर वो बनता है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जितने भी खिलाड़ी आप देखे होंगे, बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो हमारे भारत के रिमोट एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं है।
0: जी, जी, जी।
1: वो बेचारे उनके पेरेंट्स दूसरे दराज प्रदेशों में जाते हैं, सिटी शहर में जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, वहाँ कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं। तो ऐसे सेंटर भी हमारे यहाँ बहुत से बन गए हैं आजकल, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोग बहुत करने को बाकी रह गया है। जो हमारे भारतीय खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको सुविधा देने का अभी हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर या राज्य स्तर पे या शहर स्तर पे बहुत कमियां हैं अभी। अगर मैं कहूँ बहुत से हमारे पास प्रतिभाएं हैं,
0: जी, जी,
1: हमारे
0: जी,
1: प्रदेश जी, में भी है, हमारे देश में भी है, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आज हम प्रदेश के, हम उत्तर प्रदेश की बात करें
0: जी,
1: तो हमारे प्रदेश की जो आबादी है 15-25 करोड़ के बीच में है, जिसमें से मैं कहूँ कि हमारे प्रदेश में ही खाली 1-1.5 लाख बच्चा सिर्फ क्रिकेट खेलता है, और इन बच्चों को पूरा प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम डेवलप कर रहे हैं क्रिकेटों का, और जब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रतिभाएं बहुत आगे तक जाएंगे, खासकर हमारे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के।
0: बहुत बार हमारे परिवार में या यूं कहें कि हमारे ट्रेडिशन में एक मिथक है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बहुत बार हम अपने परिवार में या अपने बच्चों को खेलने नहीं जाने देना चाहते कि हम कहते हैं भाई पढ़ो, तो अभी हमारे अभिभावकों को जो खेलने नहीं देना चाहते हैं या उन्हें खेल की विधा का उतना ज्ञान नहीं है, या जो आपने कहा कि भाई उनका भविष्य खेलों में भी इतना उज्ज्वल हो सकता है, जहां हम कॉमनवेल्थ के गेम की बात करें, ओलंपिक की बात करें, T20 की बात कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ODI की बात कर रहे हैं, और भी कई खेलों में क्रिकेट की और भी कई विधाएं, जैसे आपने कहा कि भाई 4 टीम हो जाए, 3 टीम हो जाए, ढेर

0: वो ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनमें उसका भविष्य बन सकता है, कई बार हम नहीं जानते होते। हमारे अभिभावकों को क्या संदेश देंगे इसके संदर्भ में?
1: हम सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि आज खेल जो है
0: जी
1: एक प्रोफेशनल बन चुका है। अपने बच्चों को कहिए अगर उनका मन किसी भी खेल की ओर रुचि उनकी है वो तो उस ओर उसको जरूर ले जाएं।
0: जी
1: एक सब्जेक्ट हमारा गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स का भी कर रखा है, इसमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। और जहां जहां आपने देखा होगा हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में देखिए, जो भी बच्चा प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है या इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको डायरेक्ट डिप्टी SP बना रहे हैं या
0: जी
1: क्लास
0: जी
1: वन
0: जी
1: की पोस्ट उसको दे रहे हैं। तो मैं सभी
0: जी
1: पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ
0: जी
1: कि
0: जी
1: अपनों
0: जी
1: बच्चों को रुचि देखिए, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि ये ईश्वरी दिन होता है खेल में। खेल ईश्वरी दिन होता, सब बच्चे सुनील गावस्कर नहीं बनते हैं, सब बच्चे सौरभ गांगुली नहीं बनते हैं, सब बच्चे विराट कोहली नहीं बनते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं जो विराट कोहली भी बन सकते हैं, गावस्कर भी बन सकते हैं। सिर्फ कमी है तो उन प्रतिभाओं को देखने की है कि इस बच्चे को टैलेंट है या नहीं है, उस प्रतिभा को आगे लाने की है। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ करे, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप कुछ करेंगे नहीं, किसी भी फील्ड में आप हो, आप चाहे एजुकेशन हो या कहीं भी हो, आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपकी नौकरी का अभाव रहता है। लेकिन खेल एक ऐसी चीज है, इसमें मैं देखता हूँ गवर्नमेंट से प्रोत्साहन बहुत मिल रहा है। हमारा कोई भी ओलंपिक जाता है, जीत के आता है, तो उसको करोड़ों में रुपया गवर्नमेंट मदद करती है। आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, इतना
0: जी
1: पैसा
0: जी
1: गवर्नमेंट देने के लिए
0: जी
1: हमेशा
0: जी
1: तैयार
0: जी
1: रहती
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो पेरेंट्स हताश ना हो, ये भी मैं कहता हूँ कि हर बच्चा नहीं बन सकता, आगे नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, एक सर्टेन एज है। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे खेल में ही रह जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हो ना, उनको खेल में भी पढ़ना है। जब खेल का समय है वो खेलें, और जब पढ़ने का समय है वो पढ़ें। हमारा ज्यादा खेल का समय है, खेल में भी आप 2-4 घंटा दीजिए, पढ़ाई में भी है तो पढ़ाई में भी 2-4 घंटा दीजिए, तभी आप कुछ बन पाएंगे। खाली इधर उधर घूमने से आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। आज पूरे हिंदुस्तान में क्या हम खाली लखनऊ या अपने आसपास के शहरों की बात करें, तो हमारे लखनऊ में भी 130 क्रिकेट एकेडमी बनी हुई है, जिसमें कोचेस के नाम से कोई भी रणजी ट्रॉफी स्तर का कोई भी खिलाड़ी उसमें नहीं है। 2-4 एकेडमी हैं जहाँ पे स्टेटस अच्छा है, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं, वो सिखाते हैं बच्चों, जाते हैं रेगुलर आते हैं।
0: आपने सीखने की बात की कि भाई ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उपलब्ध हैं, बशर्ते आप सीखने जाएं। आपने अभिभावकों को भी संदेश दिया कि भाई अपने बच्चों को अगर उनमें हुनर है, उनमें टैलेंट है, तो वो उन्हें सिखाएं, और कदापि इसलिए ना रोकें कि केवल खेल खेल कर ही शायद करियर नहीं बनेगा। क्योंकि आपने ढेर सारे भविष्य की बातें की कि भाई करियर इसमें भी बनता है, आप अधिकारी बनते हैं, आप ढेर सारे ऐसे पदों पर जाते हैं, साथ ही अपना व्यवसाय भी करते हैं। अब जब भारतीय टीम की बात करें कि आगामी भविष्य में हम विश्व कप खेलने वाले हैं, T20 का जो हमारा विश्व कप है वो होने वाला है, टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, और भी कई जो बड़े विश्व कप हैं या बड़े टूर्नामेंट्स वो होने वाले हैं, भारतीय टीम को कहाँ देखते हैं, किस मुकाम पर देखते हैं?
1: मैं अगर भारत की टीम को, तुमने कहा ना कि भारत
0: जी
1: T20 चैंपियंस टीम है, अंडर 19 में चैंपियन है। दुर्भाग्य है कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में हम लोग हार गए थे पिछली बार, न्यूजीलैंड से हार
0: न्यूजीलैंड से
1: गए थे
0: हार
1: हम लोग,
0: गए। जी
1: इंग्लैंड में खेलने गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, टेस्ट में जरूर थोड़ा सा रुझान हमारा कम हुआ है। इधर अगर आप खिलाड़ी भी देखें कि 2.5-2.5 दिन में, 3-3 दिन में हमारे टेस्ट सीरीज खत्म हो रहे हैं, उसका रीजन है कि हमारे यहाँ T20 को इतना खिला दिया गया है, ODI इतना खेल चुके हैं कि बैट्समैन पच जाता है, सोता चार ओवर में हम जितने रन बना सकते हैं बना ले,
0: जी
1: उसका
0: जी
1: रीजन है। और टेस्ट जो क्रिकेट होता है उसमें हमको मेरिट देखने को मिलती है, उसमें हमको क्लास देखने को
0: जी
1: मिलता
0: जी
1: है, उसमें क्षमता बैट्समैन की देखने को मिलती है कि विकेट पे रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। आप देखिए 5 दिन का आजकल टेस्ट मैच होता है, लेकिन ज्यादातर सीरीज हमने देखी 3 दिन या 4 दिन में
0: खत्म हो
1: समाप्त हो
0: जाती
1: रही।
0: है।
1: बहुत कम ऐसे टेस्ट मैचेस हैं जो 5वें दिन जा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि हम लोग ने T20 के इतने मैचेस खेलते हैं साल भर कि वो एक हैबिट पड़ी रहती है बैट्समैन की, पेशेंस लूज करता है। वो पेशेंस को लूज करने का मतलब ये है कि आप फिर रुक नहीं सकते। तो ये हम चाहते यही है कि हमारे हर टेस्ट की टीम अलग बने, T20 की टीम या ODI की टीम हमारी अलग बने। हमारे पास इतना खिलाड़ी हैं आज की डेट में कि
0: जी
1: हम
0: जी
1: टेस्ट टीम को भी अलग बना सकते हैं, और T20 और ODI के हर टीम को हम अलग बना सकते हैं।
0: मतलब आज क्षमताएं भी हैं और निकट भविष्य में
1: सब
0: जो
1: कुछ है
0: टूर्नामेंट है
1: हमारे
0: सब
1: पास,
0: में है।
1: भारत के पास
0: जी
1: सब
0: जी
1: कुछ है।
0: तो श्रोताओं

0: आपने अभी सुना ही, और प्रदीप जी ने ढेरों वो बातें बताई कि भारत का जो क्रिकेट है, जो आज वर्तमान क्रिकेट है, वो किस मकाम पर है, जो आगामी भविष्य है, हमारे क्रिकेटर्स कैसे हैं, कैसे वो भविष्य में इन चुनौतियों से पार पाएंगे, और खास करके कि जब आपने कहा कि भाई अभिभावकों को हम क्या संदेश देंगे, कैसे वो सिलेक्शन करें कि कहां उन्हें सीखने जाना है, और साथ ही साथ आपने जो बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मौजूद है भारत में जहां आप सीख सकते हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें क्रिकेट के संदर्भ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: इतनी अच्छी जानकारी दी हमें क्रिकेट के संदर्भ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रदीप शुक्ला से सुभाष खन्ना की बातचीत। विषय था भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे और संभावनाएं। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। एमएम कीरावनी और पलक मुछाल की आवाजों में आइए सुनते हैं बाहुबली द बिगनिंग फिल्म का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के संक में आपको एक वार्ता सुनवाते हैं जिसका विषय है प्रेमचंद और लखनऊ। वार्ताकार हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित।
2: बात लगभग 100 वर्ष पुरानी है जब प्रेमचंद और लखनऊ परस्पर जुड़े थे। लखनऊ से प्रेमचंद का संबंध अगस्त 1923 से लेकर जुलाई 1932 तक रहा। वे 1927 से 1933 तक यानी लगभग 6 वर्ष तक माधुरी के संपादक रहे। उस बीच उन्होंने माधुरी में वैविध्यपूर्ण सामग्री संजोई और कहानी विधा को विशेष महत्व दिया। उसमें कई नए स्तंभ जोड़े, बराबर रंग बिरंगे चित्र छापे। उससे माधुरी की प्रसार संख्या 2000 से बढ़कर 10,000 हो गई। तब प्रेमचंद यहीं लाटूस रोड, हेविट रोड के तिराहे के पास मारवाड़ी गली के मकान नंबर 14 में रहते थे। तत्कालीन लखनवी साहित्यकारों जैसे रूपनारायण पांडे, चकबस्त, मुनव्वर, पढ़ीश जी, नागर जी, भगवती चरण वर्मा, दुलारे लाल भार्गव, गंगा प्रसाद मिश्र आदि से उनके अच्छे संबंध थे। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां, उमराव जान अदा के लेखक रुसवा तथा इंदर सभा नाटक के लेखक अमानत की विरासत से वे काफ़ी कुछ परिचित थे, प्रेरित और प्रभावित थे। प्रेमचंद जी 1923 में गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ में पहले पहल सहायक के रूप में आए थे। तब ये प्रकाशन संस्था अमीनाबाद पार्क के पास थी। प्रेमचंद जी ने 1930 में काशी से हंस नामक मासिक पत्र और 1932 में जागरण नामक पाक्षिक पत्र का संपादन शुरू किया था। जागरण प्रेस में अत्यधिक घाटा होने के कारण यानी भयानक अर्थसंकट के कारण प्रेमचंद को कई बार बाहर जाकर यह आर्थिक व्यवस्था जुटानी पड़ी थी। हिंदी उर्दू कथाकार के रूप में उनकी अपनी एक पहचान बन चुकी थी। लखनऊ में रहते हुए उन्होंने 1923 में निर्मला एवं 1924 में रंगभूमि उपन्यास लिखा था। रतननाथ सरसार के फसाने आज़ाद का यही उन्होंने आज़ाद कथा नाम से अनुवाद किया था। उनका रंगभूमि नामक उपन्यास उर्दू में लिखित चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर था और वह यही गंगा पुस्तकमाला से प्रकाशित हुआ था। यहीं रहते 1928 में कायाकल्प का और उर्दू में लिखित तो गोशे आफियत का प्रेमाश्रम नाम से हिंदी रूपांतरण किया था। निष्कर्ष यह है कि उनके अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास एवं कहानी संकलन लखनऊ से संबंधित हैं। गोदान उपन्यास की अधिकांश घटनाएं लखनऊ में केंद्रित हैं। यहाँ राय साहब की कोठी से संबद्ध रहे प्रोफेसर मेहता यही लखनऊ विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर थे। यहीं डॉक्टर मालती एक संभ्रांत चिकित्सक, खन्ना गोविंदी मिल मालिक, तनखा और पंडित ओंकार नाथ नेता और पत्रकार यानी सब लखनवी। होरी का पुत्र गोबर यही मजदूर आंदोलन चलाता है। मेहता और मालती जनसेवा अभियान चलाते हैं। इसी बीच लखनवी इतिहास से संबंधित प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी नामक एक कहानी लिखी जो अक्टूबर 1924 की माधुरी में छपी थी। उसमें 1857 का परिवेश है। नवाब वाजिद अली शाह के दो दरबारी मीर और मिर्जा सब कुछ छोड़कर शतरंज के वजीर की रक्षा में घंटों एक आसन बैठे हुए आखिरकार उसके पीछे मर मिटते हैं और उसी बीच नवाब गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी वे अपने देशकाल से बेखबर हैं। लखनऊ से ही प्रेमचंद ने 1924 में प्रेम प्रसून तथा प्रेमा या प्रतिज्ञा नामक कहानी संकलन छपवाए। 1956 में प्रेम द्वादशी एवं 1930 में प्रेम पंचमी का प्रकाशन यही गंगा पुस्तकमाला से हुआ।

0: किंतु आश्चर्य कि इसी संस्था से प्रकाशित पत्रिका सुधा में उनकी कोई रचना नहीं छपी। 1933 में उन्होंने करबला नामक नाटक यहीं की जरजमीन से प्रेरित होकर लिखा, पर वह सांप्रदायिक तत्वों को रास नहीं आया। यह स्मरणीय है कि रतन सरकार द्वारा लिखित तो और बचपन में पढ़े गए फसाना आज़ाद के आधार पर उन्होंने कथा किस्सा लेखन की ओर अपनी अभिरुचि दिखाई। उनकी एक कथाकृति अग्नि समाधि नवल किशोर प्रेस से 1929 में प्रकाशित हुई थी। लखनऊ में ही प्रेमचंद जी ने 10 अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए साहित्य का उद्देश्य नामक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। इसमें उन्होंने प्रगतिवाद शब्द की आलोचना की थी। माधुरी यानी नवल किशोर प्रेस की नौकरी 1933 में प्रेमचंद ने क्यों छोड़ी, इसके पीछे कई अभिमत हैं। वो स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। प्रेमचंद जी गांधीवाद, मार्क्सवाद, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के समन्वय के हिमायती थे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पोषक और कई भारतीय भाषाओं के लेखकों के प्रतिद्वंदी भी थे। शरदचंद ने कहीं कह दिया था कि प्रेमचंद टैगोर से टक्कर ले रहे, इससे लोग आहत हुए थे। प्रेमचंद तब यहाँ तक मानने लगे थे कि साहित्य में आज घृणा की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इस बीच हिंदुओं के कर्मकांडों का इसीलिए मुखर विरोध किया, फलता उन्हें घृणा का प्रचारक कहा गया। उन्होंने पंडित मोटेराम शास्त्री नामक कहानी लिखकर एक जात विशेष की इतनी छीछा लेदर की कि लखनऊ का भद्र समाज काफी कुपित हो गया और प्रेस प्रतिष्ठान भी। उस समय के लखनऊ नगर के एक प्रकांड आचार्य थे शालिग्राम शास्त्री, उन्होंने उस पर कुछ प्रतिक्रिया प्रकट की तो पंडित मोटेराम की डायरी नाम से उसे दोबारा माधुरी में एक महीने बाद छपवाया। फिर यही कहानी पंडित मोटेराम शास्त्री का नैराश्य नाम से समालोचना नामक पत्र में तिबारा छपी और चौथी बार संपादक पंडित मोटेराम शास्त्री नाम से, यानी कुल 4 बार उसे प्रकाशित कराया गया। इससे क्रुद्ध होकर शास्त्री जी ने उन पर और नवल किशोर प्रेस पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस विषम परिस्थिति में उन्हें माधुरी से हटना पड़ा। उनकी इस कहानी की पैरोडी बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिंदी शिक्षक बद्रीनाथ भट्ट ने टटोले राम टलास्त्री नाम की कहानी छपवाई और उन्हें प्रकारांतर से कम्युनिस्ट, पेशेवर किस्सागो, इस्लाम परस्त, प्रोपेगेंडिस्ट आदि उपाधियां दी। कफन और सदगत आदि कहानियों की प्रतिक्रिया तो अरसे तक चलती ही रही। इन्हीं बिंदुओं को लेकर डॉक्टर हेमचंद जोशी ने सरस्वती में एक लेखमाला चलाकर उनके सनसनीखेज कथाशिल्प की आलोचना की। माधुरी से मुक्त होकर इन सबका प्रतिवाद करने के लिए प्रेमचंद ने 1933 में काशी से हंस पत्रिका की नई शुरुआत की। उसके आत्मकथांक को लेकर भारत के संपादक नंदोलाल वाजपेयी से कई विवाद और वितर्क हुए। अब प्रेमचंद पूर्णकालिक कलमजीवी लेखक बन गए थे। घर परिवार और हंस तथा जागरण, इन दोनों पत्रों का व्यवहार वहन करने के लिए उन्होंने अक्टूबर 1936 यानी मृत्यु पर्यंत दिन रात लेखन कार्य किया। अपनी बीमारी में लखनऊ में इलाज कराया पर निष्फल रहा और 56 वर्ष 2 माह 8 दिन का जीवन जीकर उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया। अपने लेखन काल में वे चुनारगढ़, प्रतापगढ़, बहराइच, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, महोबा, बंबई आदि कई स्थानों में कार्यरत रहे, पर काशी के बाद उनका सर्वाधिक जुड़ाव लखनऊ से रहा। यहाँ से ही उन्होंने किस्सा गोई और कथा भाषा ली और उसे पराकाष्ठा पर पहुँचाया। यह लखनऊ के लिए भी गौरवास्पद है।
1: प्रेमचंद और लखनऊ, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महुआ राज त्रिपाठी की गाई गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वसीम बरेलवी की रचना में इस गजल के साथ।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महुआ राज त्रिपाठी की गाई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में ये गीत, फिल्म का नाम दावत-ए-इश्क।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: और अब आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत मोहित चौहान और पलक मुछैल की आवाजों में।
3: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए एसरार की आवाज में फैंटम फिल्म का ये गीत।

0: इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई

0: और राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को

सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: उस बेटे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डीके शिव कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदु किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
3: पुलिस व्यवस्था को और

0: सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरे में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुज़ाकरात, बहस मुबाहसे, इत्तफाक राय और इख्तलाफ राय की इजाज़त देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिरला ने कहा कि इस मजमूए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज़ करें जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानूनसाज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज़ किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानूनसाज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर ममलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है, जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्विशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नज़र उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था, जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये 6ठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीक़ेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलात पर बातचीत की।

साथियों, वक्त हो गया है आपके फरमाइशी गीतों को सुनने का। तो अपने फरमाइशी गीतों को हम तक पहुंचाने के लिए जल्दी से नोट करिए हमारी ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का पहला मेल हमें मिल चुका है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू, रसूलपुर वाले और रामचरण प्रजापति। आप सभी ने सुनना चाहा है मज़लूम फिल्म का ये गीत, तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में।

चम चम चम चम चमकूंगा, मैं तेरा प्यार बनूंगा, सोना बन के गोरी तेरे गले का हार बनूंगा, चम चम चम चम चमकूंगा मैं।

और इस कार्यक्रम का अगला मेल हमें भेजा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजीनगर से। और दूसरा मेल हमें मिला है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से, और इस मेल को लिखने वाले हमारे श्रोता हैं विजय पाल यादव, शुभम, शिखा, ऋचा गुड़िया, बबलू यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। आप सभी ने लिखा है कि आपके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से सुनता हूं और उसका लाभ भी उठाता हूं। आप सभी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है, आकाशवाणी लखनऊ का नियमित श्रोता हूं। सभी कार्यक्रम व सभी प्रस्तुतकर्ता बहुत ही प्रशंसनीय हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं और आपको पसंद आते हैं। और साथ ही इन्होंने फरमाइश की है नियाज और नमाज फिल्म के इस गीत की, तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

कार्यक्रम का अगला मेल हमें मिला है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सभी ने सुनना चाहा है मधुमती फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी रेडियो साथी शिवानी वर्मा के साथ। और इस कार्यक्रम में अगला मेल हमें मिला है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।

सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। इन्होंने फरमाइश की है कि किसी भी गीत को शामिल कर लीजिए। और दूसरा मेल हमें मिला है विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, सांडी जनपद हरदोई से, और इन्होंने फरमाइश की है नगीना फिल्म के इस गीत की। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

और इस कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने खुर्जा उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि जो गमों में भी दुखी नहीं होता, हंसकर सब गम सह जाता है, समझ लीजिए खुशियां भी उसके कदमों को चूमने के लिए बेकरार रहती हैं। वाह क्या बात कही है आपने। और साथ ही आप सभी ने फरमाइश की है गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत की, तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशें तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन समय कह रहा है कि अब हम आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मेल शामिल करें। तो इस कार्यक्रम का आखिरी मेल हमें भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। आप सभी ने फरमाइश की है पुकार फिल्म के इस गीत की, तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं ये गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और आर डी बर्मन की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल भेजना ना भूलें। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप अपनी फरमाइश हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ। पिन कोड है 226001। अब कार्यक्रम आपकी पसंद से मुझे यानी शिवानी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत, फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग झिंझोटी में उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग झिंझोटी में उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।

0: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।